पौड़ी आप ही करना क्यों कलप ही तय तारी है, देखे की ता अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी पुराण है को साहे मन विसारी है, अपना थी अपना।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए हुरमत सुनो अगलियो वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंद्र पाए वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिस दिता खावना।

पौड़ी नानक अंतन जपनी हर तां के परवार आप कराए साक्ति पर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां तुरी चरे बिस्यार आप कराए करे आप हों कैसे हों करी पुकार नानक करना जिन किया।

ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु न तरह आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत करण साहब जन जे सदाबार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ अॼु प्रोग्राम नशर कयो वेंदो। सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। यादि प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो। हींअर अचो त भगत कराम साहब खे ॿुधूं।

तमाम भगत करम साहब जन जी मिठड़े आवाज़ में कलाम उधर रहा यह आकाशवाणी जी सिंधी सरसा ही पेश है तबसरों। भारत तमाम ही सुभा के नमूने टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से जाब्तो पातो है। एन में आलमी समत ते नवन केसन में ए मौत ते रोकनो विधो है। साल 2015 का वी कर साल 2024 तीन मुल्क में नवा टीबी जा इन्फेक्शंस 21 सैकड़ों घट थे मौत जो तादाद 28 सैकड़ों घट थो है। तेमें इलाज की जी पहुँच है सा 92 सैकड़ों वी वही है। इन वक्त मुल्क तमाम ही तेज़ रफ्तार से अवामी सेहत खाते में इन बीमारी के कढ़ण में जोश में रुधल है। भारत में टीबी जा वाकया 71 सैकड़ों घट जी करे साल 2015 में फी लख पुठियां 237 पौता

जेके साल 2024 में घट थी करे 187 लख पुठियां पहुता आहिनि। आलम भर में इहो जेको नुर्ख आहे सो ठीकु थियण वारनि जो ॿीणो आहे। आलम जी भेट में भारत में टीबी खां मरंदड़ जो तादादु अधु थी वियो आहे। इन ॾिस में जेको इलाज जी पहुच आहे सां 92% वधी वई आहे सां आलमी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज खां बि तमामु घणी वधीक आहे। इन्हनि अंगनि अखरनि मां पतो पवे थो त भारत पंहिंजो अवामी सिहत 10 में अॻिते वधी रहियो आहे ऐं साल 2024 में 26.18 लख टीबी पेशेंट जो बीमारी जो इलाजु कढियो वियो। टीबी बीमारी जो जेको इलाजु आहे सो हले थो टीबी मुक्त भारत अभियान तहत, सो 90% वधी वियो आहे। सूबे जो नुर्ख में 90% वधी वियो आहे ऐं जेको आलमी सिहत जेको नुर्ख आहे सूबे जो नुर्ख आहे सो आहे 88%। शुरू में टीबी खे जल्द ॻोल्हण सां उन जी इलाजु जेको आहे भारत में 92% बहितर आहे, जेको आलमी समत आहे 83%। डिसंबर 2024 में टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू कयो वियो हो, तंहिंमें नई टेक्नोलॉजीज़ खे अमल में आंदो आहे जहिड़ो की हथ में कतब ईंदड़ एक्सरे औज़ार, तंहिंमें AI सां वासिदार रिपोर्टिंग मिलंदी, वधायल NAAT बुनियादी ढांचो, क़ौम जे समत ते ज़ख़ीरनि खे मोबिलाइज़ कयो आहे त जंहिंसां कमज़ोर तबक़नि पुठिते पियल तबक़नि ते ज़ोर ॾिनो वञे ऐं अवाम जी भागीदारी खे भाईवारी खे शुमार कयो आहे। सिहत ऐं कुटुंब बहबूदगी जे काबीना वज़ीर जगत प्रकाश नंदा ताज़ो ई जिनेवा में थियल 79 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सेशन खे इजलास कंदे चयो त तव्हांजी सिहत जो सिरिश्तो ऐं तव्हांजे फेफड़नि जी सिहत जो सिरिश्तो ॿई ॻंढियल आहिनि। इहो उनवान पिणु हो। इन वाक़िए खे गॾिजी करे इंतिज़ामु करायो भारत, जापान ऐं फिलिपींस ऐं ज़ैम्बिया। मेड़ खे ख़ताबु कंदे श्री नंदा ज़ोर ॾींदे चयो त वक़्तु सर ॻोल्हा करण सां, वक़्तु सर इलाजु करण सां ऐं बहितर पहुच सां मरीज़नि जो इलाजु सवले नमूने थिए थो। भारत जे डिजिटल इनिशिएटिव यानी शुरूआति ते श्री नंदा ध्यानु चिकारे त वज़रात इन ॾस में टीबी मुक्त भारत अभियान जेको ऐप शुरू कयो आहे तंहिंजो नालो आहे ख़ुशी। तंहिंमें AI सां वासिदार ॿहुनि तरफ़ी चैटबोट्स आहिनि जिन जो मक़सदु आहे कि जेके स्मार्टफोन घणो इस्तेमालु नथा कनि तिन खे पिणु पहुच सवली मिली वञे, छो जो हिन में हर ॿोलीअ में माण्हू ॻाल्हि ॿोल करे सघे थो। इन ॾिस में आलमी तावन जो पिणु मर्कज़ी काबीना वज़ीर सॾु ॾिनो। भारत जी वचनबद्धता खे दोहराईंदे कि आलमी निशाननि खां अॻु में टीबीअ खे ख़तमु कयो वञे, मर्कज़ी काबीना वज़ीर सिहत वज़ीर चयो त टीबीअ ख़िलाफ़ु जंग वधीक हिकु पुख़्ते सिहत सिरिश्ते जो इशारो ॾेई रही आहे। तंहिंमें बहितर डायग्नोसिस थी रहियो आहे, साफ़ु माहौल आहे ऐं न्यूट्रिशन खे बहितर कयो आहे। इन खां अलावा समाज बराबरी ते अची वियो आहे। हिन आलमी क़ौम खे सॾु ॾिनो त जल्द जल्द हिन बीमारी जो इलाजु ॻोल्हणु घुरिजे, इनखे जल्द चकास करणु घुरिजे। श्री नंदा भारत जे वचनबद्धता खे ॿीहर दोहिरा त सरकार, भारतीय सरकार इनोवेटर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स ऐं कम्यूनिटीज़ सां कॉल बद आहे त आलम भर में फेफड़नि जे इलाज जो जल्दी कढियो वञे। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

सजण तोखे ख़बर कहिड़ी सामनी प्रोग्राम खणी करे अव्हां जी क़िस्मत में हिकु दफ़ो वरी खां हाज़िर थिया आहियूं। सिंध में जिते औरतुनि खे ज़ुल्म सां हलाक थो कयो वञे, कारोकारी जो उते सकाफ़त आहे, कल्चर आहे, संस्कृति आहे। हिते भारत में उनजे उबतर औरतुनि खे तमामु घणी आज़ादी आहे, न फ़क़त फैशन खां वठी करे पर रोज़गार में पिणु, ऐं काफ़ी वॾनि उहिदनि ते सदन पोज़ीशन आहे। अजाज मंगी जो सिंध एक्सप्रेस में आर्टिकल शाया थियो आहे, जंहिंजो टाइटल आहे कारोकारी कल्चर ऐं सियासी धुरियुनि जो किरदारु। लिखंदा की सिंध में कारोकारी जो काफ़ी क्रिमिनल कल्चर हरियो आहे ऐं गैरत जे नाले में नारियुनि जो कतलेआम हिन देश में को नओं कान्हे, ऐं मीडिया ऐं सोशल मीडिया सबबु इहे सभु पाप पधरा थी रहिया आहिनि। जेके अॻु में लिकल हूंदा उहे नारियूं जेके अॻे उच गोह में क़तल कयूं वेंदियूं, से अॼु हिननि जूं तस्वीरूं ऐं वीडियो सोशल मीडिया ज़रिए अवाम में ज़ाहिर थी रहिया आहिनि। पर पोइ बि अञा इहो ख़तमु कोन थियो आहे मसइलो, ऐं जेके इहे मर्द जेके गैरत जे नाले में पंहिंजे माउरनि भेनरुनि ऐं जीवन जो दुख सुख साथियुनि खे क़तल था कनि, से अञा ताईं कानून जे शिकंजे में कोन आया आहिनि। इजाज़ मंगी पंहिंजे आर्टिकल में अॻिते लिखनि था की इहो दौरु न फ़क़त पंध में आहे पर इहो दौरु तमामु दूर पिणु आहे, जंहिंमें घर जा गलीस तस्वीर तबाह ऐं बर्बादु थींदा। हीउ सुवाल था कनि त छा गैरत जी अलामत फ़क़ति औरत आहे? छा हिन देश मथां लॻंदड़ धाड़नि ते गैरत जाॻाइण न घुरिजे? छा चंद नौतनि ते क़ौम जी तकदीर जो ताइन कंदड़ वोट जो विकिरो गैरत जो मामिलो न आहे? इन तरह अजाज मंगी पंहिंजे आर्टिकल में ॿिया बि सुवाल कनि वेठा। मसलन की ग़ुलामी खां बदतर गार हिन महिल ताईं वजूद में न अची सघी आहे। उहे इंसान जेके ग़ुलामी में ॼमनि था ऐं ग़ुलामी में मरनि था, जिन खे समूरी ज़िंदगी दौरान इहो तक पतो नथो पवे कि हू ग़ुलाम आहिनि, ऐं ग़ुलाम जेके आहिनि से अबनि ग़ुलामनि औरत मथां हथियार खणणु वक़्तु पंहिंजे बुज़ुल बेसी जो सबूत था पेश कनि। हाणे सुवाल था कनि त छा असांखे वक़्त जो इंतज़ारु करणु घुरिजे? जेको अचणो त अवसर आहे पर कॾहिं तब्दीली जा काफ़िला अचण में देरी लॻाए रखंदा आहिनि। तंहिं करे इहा कानून जी ज़रूरत आहे ऐं मुल्क जे आइन जी घुर्ज आहे त इन ॾिस में अगरा थी करे कारवाई कनि। ऐं सिंध एक्सप्रेस में अजाज मंगी जे शाया थियल आर्टिकल कारोकारी कल्चर ऐं सियासी धुरियुनि जो किरदार जो कुझु हिसो ॿुधी रहियो, बाक़ी हिसो हिन कलाम खां पोइ।

हींअर पेश आहे अजास मंगी जे आर्टिकल जो बाक़ी हिसो जेको हुननि लिखियो आहे सिंध एक्सप्रेस में, कारोकारी कल्चर ऐं सियासी धुरनि जो किरदारु। लिखंदा कि सिंध में बहितर तब्दील लाइ सिंध जे अदीबनि ऐं शाइरनि तमामु घणो कमु कयो आहे, ॿियनि ॿोलियुनि जे आर्टिस्ट पिणु पंहिंजो फ़र्ज़ु निभायो आहे, पर अफ़सोस त असांजे सियासी पार्टियुनि पंहिंजो रोल कोन निभायो आहे ऐं उहे शांति बणिया वेठा आहिनि। जेको खेनि कमु करणु खपंदो, इहा ॾाढी वॾी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, छो सियासी पार्टियूं पंहिंजे मंशूरनि में वाइदा बि कंदियूं आहिनि पर जॾहिं अमल जो वक़्तु ईंदो आहे त क़दम कोन खणंदियूं आहिनि। इहा सियासी पार्टियुनि जी बेवफ़ाई पिणु चई सघिजे थो। तंहिं करे वक़्त जी तक़ाज़ा आहे, कानून जी ऐं आईन जी पिणु घुर्ज आहे त औरतुनि खे तहफ़ुज़ करायो वञे ऐं जेको कारोकारी जो हिकिड़ो बदज़न रस्म आहे या चइजे सकाफ़त आहे तंहिंखे पाड़सूदो थोरे कढी फिटर करणु खपजे। ऐं सिंध एक्सप्रेस में शाया थियल अजाज़ मंगी जो आर्टिकल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो कारोकारी कल्चर ऐं सियासी धुरनि जो

हींअर पेशेंट ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अॼु दिल्लीअ में साइप्रस जे सदर क्रिस्टोडोलिस सां ॻाल्हियूं कंदो। कॉमर्स, तिजारत ऐं हुनर वज़ीर श्री पीयूष गोयल चयो आहे त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजनि मुल्कनि जी यात्रा समाज जे हर खेत्र में एडवांटेज जी गारंटी थी ॾिए सो आहे ऐं आलम भर में भारत खे हिकु भरोसेमंद भाईवर तौरु ॾिठो वञे थो। भारत ऐं मिस्र दहशत ख़िलाफ़ बाहिमी तावन जे अहमियत ते ज़ोर ॾिनो आहे। तंहिं मां भारत मिस्र हिकमत अमली भाईवारी जो अक्स जो पतो पवे थो। पुलवामा दहशत अंगज़ मास्टर माइंड हमज़ा बुरहान खे पाकिस्तान पारां ज़ोरी खयल कश्मीर में अणॼातल बंदूकबाज़नि क़तलु कयो आहे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट जेका नई दिल्ली में 1 जून ते थियण हुई तंहिंखे मुहमल कयो आहे। ऐं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स चेन्नई सुपर किंग्स खे अहमदाबाद में 99 रनसुनि तां मात ॾिनी।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी उन सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30। तेसीं ताईं ॾींदा मोकल सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों

0: के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road, Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 till her cremation. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's joint director, East, will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. The young medic was sexually assaulted and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Ministry of Railways has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at the Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Minister of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway officials and field officers from across the country, attended the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him the opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
3: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
2: Mr. Rubio will be in India from the 23rd to the 26th of this month and will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. The Quad meeting is scheduled on the 26th of this month. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:10:16. अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका. इसमें आज आप सुनेंगे कलाकार चंद्रमा द्वारा गाए नजरूल गीत. इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष.

0: ये आकाशवाणी का
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। इसके अंतर्गत अभी आपने सुना चंद्रानी द्वारा नजरूल गीत। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 7:31 होने को हैं। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा।

0: एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ
0: एडमिशन कराने? आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, साथ ही साथ अपने पैसे को भी सुरक्षित रखिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का बड़े ही प्यारे से गीत के साथ, और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ चलेगी बात, बहुत सारी बात, और साथ ही साथ सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत से गीत।

जी हाँ, धूप निकलती है जहाँ से वहीं से आती है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो आपको बढ़ाती है आपकी जिंदगी में और थोड़ा आगे और कुछ कर दिखाने के लिए करती है प्रेरित। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जिंदगी ना बिल्कुल रेडियो की तरह होती है, कभी सिग्नल फुल तो कभी थोड़ा सा नॉइजी, कभी गाने दिल खुश कर देते हैं और कभी कोई पुरानी याद आंखें नम कर जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, चैनल बदलने की ताकत हमेशा हमारे हाथ में होती है। जी हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है वो गाना, वो चैनल, वो प्रोग्राम, तो आप सुन सकते हैं, सुनते रहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप फौरन स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है ना दोस्तों, अगर कोई इंसान आपका मूड ऑफ कर रहा है ना, तो बस दिल का चैनल बदलिए। ये बात हमारे दिल पर भी लागू होती है क्योंकि इसका बटन भी तो हमारे ही पास होता है ना, तो बस अपने दिल का जो है ना चैनल बदलिए और ट्यून हो जाइए उन लोगों के साथ जो आपको मुस्कुराना सिखाते हैं। क्योंकि हर सुबह यही पूछती है कि कल क्या हुआ था, वो बस एक नई शुरुआत लेकर आती है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं, आज की आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:45 और ये हुए पूरे 20 सेकेंड्स।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और हम उससे बोर होने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई कुछ खास तो हो ही नहीं रहा है लाइफ में। लेकिन याद रखिए दोस्तों, साधारण सी दिखने वाली चाय भी ना सही लोगों के साथ हो तो यादगार बन जाती है। तो अपनी लाइफ में जोड़िए कुछ ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा रोमांटिक, एक्साइटेड और खूबसूरत बनाए। तो आज थोड़ा खुलकर हंसिए, थोड़ा दिल की सुनिए और थोड़ा उन लोगों को वक्त दीजिए जो आपके बिना अधूरे हैं। और कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये बात आप भी जानते हैं कि आप भी उनके बगैर अधूरे हैं।

जी हाँ, ये अजूबा ही था जो अभी अभी हुआ. कुछ गलत सॉन्ग मुझसे प्ले हो गया और इट्स काइंड ऑफ अजूबा अजूबा.

और फिलहाल एक और अजूबा हो रहा है, जो वक्त है वो बहुत ही तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:51 और पूरे 43 सेकेंड्स। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन इसको अच्छी जरूर बना सकते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को अपने कहते हैं ना जिंदगी में शामिल करके, उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करके, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। जिंदगी में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सभी अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, और वो जो बुरे लोग होते हैं ना, वो भी आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देकर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी सराउंडिंग्स रखिए, अपने आसपास में ऐसे लोगों को भी रखिए जो आपको आपकी गलतियों के लिए कहते हैं ना कि बता सके कि आपने गलत किया है, उन्हें चुनकर। जी हाँ, इसी तरीके से हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है।

जी हाँ दोस्तों, अजूबा तो होता ही रहता है हमारी लाइफ में, कभी कुछ तो कभी कुछ, जो वो अनजाने में हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबली हो जाता है, जिसके बारे में आप जानते नहीं वो अजूबा ही होता है। तो उस अजूबे के साथ आपको अपनी लाइफ जीनी होती है और कुछ सीखना भी होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त एक बार फिर से ढेर सारी बातों का पिटारा लेकर और ढेर सारे गीतों के साथ और साथ ही साथ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ दोबारा

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे

0: पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का

0: सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट शेड्यूल टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली ऑन जून 1st पोस्टपोन्ड। Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways Ajay Tamta at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional

0: में पानी की बचत को मुस्तहकम करने के खातिर एक अहम इकदाम का ऐलान किया है, जिसके तहत मानसून के आगाज से पहले 75 सरकारी स्कूलों में बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को बहाल किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इम्कान है कि इससे बारिश के पानी को जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 50 करोड़ लीटर हो जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटन्स के लिए मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रिबाडा ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, गैर मुल्की दौरे के बाद वजीर आजम की सदारत में काबीना की अहम मीटिंग, बहरान के दौरान आवाम को बिला तातुल सहूलतें फराहम करने का आजम, तमाम वजरा को अपने महकमों में गैर जरूरी अखराजात कम करने की हिदायत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़ा अव्वल की अहम खबर है, मुल्क में एसआईआर के तीसरे मरहले का आगाज, 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में खसूसी नजरसानी मुहिम चलेगी। वज़ीर दिफा ने जनूबी कोरिया में बनी हिंदुस्तानी जंगी यादगार का इफ्तिताह किया। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। इसी सफ़े पर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का यह बयान भी मौजूद है कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने शुरू, 7.72 लाख लोगों को मिलेगा फ़ायदा।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन अलाक्वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का ऐलान किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी चाहे तवानाई खरीद सकता है, अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:45 और 15 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे अपूर्वा तिवारी द्वारा राग मियाँ की तोड़ी में गायन। इनके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर शीतू कुमार सिंह, तबले पर समीर खान।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे गायन अपूर्व तिवारी का, राग था मियाँ की टोडी। संगत कलाकार थे हारमोनियम पर क्षितिज कुमार सिंह, तबले पर समीर खान। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन। आलेख एवं स्वर शगुफ्ता यास्मीन।
1: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में गांधी जी ने जो अभिन्न योगदान दिए हैं उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। बापू कहते थे, श्रद्धावान मनुष्य को भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के भय से अपना वर्तमान कर्तव्य छोड़ना नहीं चाहिए। बापू के इस कथन को उनके द्वारा अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने के क्रम में बखूबी देखा जा सकता है। एक हार्ड मास के पतले दुबले व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों की इतनी बड़ी हुकूमत को बिना किसी हिंसा के सिर्फ अपने अहिंसक प्रयासों से झुका देने वाले, वो कोई और नहीं, वो महान व्यक्ति महात्मा गांधी हैं। सन 1920 में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति समूचे देश में आक्रोश बढ़ने लगा था। लोकमान्य तिलक जी ने पहली बार यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन 1 अगस्त 1920 को उनके निधन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक बड़े नेता को देश ने खो दिया था। गौरतलब ये है कि इस संग्राम में गांधी जी ने गोखले जी के बाद लोकमान्य तिलक जी को ही अपने सबसे निकट पाया था। इसी वर्ष 1920 में बापू के द्वारा देशव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। इसके तहत गांधी जी ने देश के निवासियों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव का भ्रमण किया। इस दौरान महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन में मुख्य रूप से भारतवासियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां एवं सम्मान

वापस लौटा देना, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, काउंसिल एवं चुनावों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सेना में भर्ती होने से इनकार कर देना, शराब की दुकानों पर धरना देना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया था। असहयोग आंदोलन में बापू के आह्वान पर जहां एक ओर देश के युवाओं ने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का बहिष्कार किया, वहीं वकीलों ने कोर्ट कचहरियों में जाना छोड़ दिया था। बापू के इस जन आंदोलन में सरकारी कर्मचारियों ने भी योगदान देने के लिए भारी मात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया। आंदोलन के दौरान जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। सरकारी शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए बड़े बड़े घरों की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए उन दुकानों के आगे भारी मात्रा में धरने देने शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी के इस देशव्यापी आंदोलन में योगदान देने के लिए बंगाल के देश बंधु चित्त रंजन दास जी ने भी अपनी लाखों की वकालत, आलीशान मकान और संपत्ति को त्याग कर एक झोपड़े में रहना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर बाबू ने भी अपनी सुस्थापित वकालत और जमींदारी को देश हित के लिए न्योछावर कर दिया था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी इस आंदोलन में अपने राजसी ठाट बाट को त्याग कर अपनी पत्नी के साथ एक साधारण से आंदोलनकर्ता के रूप में बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने भी अपनी लाखों की जायदाद देश हित पर न्योछावर कर एक सच्चे सत्याग्रही के रूप में कार्य किया। वहीं मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी अपनी वकालत के व्यवसाय को ठोकर मारकर गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी के चलते बंबई में विठल भाई जमनालाल बजाज जैसे रईस मिजाज लोगों ने भी देश हित में अपने योगदान देने के लिए अपने ऐशो आराम को त्याग कर सादगी को अपनाया। इस प्रकार संपूर्ण देश में मानो देश की आजादी के लिए अपने अपने बलिदानों की होड़ सी लग गई। यह मंजर देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने भी सख्ती से पेश आते हुए असहयोग आंदोलन की कमर को तोड़ने के लिए सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डालना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के एक छोटे से गांव चौरी चौरा की एक घटना ने पूरे आंदोलन की दिशा और दशा ही बदल डाली थी। 4 जनवरी 1922 को इस गांव से आंदोलनकारियों का एक अहिंसक जुलूस निकाला गया था, लेकिन इसी दौरान कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा छींटाकशी के चलते तनाव बढ़ गया था और पुलिस फायरिंग में एक आंदोलनकारी के मारे जाने से सभी आंदोलनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा था और पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी आग में जलकर मर गए थे। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए। बापू के इस आंदोलन में अहिंसा आत्मा के समान समाई थी। बापू का मानना था कि जब आत्मा ही दम तोड़ दे तो सारा शक्तिपुंज ही नष्ट हो जाता है। चौरी चौरा की इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। आखिर महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की इस घटना का दोष अपने सर ले लिया। इसके कारण 10 मार्च 1922 को उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर राजद्रोह के जुर्म में 6 साल की सजा सुनाई गई। आंदोलन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखते हुए देश के अहमदाबाद में विद्यापीठ, पटना में राष्ट्रीय विद्यापीठ, वाराणसी में काशी विद्यापीठ, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और पुणे में तिलक विद्यापीठ जैसे 5 शिक्षण संस्थानों की स्थापना

0: स्थापना की गई। महात्मा गांधी का मानना था कि जब एक शासक अत्याचारी, अन्यायी और जनता का शोषक बन जाता है तो उसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। बापू के अनुसार असहयोग का उद्देश्य है कि अत्याचारी और अन्यायी शासक को उनकी गलतियों का ज्ञान कराकर उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही के हृदय में विपक्षी के प्रति शत्रुता और द्वेष का कोई भी भाव नहीं रहता है। वह तो सिर्फ असहयोग कर उसे सही मार्ग पर लाता है। बापू कहते हैं कि असहयोगी स्वयं अधिकतम कष्ट सहकर भी अपनी विपक्षी के अन्यायपूर्ण कार्यों में सहयोग नहीं करता है। वो तो उसे ये अनुभव करवाने का प्रयत्न करता है कि वो उसका शत्रु नहीं बल्कि उसका मित्र और हितेशी है। अतः असहयोग का उद्देश्य सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार असहयोग का प्रयोग व्यक्तिक, पारिवारिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन। आलेख एवं स्वर शगुफ्ता

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

9:35 पर सुबह ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। खबरें नशे की जाएंगी 9:50 पर और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अकवाले जर्री पर मबनी शम्मे फरोजा। हुस्ने गज़ल प्रोग्राम में आज के फनकार हैं मज़र अली और अंजना चोपड़ा। आप पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गज़लें। इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05। सुबह 10:30 आप सुनेंगे

11:30 पर लियो टॉल्स्टॉय की कहानी पर मबनी ड्रामा आप सुनेंगे खुदा के घर, देर है अंधेर नहीं। दिन में 12 बजे खबरें नशी की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 12:45 तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 आप तारीख सास प्रोग्राम सुनेंगे। आज का मौजू है शेर शाह सूरी।

0: 12:45 पर प्रोग्राम पेश होगा सुर्खियों में, और 1 बजे दिन में आलमी खबरें नशर की जाएंगी। 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ़ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबकाही। सुबकाही प्रोग्राम में समात कीजिए हमदे बारी ताला और नात रसूल करीम। पेश कर रहे हैं डॉक्टर अफजल मंगलौरी।
1: हम्द शरीफ पेश कर रहा हूँ।
2: अजीम रब दो आलम तेरी सना के लिए, अजीम रब दो आलम तेरी सना के लिए, हुदूद फिक्रे

ये कोसार, ये दरिया, ये गुलशनो सहरा, ये कोसार, ये दरिया।

افضل ندامتوں کے عشق تیرے حضور میں افضل

गदाई पे मुझे नाज भी है, अपनी गदाई पे मुझे नाज के मैं भी।

0: Subgrahi program me de bari taala aur naat rasool kareem pesh kar rahe the Dr. Afzal Manglori. Ye Akashwani ki Urdu service hai. Pesh khidmat hai program aaj savere.
1: बढ़ते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां 22 मई से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने दुनिया को नई सोच और नई पहचान देने का काम किया। आइए जानते हैं आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1906 में राइट बंधुओं को उनकी उड़ान भरने वाली मशीन के लिए आधिकारिक तौर पर अमरीकी पेटेंट दिया गया जिसने विमानों के नियंत्रण प्रणाली की नींव रखी। 1963 में आज ही के दिन भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान और गाइडर रोहिणी सफलतापूर्वक कानपुर के आसमान में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। 1989 में भारत ने चांदीपुर के ओडिशा से अपनी पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का पहला सफल परीक्षण कर उन्नत मिसाइल तकनीक वाले विशिष्ट देशों में प्रवेश किया था। और 2007 में आज ही के दिन भारतीय मूल के प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे के राजा द्वारा गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर और बात करते हैं उन प्रमुख व्यक्तित्वों की जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है।
2: वैष्णवी, टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट विजनरी राजा राममोहन रॉय। बॉर्न इन 1772 इन बंगाल, राजा राममोहन रॉय वॉज अ विजनरी हु स्ट्रांगली फॉट अगेंस्ट सोशल इवल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। Raja Ram Mohan Roy believed in reason, education, equality at a time when such ideas were rare.
1: जी बिल्कुल, और राजा राम मोहन राय मानते थे कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी सोच के साथ उन्होंने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर धार्मिक और सामाजिक सुधारों का नया आंदोलन शुरू किया।
2: And Vaishnavi, if I'm not wrong, at the beginning of the program, you promised the listeners that you'll bring a collection of nice numbers, nice lovely songs. So let's first of all remember the great Homi Vadia. Today is his birth anniversary, film director and producer. We've brought a short collection of beautiful numbers from his movies.

0: zara.
1: And listeners, we are also extending our good wishes to some great names who have birthdays today. Erappalli Ananth Srinivas is a former Indian cricket player and he was a spin bowler specializing in off-spin and a member of the Indian Spin Quartet. He has received the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award in 2004, the highest honor bestowed by BCCI on a former player. We are also wishing a very happy birthday to Rajit Kapoor. He is a theatre actor and director and known for his portrayal of Mahatma Gandhi in the 1996 film The Making of the Mahatma, for which he won the National Film Award for Best Actor. And today is also the birthday of Novak Djokovic, the Serbian professional tennis player. And Djokovic has been ranked as world number one in men's singles by the Association of Tennis Professionals for a record 428 weeks.
2: श्रोताओं, कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जिनकी धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन जाती है। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा को अपनी मधुर धुनों से सजाने वाले लोकप्रिय संगीतकार राम लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था और 80 से 90 के दशक में उनके संगीत ने हिंदी फिल्मों को नई मिठास और नई पहचान दी थी। उनकी धुनों में भारतीय संगीत की आत्मा, सादगी और भावनाओं की गहराई साफ महसूस होती थी। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और पत्थर के फूल जैसी फिल्मों में दिए गए उनके गीत आज भी हर पीढ़ी के पसंदीदा है। उनके गीत की खास बात ये थी कि हर धुन सीधे दिल को छू जाती थी। प्यार, अपनापन, दोस्ती और रिश्तों की भावनाओं को उन्होंने अपने संगीत में बेहद खूबसूरती से पिरोया था। और आइए अब आपको सुनाते हैं राम लक्ष्मण की उन्हीं सदाबहार धुनों को जिन्होंने हिंदी सिनेमा के संगीत को कई यादगार पल दिए।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और सरबजीत को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
3: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखिर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर आबरू रेजी और कत्ल केस में इल्जाम पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। कुब्रस के सदर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं के मरकजी वजीर ममलिकत अजय तमता ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। कुब्रस के सदर के हमरा वजीर खारजा ट्रांसपोर्ट मवासलात और कामकाज के महकमे के वजीर सीनियर अहदेदारान और कारोबारियों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी है। उनका ये भारत का पहला दौरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुब्रस के सदर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर बातचीत करेंगे। इनमें तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी तालीम सकाफत मोबिलिटी दिफा और सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक इख्तरा और तहकीक जैसे शोबे शामिल हैं। वो कसीर रुखी इश्तराक समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मामलों पर भी नजरियात का तबादला करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। जना मोदी कुब्रस के सदर के एजाज में जोहरानी की मेजबानी करेंगे। शाम में कुब्रस के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे।

0: गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अलावामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रस के सदर निकोस क्रिस्टो डोलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत अकवाल ज़र्री पर मबनी शम फरोज़ा।
2: ज़माने क़दीम के शोरे आफाक चीनी हकीम मुदब्बिर और मौलिम कन्फ्यूशस से किसी ने जब नेकी के माने पूछे तो उन्होंने जवाब दिया, जब तुम घर के बाहर हो तो लोगों से इस तरह मिलो जैसे किसी मौजिज मेहमान से मिलते हैं। लोगों को हिदायत करते वक्त अपना तर्ज अमल ऐसा रखो जैसा कि नजर व नियाज या मजहबी रसूम बजा लाने के वक्त रखते हो। दूसरे के साथ ऐसा अमल न करो जैसा तुम अपने साथ किया जाना पसंद न करते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो न तो किसी को तुम से अदावत होगी और न तुम्हारी जिंदगी में किसी को तुमसे आजुर्दगी होगी। जब से दुनिया में इंसान ने शऊर हासिल किया है वो यही देख रहा है कि हर जमाने और हर मुल्क में जो भी अंबिया और पैगंबर, देवता और संत, सूफी और भक्त, दानिश्वर और हकीम आते रहे वो सब इंसानों को अच्छे और नेक काम करने की ही तलकीन और नसीहत करते रहे। अगर कोई कहे कि दुनिया क्या है, इसकी तारीफ सिर्फ दो लफ्जों में करो तो इसका एक आसान सा जवाब यही होगा, नेकी और बदी का मजमुआ। नेकी है तो बहुत छोटा सा लफ्ज, लेकिन अगर इसकी तारीफ की जाए तो बात में से बात निकलती चली जाएगी और इसका सिलसिला दराज से दराजतर होता चला जाएगा। कुरान करीम में तो साफ साफ कहा गया है कि नेकी की तौफीक खुदा ही की तरफ से होती है, लेकिन साथ ही बार बार नेकी के काम करने की इस तरह रग़बत दिलाई गई है, अगर तुम नेकी इख्तियार करोगे तो इसमें तुम्हारी भलाई है। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। क्या नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और भी हो सकता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नेकियों का मजमुआ और बजाते खुद नेकियों और शराफत का बेमिसल नमूना है, नेकी की ताकीद ये कहकर फरमाते हैं, अफजल तरीन नेकी खल्क को आराम पहुंचाना है। हत्तल मख्तूर हर एक से नेकी करो, नेकी से उम्र बढ़ती है। हजरत अली करमल्ला वजू ने अगर खंदरवी से पेश आना सबसे पहली नेकी बताया तो इमाम गजाली ने इसकी अहमियत के पेश नज़र ये ताकीद की कि लोगों की नेकियों को जाहिर करना चाहिए और बुराइयों से चश्म पोशी लाजिम है। इमाम हुसैन का अगर ये फरमान है कि फयाजी ये है कि ऐसे लोगों से नेकी की जाए जिनसे कोई उम्मीद और आसरा ना हो, तो शेख सादी उसकी हिम्मत पर कुर्बान हुए जो खलूस के साथ नेकी करता है।

0: महात्मा बुद्ध ने सदाकत को नेकी करने वालों की मान करार दिया तो तुलसीदास ने बुराई को नेकियों से दूर करने का मशवरा दिया। भगवद गीता ने कहा कि शराफत इंसान को नेक और हलीम बनाती है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये गुर की बात बताई कि नेकी और शराफत लिबास से नहीं आमाल से पहचानी जाती है। शेक्सपियर ने अगर नेकी में दुनिया का सबसे दिलकश हुस्न पोशीदा बताया तो शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने नेक बनने की दुआ की, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पे चलाना मुझको।
1: अभी आप सुन रहे थे अकबाल जर्रे पर मबनी शम फरोजा, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। हुस्न गज़ल इस प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए मज़हर अली ख़ान और अंजना चोपड़ा की गए चंद गैर फिल्मी गज़लें। कलाम है मोमिन खां मोमिन, मिर्ज़ा गालिब और जानिसार अख्तर का। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मज़हर अली ख़ान की गई मोमिन खां मोमिन की इस गज़ल से।

0: اس غزل کے ساتھ ہی حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر ہماری نشریات اب سن رہے ہیں. اولی جب سنیے پروگرام کنٹری وائٹ.
1: کنٹری وائٹ
2: नमस्कार. कंट्री वाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा. हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक. डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
3: नमस्कार.
2: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है.
3: तो ये हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का. और जो हम डिपार्चर, जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं. जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं. तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है.
2: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं. कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हमें इस तरह का देखने को मिल रहा है. तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
3: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं. और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा. बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है. मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है. काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा. सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था, काल बांदा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री. तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है. लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्ट एरिया, कर्नाटक कोस्ट एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है. बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है.
2: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है, इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनी

0: गर्मियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
1: हीट वेव भी आजकल इस स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव पे चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो को ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें चार कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये चार कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसे स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, ये हम कलर कोड वार्निंग के देके उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
0: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
1: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम देखें लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
0: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
1: देश की बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है पूरा मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा, धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ से दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
0: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
1: ठीक है, हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे, दिल्ली में क्या है आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब कि एक दिन के अंदर आज ये शाम को 4 बजे के बाद क्या होगा, 6 बजे के बाद क्या होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
0: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं?
1: हाँ, अर्बन हीट आइलैंड देखो, ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है, दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उससे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा, आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा। और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका एसी है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
0: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां

0: हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
1: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा। लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है, तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
0: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
1: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए, जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
0: डॉक्टर पटनायक, कभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
1: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं। वो ऑलरेडी हर मंथ का, हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में, ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
0: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आंकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
0: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
1: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये सब सारा तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तक ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें

0: तो साउथ में तो कम होने के चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुछ पार्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सके।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैल है उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सर अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान दे के आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: कंट्री वाइड
3: समीन वेब सुन रही थी प्रोग्राम कंट्री वाइड, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

सबक फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मौसीकी चित्रगुप्त की थी। और लीजिए सुनिए अली बाबा और 40 चोर फिल्म का नगमा शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ।

0: हट्टो हट्टो हट्टो हाय पड़ो न गले जाओ जी तुम्हारे यहाँ दाल न गले यहाँ दाल न गले।
1: ए चलो चलो चले हम बबूल के तले,

और लीजिए सुनिए मेरी पसंद प्रोग्राम में कोहिनूर फिल्म का दो गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी नौशाद की।

मेरी पसंद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गंगा जमुना फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ नगमा निगार शकील बदायूं ने मौसीकी नौशाद की।

0: गया है, कुछ हो गया है हमको, हम खो गए जो दिल खो गया है, कुछ हो गया है हमको,
1: किस्मत

0: हेलो।
1: सुनो
0: जी, हेलो जी
1: हाँ, क्या तुम्हारा नाम इवान अक्सविनोफ है?
0: जी
1: मैं पुलिस ऑफिसर मिखाइल हूँ और ये मेरे साथी यूरी हैं। ये बताओ, तुम यहाँ इस सराय में आने से पहले कहाँ थे?
2: जी मैं घर से चला तो नॉर्थ टाउन से पहले मुझे रास्ते में एक पुराना शनासा औंद्रे सौदागर मिल गया। हम लोगों ने साथ साथ सफर किया और नॉर्थ टाउन की सराय में एक साथ रात गुजारने का फैसला किया। रात को वहाँ खाना खाकर हम अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए।
1: तो फिर आप मुंह अंधेरी वहां से क्यों चले आए?
2: देखिए, मुझे रात होने से पहले ही मारकान पहुंचना था, इसलिए मैं अलजबे वहां से चल दिया।
3: आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यूरी को खुदा हाफिज कहा जाए?
2: एक मिनट रुकिए, आप दोनों मुझसे ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं जैसे किसी चोर या डाकू से किए जाते हैं? देखिए, मैं अपने काम के सिलसिले में यहां से गुजर रहा हूं और मुझसे ये सवालात करने का क्या तुक बनता है?
1: हम दोनों ये सवालात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस यूरी नाम के सौदागर के साथ तुमने पिछली रात गुजारी थी ना, उसकी लाश आज सुबह उस सराय से बरामद हुई है।
2: क्या
1: उसका कत्ल गला काट के किया गया है।
2: क्या कह रहे हैं आप?
3: हमें तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी होगी। ये बैग तुम्हारा है?
0: जी, मेरा ही है ये बैग।
1: बैग देखो और सार्जेंट बाहर घोड़ा गाड़ी भी देखो।
0: जी जी
3: ये किसका चाकू है?
0: जी, चाकू?
1: इस पर तो खून लगा है। ये तुम्हारा चाकू है?
3: बोलो, इस चाकू पर खून कैसे लगा?
0: नहीं, देखिए, मुझे कुछ नहीं पता।
1: ये 8,000 रुपये कहां से आए? आज सुबह उस सौदागर की लाश बरामद हुई जिसका गला कटा हुआ था। एक तुम ही हो जिसने यह कत्ल किया है।
0: नहीं, मैंने कुछ नहीं
1: किया। अंदर से बंद था और वहां कोई नहीं था।
0: देखिए,
1: ये रहा वो खून से लथपथ चाकू।
0: देखिए देखिए साजन,
1: और देखो और देखो देखो, तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि यह खून किसने किया है।
0: मैंने कुछ नहीं किया।
1: बताओ मुझे, तुमने उसे कैसे मारा?
0: देखिए, आप जबरदस्ती
1: पैसा लूट कर कहां भाग रहे थे तुम?
0: देखिए, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए।
3: बताते हो या नहीं?
0: मैं बोल तो रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रात के खाने के बाद यूरी को देखा तक नहीं, और ये 8,000 रुपये मेरे खुद अपने हैं, और ये चाकू मेरा नहीं है।
1: ठीक है, तो मैं गिरफ्तार किया जाता है।
0: नहीं, देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं। आप मुझे छोड़िए,
3: जो कहना गलत,
1: जो कहना
3: है अदालत में जाकर कहना।
0: मेरी बात सुनिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते।
3: देखिए, तो या नहीं,
1: मेरा सारा सामान और पैसा जब्त किया जाता है। हम तुम्हें व्लादिमीर की जेल में भेज रहे हैं जहां कत्ल हुआ था।
0: चलो,
1: कार्रवाई वही होगी।
0: निकोलाई, मुझे बचाओ, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया।

0: अरे तुम अपनी कैद का रोना रो रहे हो। मालूम है वो जो बुजुर्ग बाबा सामने बैठे हैं ना, उनको यहां साइबेरिया के सर्द जहन्नुम में आए पूरे 26 साल हो चुके हैं। हर इंसान जानता है कि वो फरिश्ता सिफत इंसान है, कोई जुर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये कैद की जिंदगी काट रहे हैं।
1: भैया अगर ऐसा है तो उन्हें रिहाई की कोशिश तो करनी चाहिए थी।
0: जार के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे उनको देखकर कितना दुख होता है ये मैं बता नहीं सकता।
1: ये हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, देखा मैंने।
0: यहां जेल में इवान अक्सिनोफ ने जूते बनाना सीखा और जूते बना बना कर उन्होंने कुछ पैसे भी कमाए, जिससे वो किताब खरीदी जिसका नाम है वलियों की जिंदगियां। इवान साहब ये किताब चर्च के अंदर बुलंद आवाज में पढ़ते हैं। जेल के सभी बड़े अफसर भी इवान अक्सिविनोव को उनकी नेकी की वजह से पसंद करते हैं और दूसरे कैदी भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे सभी कैदी अपने सारे झगड़ों का मुंसिफ उन्हीं को बनाते हैं। कोई उन्हें बाबा कहता है तो कोई दादा कहकर पुकारता है।
1: लोग कहते हैं इवान अक्सिविनोव को यह तक नहीं पता कि इनके बीवी बच्चे जिंदा भी हैं कि नहीं।
0: ओहो छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम लोग नए कैदियों से मिले जो कल लाए गए हैं?
1: हाँ बाकी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन उनमें से एक बहुत खतरनाक सा लगता है।
0: कौन सा?
1: अरे वो जो तकरीबन 60 साल का लंबा चौड़ा सा आदमी है ना, वो।
0: हाँ वो घोड़ा चोर तो पक्का गुरु घंटाल है। अरे लो वो देखो, वो तो इधर ही आ रहा है।
1: हाँ इधर ही आ रहा है वो तो।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
1: आओ आओ। वैसे हम में से किसी को यकीन नहीं आया कि तुम्हें घोड़ा चुराने की वजह से साइबेरिया भेज दिए गए।
2: अरे भाई मैंने घोड़ा नहीं चुराया था, वो तो मैंने बस खुला घूमता देखकर अपनी गाड़ी से बांध लिया था, लेकिन बेवजह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। मैंने तो उनसे कहा भी कि मैंने ऐसा सिर्फ घर जल्दी पहुंचने के लिए किया था और उसके बाद मैं उस घोड़े को जाने देता। तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे जाने दीजिए तो उन्होंने कहा कि नहीं तुमने इसे चुराया है, मगर वो ये नहीं बता सके कि मैंने उसे कब और कहां चुराया था।
1: ओहो फिर तो भैया तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई।
2: सच पूछो तो मैंने एक बार सच में गलत काम किया था जो सचमुच में यहां भेजे जाने लायक काम था।
1: अच्छा?
2: लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया। सितम ये कि अब मुझे यहां भेजा गया जबकि मैंने कुछ नहीं किया। मेरे घर वाले वहां के हैं, मेरा नाम मकर है और दूसरे लोग मुझे सीमोविनिच भी कहते हैं।
3: अगर तुम वहां के हो सीमोविनिच, क्या तुम मुझे वो व्लादिमीर के सौदागर अक्सिविनोव के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या वो अब भी जिंदा है?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता सकता हूँ। अक्सिविनोव के घर वाले बहुत अमीर हैं।
3: अच्छा।
2: मगर उनका बाप हमारी ही तरह किसी जेल में कैद है। क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुजरिम है। वैसे आप बताइए बाबा जी, मुझे आप मुजरिम नहीं लगते, यहां कैसे फंस गए?
3: कुछ हो गया था ऐसा जिसकी वजह से इस जेल में तकरीबन 26 साल से हूं।
2: 26 साल? लेकिन क्या जुर्म किया था?
3: लंबी कहानी है, छोड़ो फिर कभी सुन लेना, चलता हूं।
1: अरे रुके बाबा, हमें बताने दीजिए ना इन्हें।
0: अरे यही तो इवान अक्सिविनोव हैं व्लादिमीर के, जिनकी तुम बात कर रहे हो। और ये बिल्कुल मासूम और बेगुनाह है। कत्ल किसी और बदमाश इंसान ने किया था, लेकिन लेकिन उसने चाकू इनके बैग में छिपा दिया। ये बेचारे तो बेवजह फंस गए।
2: क्या आप मेरा मतलब है आप इवान अक्सिविनोव हैं? अजीब बात है, कितनी अजीब। मगर आप इतने बुजुर्ग इतने कमजोर कैसे हो गए बाबा जी?
0: लेकिन एक बात बताओ, जब हमने बताया कि यही इवान अक्सिविनोव हैं,

0: तुम इस बात पर इतना चौंके क्यों?
1: अब वो ये...
0: क्यों आखिर?
2: और ये कि तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया, बताओ?
0: अब तुम पहले इनसे कब मिले थे? सच सच बताओ कि तुमने बाबा इवान अक्सेविनोव को पहले कहां देखा था?
1: इवान अक्सेविनोव, दोस्त, ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहां आकर फिर से मिले।
3: न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि तुम शायद उस सौदागर के असल कातिल को जानते हो। जानते हो क्या?
1: बहुत पुरानी बात है, साफ साफ कुछ याद करना मुश्किल है अब।
0: लेकिन मुझे भी लगता है कि शायद तुम कातिल को जानते हो।
1: साफ जाहिर है कि कातिल वही तो होगा जिसके सामान में चाकू मिला था।
2: वो चाकू किसी और ने उनके बैग में छुपाया था। बाबा जी पैसे वाले इंसान थे, वो भला थोड़े से पैसों के लिए कत्ल क्यों करते किसी का?
1: बिल्कुल, देखो देखो, कोई कातिल कातिल नहीं होता जब तक साबित ना हो जाए। और ये बताओ, कोई इनके सामान में चाकू कैसे छिपा सकता है जबकि इनका बैग इनके सर के नीचे रखा था? कोई इसमें चाकू छुपाता तो ये जाग ना जाते।
3: झूठ
4: झूठ।
1: अरे अरे बाबा जी, आप कहां जा रहे हैं?
0: आप कहां जा रहे हैं?
1: अरे अरे सुनिए, अरे सुनो,
0: अरे कहां चल दिए?
4: रुकिए बाबा,
1: शायद बुरा मान गए।
0: बाबा जी, आप रात भर जागते रहे, कुछ बात कीजिए तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।
3: मैं जानता हूं मकारी वो आदमी है जिसने वो कत्ल किया था।
0: क्या?
3: हाँ, और उस कत्ल की सजा मुझे मिली।
0: ओह,
3: सारी रात मेरी मजलूम बीवी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। उस बेचारी को इस मकर के जुर्म की सजा मिली। तातियाना की हंसी की खूबसूरत आवाज भी मेरे कानों में गूंज रही थी। जब मुझे जेल हुई तो जानते मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। एक ने तो बस चलना शुरू ही किया था और दूसरा मां की गोद में ही था। मैं खूबसूरत हसीन जवान हुआ करता था, कितना जोश से भरपूर और हसमुख नौजवान था। जानते हो जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं पेड़ के नीचे आराम से बैठा गिटार बजा रहा था। सारी दुनिया की परेशानियों से बिल्कुल आजाद। और फिर मेरी जिंदगी इतनी तबाह हो गई।
0: नहीं बाबा, बाबा,
3: कि मैं खुदकुशी करने वाला था।
0: नहीं बाबा, नहीं नहीं, हौसला रखो बाबा।
3: मैं कैसे भूल जाऊं कि ये सब उस जलील का किया था रहा है।
0: नहीं बाबा नहीं, लेकिन लेकिन आप बताइए, अब आप क्या करेंगे?
3: मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए।
0: मुझे भी बताइए बाबा, मुझे भी बताइए, मैं आपके साथ हूं। हम ऐसा भयानक इंतकाम लेंगे कि लोग याद रखेंगे। बोलिए बाबा, बोलिए, आप क्या करना चाहेंगे?
3: मैं खुदा की इबादत करना चाहूंगा। गुस्सा एक शैतानी काम है,
0: लेकिन
3: इंतकाम गुस्से का ही दूसरा रूप है। मुझे इबादत करनी होगी। हाँ, मुझे इबादत करनी होगी। ओ लॉर्ड, लेट पीस बी देयर ऑल ओवर। या खुदा, उसे तुम माफ कर।

पहली बात तो यह है कि मुझे जेल से भागने की कोई ख्वाहिश नहीं है, और दूसरी बात यह कि तुम्हें मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुमने तो मुझे न जाने कितने साल पहले

0: निकल लो अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप चुपचाप चुपचाप निकलो यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, निकलो। अरे
1: खुदा कैसा इम्तिहान है तेरा।
2: भाई आखिर बात क्या है भाई, हमें क्यों ना आया गया है आज यहाँ पर? क्या क्या किया हमने, क्यों क्यों हमें इकट्ठा किया गया? पता नहीं सभी कैदियों को क्या क्या हो क्या रहा है यार, पता नहीं। जेलर साहब ने कहा कि सारे इकट्ठे हो जाइए। क्या बात क्या है, तुमको जानते हो क्या?
3: ध्यान से सुनो सब लोग, खामोश हो जाओ। दो दिन पहले जेल के संतरियों ने सामने के बगीचे में गड्ढा देखा है।
2: क्या?
3: गड्ढा जिसको पेड़ की टहनियों से ढककर छुपाया गया था।
2: अच्छा।
3: तफ्तीश की गई तो पता चला किसी ने जेल से भागने के लिए सुरंग बनाई थी।
2: सुरंग?
3: सुरंग। और सबको मालूम है ना सुरंग बनाने की अपने यहाँ क्या सजा है? हाँ तुम बताओ, बोलो क्या सजा है, बताओ।
2: सजा है मौत।
3: सजा है मौत। पता तो चल जाएगा किसने किया ये सब। इवान नक्सेविनोव, हाँ तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, तुम बताओ ये किसकी हरकत है? हैं
4: जी वो
3: देखो देखो तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम मुजरिम का नाम जानते हो
4: जी।
3: हाँ बोलो ना, कौन है, बताओ बताओ बताओ।
4: नहीं मैं कुछ नहीं।
2: बाबा जी उस आदमी की जिंदगी को क्यों बचा रहे हो जिसने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? अरे उसे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए।
1: देखो मैं गवर्नर को सब बता दूं तो वो उसको मौत दे देगा, लेकिन उससे मेरा क्या फायदा होगा?
2: लेकिन बाबा,
3: तो बाबा मैं सच बताओ ये सुरंग किसने खोदी थी?
4: सर मैं कुछ नहीं कह सकता।
3: अरे बताओ आप जानते हैं, बताओ।
4: देखिए मैं
3: क्या, डरो मत घबराओ नहीं, मुझे बताओ।
4: देखिए
3: यहाँ देखो सारे लोग हैं, मुझे बताओ किसने खोदी थी?
4: देखिए खुदा नहीं चाहता है कि मैं कुछ कहूँ।
3: आप जानते हैं किसने किया ये काम?
4: नहीं जी मैंने
3: क्या,
4: मैं आपके सामने हूँ और इस खामोशी के बदले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे हर सजा मंजूर है।
5: ये बाबा हो सकता है, हम नहीं मानते।
2: बाबा आप इसे आप नाम बताते क्यों नहीं? जब आप जानते हैं कि कौन है असली मुजरिम,
5: सजा मिलनी चाहिए।
6: नहीं बाबा, बाबा
5: नहीं
6: बताइए।
5: बाबा जी आपको बता दो।
3: शांत, मैं जानता हूं बाबा किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूं।
2: बिल्कुल,
3: चलो सब अपने अपने पैरों को में चलो।
2: लेकिन हमारे बाबा बेकसूर हैं।
5: हम फिर कह रहे हैं।
3: मुझे पता है, शांत हो जाओ सब।
2: ठीक जी।
3: बाबा आप अपनी बैरक में जाइए, हैं? ठीक है, हमें पता चल जाएगा कौन है मुझे। आप जाइए।

0: 마지막에
1: 今日はまたあれよ、ゆうさん。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、
0: じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、
1: じゃあ、じゃあ、
0: じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、
1: तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है मकर सिमनोविच, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 26 साल काट दिए यहां जेल में। अब कहां जाऊंगा?

0: मेरे पास अब यहां से कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है।
1: मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ईवान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। घोड़े से पिटना इतना दर्दनाक नहीं होता जितना कि मुझे तुमको देखकर दुख हो रहा है। और अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम और तरस है, तभी तो तुम सिपाहियों को कुछ नहीं बता रहे। समझी के नाम पर मुझे माफ कर दो ईवान।

0: चीख कर सारी दुनिया को बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम बेगुनाह हो। वो कत्ल मैंने किया था, मैंने किया था।
1: अरे अरे क्या,
0: सब लोग सुन लो, इवान ऑक्सेविनोव बेगुनाह है।
1: क्या कह रहे हैं?
0: जिसके लिए इन्हें सजा मिली, वो कत्ल मैंने किया था, मैंने किया था।
1: अरे सुनो सब लोग सुनो भाई, इधर आओ सुनो। अरे जानते हो क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
1: ये बाबा इवान अक्सरुबिनो की बाइज्जत रिहाई का हुक्मनामा है।
3: बहुत बढ़िया।
1: देख लो खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अपने पापा हैं कहाँ? अरे बुलाओ उन्हें तो बुलाओ, खुशखबरी दे उन्हें।
4: अरे भाई वो सुबह से अपनी कोठरी से नहीं निकले हैं।
1: अरे तो चलो ना, हम भी वहीं चलते हैं। चलो, ये खुशखबरी उनको बाबा को देनी बहुत जरूरी है भाई। बाबा जी आप उठ क्यों नहीं रहे? अरे उठिए बाबा,
5: उठिए बाबा जी।
1: सुनिए, देखिए ये हुक्मनामा है आपकी बाइज्जत रिहाई का बाबा।
5: आप आजाद हैं
1: बाबा। उठिए उठिए ना बाबा, उठते क्यों नहीं बाबा आप? उठिए बाबा, उठिए उठिए बाबा।
3: बाबा जी सारे बंधनों से आजाद हो हमारे बाबा जी सारे।

0: बाबला कोचर, गीता वर्मा, शोभना भारद्वाज, आशीष बग्गा, मनोज बिसारिया और दिनेश वर्मा। हिदायत सरफराज अहमद, मुआविन शादाब अली खान।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 12 बजे हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलिडिस के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। भारत के चंद्रयान स्वयं चांद मिशन को अमेरिका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलिडिस के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुब्रुस के सदर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ममलुकत अजय टामटा ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। कुब्रुस के सदर के हमरा वजीर खारजा ट्रांसपोर्ट मवासलात और कामकाज के महकमे के वजीर सीनियर ओहदेदारान और कारोबारियों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी है। ये उनका भारत का पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर बातचीत करेंगे। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तालीम, सकाफत, मोबिलिटी, दिफा और सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, इख्तरा और तहकीक जैसे शोबे शामिल हैं। ये कसीर रुखी इश्तराक समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मामलात पर तबादले ख्याल का मौका फराहम करेगा। बातचीत के बाद मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब मोदी कुब्रुस के सदर के एजाज में जोहराने की मेजबानी करेंगे। शाम में कुब्रुस के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। कुब्रुस के सदर का दौरा गुज़श्ता बरस जून में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कुब्रुस के दौरे के एक साल के अंदर अंदर हो रहा है। दो दहाइयों में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा था। भारत और कुब्रुस की करीबी और तवील मुद्दती शराकतदारी है। आइंदा बरस फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 65 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वज़रा की कौंसिल की एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मीटिंग में रहन सहन और कारोबार करने में आसानी को फ़रोग देने से मुतालिक नज़रियात और बेहतरीन तौर तरीक़ों और विकसित भारत के मुश्तरक ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की खातिर मज़ीद असलाहत पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी वो चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुस के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामनिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकतदार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वज़रा से मुलाकात का मौका मिलेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इस माह की 23 से 26 तारीख तक भारत के दौरे पर रहेंगे और वो कोलकाता, आगरा और जयपुर जाएंगे। क्वाड की मीटिंग इस माह की 26 तारीख को

होगी और इसमें अमरीकी वजीर खारजा रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा मोटेगी तोशिमित्सु के शामिल होने का प्रोग्राम है, जबकि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इसकी सदारत करेंगे। जनाब रूबियो का कोलकाता का दौरा तकरीबन 14 बरस में किसी अमरीकी वजीर खारजा का पहला दौरा होगा। अमरीकी वजीर खारजा हिलेरी क्लिंटन ने 2012 में कोलकाता का दौरा किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिग कैट अलायंस की पहली बैन अल-अक़वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, जो यकुम जून को नई दिल्ली में होने वाली थी, मुलतवी कर दी गई है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में बिग कैट के दायरे में आने वाले जानवरों की 7 अकसाम को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की जाती है, जिनमें शेर, बबर शेर, तेंदुआ, बर्फानी तेंदुआ, चीता, जैगवार और प्यूमा, नीज उनका इको निज़ाम शामिल है। बिग कैट अलायंस की बैन अल-अक़वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग के साथ साथ होने वाली थी। कई अफ्रीकी मुल्कों में बिग कैट्स जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और उन्हें महफूज रखने, माहौलियाती पायदार निज़ाम और हयातियाती तनवों के तहफ़ की समत आलमी कोशिशों में वो अहम साझेदार हैं। चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग अब बाद में किसी तारीख को कराई जाएगी, इसलिए यह फैसला किया गया है कि अफ्रीकी मुल्कों समेत सभी मुतालिका मुल्कों की वसीतर और सरगर्म शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर बिग कैट अलायंस की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस भी बाद में तलब की जाएगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग में हमजा बुरहान मारा गया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का एक सरगना था। इस हमले में CRPF के 40 से ज्यादा एहलकारों की मौत हो गई थी। हमजा बुरहान अल बद्र दहशतगर्द ग्रुप का एक कमांडर था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में उसके मुलव्विस होने की बिना पर अप्रैल 2022 में भारत ने उसे दहशतगर्द करार दिया था। पुलवामा हमले के बाद वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एक टीचर के भेस में रह रहा था। मकामी पुलिस के मुताबिक गोजरा मुजफ्फराबाद में एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कल सुबह अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले का रहने वाला था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया और अल बद्र दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर आबरू रेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए CBI की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आबरू रेजी और कत्ल केस की तहकीकात के लिए एक खसूसी तहकीकती टीम तश्कील दी है। 3 अरकान पर मुश्तमिल SIT की क़यादत मशरक़ी जोन के लिए CBI के जॉइंट डायरेक्टर करेंगे। अदालत ने 3 से 25 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। भारत के चंद्रयान 3 चांद मिशन को अमेरिका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सरफराज किया गया है। अमेरिका में भारतीय सफीर विनय क्वात्रा ने खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो की तरफ से ये अवार्ड कबूल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सफीर मौसूफ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खलाई मिशन 2047 का खाका पेश करते हुए खला के अंदर तक दरियाफ्त इंसान बरदार खलाई जहाज और कमर्शल खलाई शोबे की तेज रफ्तार तरक्की के लिए भारत के नक्शे राह को उजागर किया। चंद्रयान 3 ने चांद के कुतुब जनूबी के नजदीक आसानी के साथ उतरकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया था। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक बाशिंदे को पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह नंबर 44 पर इंटरनेट से मुंसलिक CCTV कैमरा नस्ब करके पाकिस्तान में मुकीम अपने आकाओं के लिए जासूसी करने की पादाश में गिरफ्तार किया है। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख

0: करने के लिए तैयार है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। भारत के चंद्रयान स्वयं चांद मिशन को अमरीका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से 2026 का गुडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस प्रोग्राम में सुनिए चंद मिले जुले फिल्मी दुकानें।

0: लीजिए आप सुनिए, हम आपके हैं कौन फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ। नगमा निगार देव कोहली, मौसीकी राम लक्ष्मण की।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम मिले जब सुनिए, हम साथ साथ हैं फिल्म का नगमा, आवाज़ें हरिहरन कुमार सानू, उदित नारायण, अनुराधा पौड़वाल, कविता कृष्णामूर्ति और अलका याग्निक की हैं। मौसीकी तरतीब दी है राम लक्ष्मण ने।

0: मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। सामिन, ये प्रोग्राम अभी जारी है। आइए पहले सुनते हैं तारीख साज प्रोग्राम। मौजू है शेर शाह सूरी।
1: हिंदुस्तान की तारीख में सलातीन से लेकर मुग़ल दौरे हुकूमत तक कई एक बादशाहों ने अपनी हुकूमतें कायम की, जिनमें से ज़्यादातर ने तारीख के सफहात में अपनी एक अलग शनाख्त दर्ज करवाई है। इनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश, रज़िया सुल्ताना, बलबन, तुगलक, खिलजी, सैयद खिज़र ख़ान, बाबर और अकबर जैसे अजीम बादशाहों का शुमार होता है। लेकिन इन्हीं के दरमियान एक नाम ऐसा है जिसके बग़ैर हिंदुस्तान के आमिराना निज़ाम की तारीख मुकम्मल नहीं होती, और वो नाम है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। वो 1486 ईस्वी में सहसराम, ज़िला रोहतास में पैदा हुए। उनके बाप का नाम मियां हसन खां सूरी था, जो कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। वो बाबर के मामूली जागीरदार थे। उनका शुमार सहसराम के ज़मींदारों में भी होता था, लिहाजा शेर शाह सूरी ने भी कई बरस तक अपने वालिद के साथ ज़मींदारी के कामों में हाथ बटाया। शेर शाह ने अपनी बुनियादी तालीम जौनपुर में एक मदरसे से हासिल की थी और ज़मींदारी के बाद वालिए बिहार की मुलाजमत हासिल कर ली, जिस मुलाजमत में उन्हें जुनूबी बिहार की गवर्नरी के फ़राइज़ अता किए गए। उन्होंने मुग़ल बादशाह बाबर के यहाँ भी नौकरी के फ़राइज़ अंजाम दिए और बाबर के यहाँ कई एक मुलाजमीन के मुकाबले अपने फ़राइज़ की अदायगी की वजह से सरबरावर्दा ठहरे। बाद को मुग़लिया सल्तनत से इख्तलाफ का जज्बा उनके यहाँ परवान चढ़ा और बाबर के बेटे हुमायूं को शिकस्त देकर उन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की। शेर शाह सूरी आला दर्जे की बादशाही सलाहियतों के मालिक थे, जिन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उन्होंने बंगाल, बिहार और कन्नौज पर कब्जा किया। शेरशाह सूरी अपनी इन्हीं शहाना सलाहियतों की बुनियाद पर हिंदुस्तान के नेपोलियन कहलाते थे। बादशाह हिंद बनने के बाद उन्होंने तामीरी कामों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल की, लिहाजा सुनार गांव से दरियाए सिंध तक 1500 कोस लंबी जो जरनैली सड़क गई है, वो शेर शाह सूरी की ही तामीर कराई हुई है। शेर शाह सूरी इस्लामी तारीख का भी एक अजीम रहनुमा, फातह और मुसलह करार पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसने अवामी फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम किए हैं। अपने दौरे हुकूमत में उसने ज़रई इस्लाहात की, डाक का निज़ाम नाफिस किया और इसी नौ के दीगर ऐसे काम किए जिनकी पैरवी उसके बाद के बादशाहों ने भी की। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर 5 साल से भी कुछ कम अरसे तक हुकूमत की। 1540 में कन्नौज की फतह के बाद वो हिंदुस्तान का मुक्तदिर आला बना और 1545 के आगाज़ में उसका इंतकाल हो गया। बिहार के एक पश्तून घराने में पैदा होने वाला वो लड़का जिसे लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसे जो हिंदुस्तान मिला था वो हिस्सों बखरों में बटा हुआ था। शेर शाह सूरी ने बरसरे इक्तदार आते ही इस बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक मुनज़्ज़म ढांचे में तब्दील किया। इसने पूरे मुल्क को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया, जिन्हें सरकार कहा जाता है। फिर इन तमाम सूबों को इज़ला में तकसीम किया, जिन्हें परगना कहा जाता है। फिर इन सब के इंतज़ामात को चलाने के लिए उसने ईमानदार और काबिल अफसरान का एक गरोह तरतीब दिया, जिन्हें सिक्केदार के नाम से याद किया जाता है। इन सिक्केदारों पर नज़र रखने के लिए अदलिया का एक गरोह मुनज़्ज़म किया, जिन्हें मुनसिफुल मुनसिफीन कहते हैं। हर परगना या ज़िला में एक फौजी अफसर, एक खजांची, एक जज और 2 अकाउंटेंट रखे। ये अकाउंटेंट 2 जबानों में हिसाब रखते थे, ایک فارسی، دوسرا ہندی۔ اس نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے پورے ہندوستان میں سڑکوں کا جال بچھا دیا، اور صرف سڑکیں ہی نہیں تعمیر کروائیں بلکہ ان کے کنارے دونوں طرف درخت بھی لگوائے، اور ہر تین کوس کے بعد ایک کنواں اور ایک سرائے بھی تعمیر کروائی۔ اس نے پہلی دفعہ چاندی کے سکے جاری کیے جنہیں روپیہ کہا جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں سب سے پہلے کسٹم ڈیوٹی کا نفاذ کیا، جسے پوری دنیا میں اہم ترین

0: टैक्स समझा जाता है। साथ ही साथ पहला हुक्मरा है जिसने जमीन की पैमाइश का निजाम बनाया, जो निजाम पटवारियों के पास आज तक महफूज है।
1: अभी आप तारीख साज प्रोग्राम सुन रहे थे। मौजू था शेर शाह सूरी, तहरीर जनाब सैयद तालीफ हैदर की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर, और साथ ही साथ प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगला नगमा पत्थर के फूल फिल्म से लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ, मौसीकी राम लक्ष्मण की।

और ये है मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, पुलिस पब्लिक फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और अमित कुमार का गाया हुआ, मौसीकी राम लक्ष्मण की।

0: اس نغمے کے ساتھ ہی ملے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.
1: سرخیوں میں
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं प्राची प्रिया. आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर थे. प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की. कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे. श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे. 5 देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की. संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया. दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया. आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट.
3: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया. एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुँचा जाएगा. यह इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है. साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है. डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई. दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है. ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है. निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब यूएस डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया. 3 अरब डॉलर्स एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से आरबीएल बैंक में आएंगे. दोनों देशों ने गुजरात की वडीनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरिटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है. ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे. विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे. ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी. नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ. इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी. इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट.
4: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है. ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है. वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा. निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है. यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है. हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है. नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है. यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं. प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड साझेदारी का जीवंत सेतु हैं। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए ओसीआई कार्ड की पात्रता चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसली डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसलेट डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफसलेट डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खम्बात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढ़र जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी। इस यात्रा के परिणामों को 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रूपरेखा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए दुर्लभ खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डच सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
5: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
2: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
6: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के

0: साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहां के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीता गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट, जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
1: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
0: 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और UAE के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ बातचीत करेंगे। अमरीका के वज़ीर-ए-खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों मारा गया है। भारत के चंद्रयान 3 चांद मिशन को अमेरिका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से साल 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सरफराज किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुब्रुस के सदर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर ममलकत अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। कुब्रुस के सदर के हमराह वज़ीर खारिजा ट्रांसपोर्ट मुआसलात और कामकाज के महकमे के वजीर सीनियर अहदेदारान और कारोबारियों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ्द भी है। ये उनका भारत का पहला दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर बातचीत करेंगे। इनमें तजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी तालीम सकाफत मोबिलिटी दिफा और सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक इख्तरा और तहकीक जैसे शोबे शामिल हैं। वो कसीर रुखी इश्तराक समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मामलात पर भी नज़रियात का तबादला करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। जरा मोदी कुब्रुस के सदर के एजाज में जोहराने की मेजबानी करेंगे। शाम में कुब्रुस के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। कुब्रुस के सदर का दौरा गुज़िश्ता बरस जून में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कुब्रुस के दौरे के एक साल के अंदर अंदर हो रहा है। दो दहाइयों में किसी भी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा था। भारत और कुब्रुस की करीबी और तवील मुद्दती शराकत दारी है। आइंदा बरस फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 65 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि बैनुल अक्वामी सरहदों की सिक्योरिटी को चैलेंजों से निमटने के एक अलाहिदा काम के बजाय वसी तर इलाकाई जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के एजाज दिए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि कई तरह के चैलेंजों और दुश्वार हालात के बावजूद बीएसएफ ने लगातार मुल्क का नाम रोशन किया है। जनाब अमित शाह ने दरअंदाजी मुनशियात की स्मगलिंग जाली करेंसी के चलन और हथियारों और नशावर अद्वियात की स्मगलिंग समेत उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात को उजागर किया। वज़ीर दाखला ने ज्यादा मरबूत और जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया और रियासती पुलिस मरकजी मुसल्लह फोर्सेस राग रुसा एजेंसियां और मकामी इंतजामिया के माबैन और ज्यादा तालमेल की जरूरत को भी उजागर किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी वो चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुस के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामा निगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्हें भारत को एक अजीम शराकत दार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वज़रा से मुलाकात का मौका मिलेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इस माह की 23 से 26 तारीख तक भारत के दौरे पर रहेंगे और वो कोलकाता आगरा और जयपुर जाएंगे। क्वाड की मीटिंग इस माह की 26 तारीख को होगी और इसमें अमरीकी वजीर खारजा रूबियो ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनियोंग जापान की वजीर खारजा मोतेगी तोशीमित्सो के शामिल होने का प्रोग्राम है जबकि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इसकी सदारत करेंगे। जनाब रूबियो को कोलकाता का दौरा तकरीबन 14 बरस में किसी अमरीकी वजीर खारजा का पहला दौरा होगा। अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने 2012 में कोलकाता का दौरा किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग में हमजा बुरहान मारा गया जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का एक सरगना था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा अहलकारों की मौत हो गई थी।
हमजा बुरहान अल बदर दहशतगर्द ग्रुप का एक कमांडर था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में उसके

0: लव्विस होने की बिना पर अप्रैल 2022 में भारत ने उसे दहशतगर्द करार दिया था। पुलवामा हमले के बाद से वह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एक टीचर के भेष में रह रहा था। मकामी पुलिस के मुताबिक गोजरा मुजफ्फरबाद में एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कल सुबह अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया और अल बदर दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। भारत के चंद्रयान 3 चांद मिशन को अमेरिका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सरफराज किया गया है। अमेरिका में भारतीय सफीर विनोद क्वात्रा ने खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो की तरफ से यह अवार्ड कबूल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सफीर मौसूफ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खलाई मिशन 2047 का खाका पेश करते हुए खला के अंदर तक दरियाफ्त इंसान बरदार खलाई जहाज और कमर्शियल खलाई शोबे की तेज रफ्तार तरक्की के लिए भारत के नक्शे राह को उजागर किया। चंद्रयान 3 ने चांद के कुतुबे जुनूबी के नज़दीक आसानी के साथ उतरकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया था क्योंकि इस मुकाम पर पहुंचने वाला वो पहला खलाई जहाज था। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक बाशिंदे को पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह 44 पर इंटरनेट से मुंसलिक सीसीटीवी कैमरा नस्ब करके पाकिस्तान में मुकीम अपने आकाओं के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया है। पठानकोट के SSP दलजीत सिंह ढिल्लो ने आकाशवाणी न्यूज़ को बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बलजीत सिंह ने मुबैना तौर पर फौज और नीम फौजी दस्तों की नकल हरकत पर नज़र रखने के लिए कौमी शाहराह 44 पर एक पुल के नज़दीक CCTV कैमरा नस्ब किया था। इसकी लाइव फीड पाकिस्तान में मुकीम ISI के कारिंदों से शेयर की जा रही थी। बिग कैट अलायंस की पहली बैन अवी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो 1 जून को नई दिल्ली में होने वाली थी मुलतवी कर दी गई है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में बिग कैट के दायरे में आने वाली जानवरों की 7 अकसाम को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की जाती है जिनमें शेर बबर शेर तेंदुआ बर्फानी तेंदुआ चीता जगुआर और पूमा नीज उनका इको निज़ाम शामिल है। बिग कैट अलायंस की बैन अवी सरबराह कॉन्फ्रेंस 4थी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग के साथ साथ होने वाली थी। कई अफ्रीकी मुल्कों में बिग कैट जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और वो उन्हें महफूज रखने माहौलियाती पायदार निज़ाम और हयातियाती तनवु के तहफ्फुज की समत आलमी कोशिशों में वो अहम साझेदार हैं। 4थी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग अब बाद में किसी तारीख को कराई जाएगी, इसलिए यह फैसला किया गया है कि अफ्रीकी मुल्कों समेत सभी मुतालका मुल्कों की वसी तर और सरगर्म शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर बिग कैट अलायंस की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस बाद में तलब की जाएगी। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक वजारत के मुताबिक इसमें शिरकत करने वाले मुल्कों और मुतालिका इदारों के साथ सलाह मशवरे के बाद सरबराह कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए तामीर किए गए वैष्णवी भवन को अकीदतमंदों को वक्फ किया। इसका मकसद पवित्र गुफा में वाक़ मंदिर में यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाना और उनके क़याम की सहूलियात में इजाफा करना है। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ह अफराद के हाथों मारा गया है। भारत के चंद्रयान 3 चांद मिशन को अमेरिका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से साल 2026 के गोदार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सरफराज किया गया है। और IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमेरिका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। भारत के चंद्रयान 3 चांद मिशन को अमेरिका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक इदारे की तरफ से साल 2026 के लिए गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड से सरफराज किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अलाक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पसीर होती हैं। सहपहर 3 आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।

आशा जी की आवाज़ में इस गीत को सुनने के बाद तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया कि आज हम कौन सी फिल्म लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं सही जवाब के साथ। तो हम भी आपको बता दें कि आज हम 1974 में बनी एक भारतीय हिंदी फिल्म जिसे सावन कुमार ने निर्मित भी किया, निर्देशित भी किया और लिखा भी था। फिल्म में नजर आए थे अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु और विनोद मेहरा, इन्होंने अभिनय किया था। और साथ ही साथ जो गीत अभी आपने सुना ना, आओ यारो गाओ, इसमें नजर आई थी रेखा। जी हाँ, हम सबकी खूबसूरत सी अभिनेत्री रेखा, जो कि एक विशेष भूमिका उन्होंने इस फिल्म में निभाई थी। और फिल्म का संगीत था उषा खन्ना, इन्होंने तैयार किया था। नाम बताने की ज़रूरत है, फिर भी बता देती हूँ, ये फिल्म है 1974 की फिल्म हवस। फिल्म और संगीत विशेषक राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार जो गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, उन्होंने फिल्म के लिए अपनी फीस कम करने से इनकार कर दिया था। खैर, ये जो किस्सा है जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी जब वो गीत मैं आपको सुनवाऊँगी। फिलहाल आपको बता दूँ कि ये मर्क्यूरी प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म बनी थी और ये एक रोमांस थ्रिलर और एक ड्रामा फिल्म थी। इसकी जो अवधि थी वो 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म थी। और अभी आपने जो गीत सुना आओ यारों गाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गीत में नज़र आई थी रेखा। दरअसल ये गाना जो था ये मूल रूप से फरियाल को मुख्य नर्तकी के रूप में लेने की एक योजना थी, लेकिन जब रेखा जी ने इस गाने को सुना तो उनको इसकी धुन इतनी ज़्यादा पसंद आ गई तो उन्होंने इसमें भाग लेने की अपनी इच्छा जताई। गाने में रेखा जी ने जो एक ड्रेस पहनी है, जब आप इस गीत को देखेंगे, फिल्म में देखेंगे या वैसे भी कभी आप देखें, तो जो उन्होंने ड्रेस जो पोशाक पहनी है उसको उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था। और अब इस गीत के बाद मैं वो गीत सुनवाने जा रही हूँ जिस फिल्म की जान भी कह सकते हैं, और वो फिल्म कैसे बना, वो गीत कैसे बना था ये भी मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल तो आप रफ़ी साहब की आवाज़ में ये दिल को छूने वाला गीत सुनिए।

ये गीत, थोड़ा सा इस गीत को मैं रोक रही हूँ और आपको इस गीत से जुड़ी एक दिलचस्प बात बतानी थी। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत है ये, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। और आज भी जो दर्द है इस गीत में, वो आज भी महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि गीतकार सावन कुमार टाक और संगीत की जो रिकॉर्डिंग थी उसके दौरान कुछ उनमें मतभेद हो गया था और उसी भावुक माहौल में ये गीत की पंक्तियाँ जन्मी थीं। और शायद यही वजह है कि गीत में दर्द इतना सच्चा महसूस होता है। जब इनके बीच में कुछ अनबन हुई थी और जब उनके घर से निकले तो उनके जुबान पर यही लाइन आई कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। शायद हमने और आपने भी कई बार इस तरीके से इस लाइन को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूर हमने इस बात को लाइन को यूज़ किया होगा जब हमारी किसी से बहस हो जाती है यारी दोस्ती में, घर परिवार में, कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तो जब ये गीत लिखा गया तो शायद सोचा भी नहीं गया था कि ये गीत इतना ज़्यादा कमाल कर जाएगा, लोगों के दिल में इतने सालों तक इसकी याद रह जाएगी। आपको बता देते हैं कि इस फिल्म में नज़र आए थे अनिल धवन, जो कि अनिल कुमार के किरदार में नज़र आए थे, नीतू सिंह थी जो नीतू के ही किरदार में थी, रेखा हमने आपको बताया कि एक विशेष भूमिका में थी, प्रदीप कुमार शैलेंद्र सिंह के रूप में दिखाई दिए थे, बिंदु कामिनी के रूप में दिखी थी, इनके साथ ही विनोद मेहरा थे जो कि डॉक्टर बाली के किरदार में थे, विद्या सिन्हा विद्या कुमार के रूप में नज़र आई थी, इंस्पेक्टर महमूद के रूप में महमूद नज़र आए थे और भी कई कलाकार थे। लेकिन इन सब कलाकारों ने अपनी कलाकारी का जो इस फिल्म में ये अपना कारनामा दिखाया वो लोगों को आज तक याद है। तो चलिए इसी गीत को हम फिर से आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि बीच में हमने इसको रोक कर ये बात आपको बताई थी। और हाँ, आपको भी अगर इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बात याद है, कुछ खास जानकारी भी आपके पास है तो आप बता दीजिए, क्योंकि वैसे तो आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें हमने जब देखा था और

बरसों बाद जब हम उस फिल्म से कोई गीत जुड़ा हुआ या फिर उस फिल्म के कोई किस्से सुनते हैं तो वो यादें अपने आप ही जहन में चली आती हैं। तो बस उन यादों को भी आप हमेशा की तरह अपने संदेशों में हम तक पहुंचा सकते हैं, और इसके बाद सिलसिला आपके जो संदेश हैं उनको पढ़ने का भी हम करेंगे। बहुत सारी जानकारी अभी इस गीत, इस फिल्म से जुड़ी हुई भी हमारे पास है। तो चलिए इस फिल्म का जो फेवरेट गीत है उसको आप इंजॉय कीजिए।

फिल्म की कहानी अनिल कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक अपराधी गिरोह का सरगना एक अमीर परिवार में नौकरी करने के लिए भेजता है। मकसद होता है उस परिवार की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर संपत्ति हत्याना। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उस परिवार की दूसरी पत्नी कामिनी खुद अनिल के प्रति आकर्षित हो जाती है। इसके बाद प्रेम, लालच, छल और रहस्य का एक ऐसा जाल बुनता है कि दर्शक अंत तक बंधे रहते हैं। इस फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आप सुन ही रहे हैं, दो गीत मैंने आपको सुनवा ही दिए हैं और आपको मैंने बताया कि तेरी गलियों में ना कर रखेंगे कदम ये गीत कैसे बना था। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत अमर हो गया और उस वक्त भी इस गीत ने खूब लोकप्रियता हासिल की थी और आज भी ये गीत लोगों के पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने इस जो गीत थे इस फिल्म के उनको गाया था और रफ़ी साहब को तो तेरी गलियों में

गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का फिल्म वर्ल्ड मैगजीन पुरस्कार भी मिला था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो कि बिंदु थी वो, और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका यानी कि आशा जी को हवस, ये हवस क्या है ये जो गाना इन्होंने गाया था, कुछ देर में अगर होगा तो गीत मैं आपको सुनवाऊंगी, इनके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के का नॉमिनेशन इन्हें दोनों को दिया गया था। आपके ढेर सारे संदेश आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उन संदेशों को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। साथ ही साथ प्रदीप द्विवेदी जी देवरिया उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि वेटिंग फॉर योर अवर फेवरेट प्रोग्राम, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और प्रोग्राम अब अंतिम चरण में भी पहुंच गया है। गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाड़ा से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूल गुरनाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डेनी, मनीषा जी लिख रहे हैं कि मनीष पवार जी लिख रहे हैं कि आज की फिल्म हवस है और इस फिल्म का जो बजट था वो काफ़ी कम था, इसीलिए इसे उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में की श्रेणी में रखा जा रहा था। जब निर्देशक सावन कुमार टाक मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के पास गाने लिखवाने गए थे तो उन्होंने कम बजट और फिल्म के नाम हवस जो रखा गया था इसके कारण गीत लिखने से इनकार किया कर दिया था। इसके बाद सावन कुमार ने खुद पेन उठाया और फिल्म के सारे गाने लिखे जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे। वाह, क्या जानकारी आपने लिखे भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। नितेश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद पराल, पुना देवानगन, कृष्णा जी हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर, प्रमिला जी ने भी बहुत बेहतरीन जानकारी लिखी हुई है, इस उन्होंने इस फिल्म के बारे में जो अभी तक हमने आपको बताया वो सब जानकारी लिखी है। और रियली आप लोग इस जो भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इकट्ठी करते हैं, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करते हैं, शुक्रिया आपका। अगला जो संदेश है वो हमारे पास फालसिका पंजाब खेड़ा से खेड़ा परिवार, भूषण विष्णु और बाकी के सदस्य जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। निगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी हैं। सुदर्शन मुख्य नेता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। और चौधरी बास से राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी, विवेक जी हैं। वटिंगखेड़ा पंजाब से मिंचू टॉमस, लवली, पिंकी, आरती हमारे साथ हैं। समडी नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव जी हैं। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवानगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल जी हमारे साथ हैं। जीवी राणा नेहरू बैर दिल्ली से हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम जी हमारे साथ हैं। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार डेनी जी का एक और संदेश आया है। गुरमीत सिंह मीठा साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू जब्बू जी हैं। अगला संदेश जो पहुंचा है हमारे पास वो हीरामणि वर्मा जी का दतरंगी भाटापारा से है। ऊपरकोट मोहल्ला चौकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्धपासी निगत, परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान और जान परिवार के सभी सदस्य हैं। अगला ये संदेश हमारे पास मुकेश कासलीकर जी का पहुंचा है जो कि तहसील बरून अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कवि रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव जी हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिल्लू जी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, वो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित जी हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर जी के साथ जालंधर पंजाब से जुड़े हुए हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल, नारायण जी हमारे साथ हैं। और ये जो अगला संदेश है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का आया हुआ है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हैं। रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंजना जी हमारे साथ। ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं। चिरमिरी कुलार से कालरी से इंद्रवान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम, सहोदर, नारायण, दिनेश और कालिंद्री जी हैं। और भी कुछ संदेश हैं उनको हम शामिल करेंगे। फिलहाल हम आपको आशा जी की आवाज़ में ही इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत सुनवा रहे हैं।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया अपार डिंगिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ केंट से दिग्दर्शन और कविता जी को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। संदीप मक्कर जी ज्योति जी के साथ एक और संदेश में हमारे साथ शामिल हैं और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी का। सुदर्शन मुख्य नेता जी एक बार फिर संदेश के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन जी कह रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति शानदार है, बधाई स्वीकार करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ हैं। प्रिंस वर्मा प्रकाश छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं।

उस दौर में फिल्म का नाम हवस काफी बोल्ड माना गया था। नाम सुनकर दर्शकों में जिज्ञासा पैदा हुई, लेकिन फिल्म देखने पर पता चला कि इसकी कहानी सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि एक मजबूत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। निर्देशक सावन कुमार टाक ने इस फिल्म से ये साबित किया कि वे सिर्फ रोमांटिक कहानियां ही नहीं बल्कि रहस्य और मनोवैज्ञानिक तनाव से भरी फिल्में भी प्रभावशाली ढंग से बना सकते हैं।

0: तो दोस्तों हवस सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि 70 के दशक के सिनेमा का वो आईना है जिसमें संगीत की मिठास, रिश्तों की उलझन और रहस्य का गहरा रंग एक साथ दिखाई देता है। तो अब वक्त हो गया है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है, फिर एक नई फिल्म के साथ आपसे मुलाकात होगी सोमवार यानी कि 25 तारीख को। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: उर्दू च समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: एजेंसियों और मकामी इंतजामिया के माबेन और ज्यादा तालमेल की जरूरत भी उजागर की। इंतखाबी कमीशन ने आज 10 रियासतों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। साबिक वजीर आजम एच डी देवगौड़ा, मरकजी वजरा जॉर्ज क्यूरिन और रवनीत सिंह वो अरकान हैं जिनकी मुद्दत कार अगले महीने खत्म हो रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट खाली हो जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में 1 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 18 जून को पोलिंग होगी। उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। कमीशन ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा के जिमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया है। ये सीटें महाराष्ट्र की नायब वजीर आला सुनेत्रा अजीत पवार और AIADMK के रुकन पार्लियामेंट CV शनमुगम के हालिया रियासती असेंबली इंतखाबात में मुंतखब होने के बाद खाली हो गई हैं। इन सीटों के लिए भी 18 जून को ही इंतखाबात कराए जाएंगे। केरलम में 7 मरतबा के कांग्रेस MLA तिरुवंचूर राधा कृष्णन को एक तारीखी सहरुखी मुकाबले में 16वीं केरलम कानून साज असेंबली का स्पीकर चुन लिया गया है। पहली बार ऐसा है कि इस चुनाव में बरसर इकतदार UDF बाएं बाजू और BJP की क्यादत वाले NDA के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बरसर इकतदार UDF उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 140 रुकनी असेंबली में 101 वोटों से स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। अपोजिशन LDF उम्मीदवार AC महीउद्दीन ने 65 वोट जबकि BJP उम्मीदवार BB गोपा गोपाल ने 3 वोट हासिल किए। ऐसा पहली बार है कि BJP ने केरलम में स्पीकर का चुनाव लड़ा हो। नायब स्पीकर के लिए इंतखाब 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज UAPA केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। इस केस का ताल्लुक 2020 के शिमाल मशरकी दिल्ली के फसादात के पीछे मुबैना एक बड़ी साजिश से है। जस्टिस प्रतिभा M. सिंह और जस्टिस मधु जैन की एक डिवीजन बेंच ने उमर खालिद की रिहाई के लिए सख्त शराइत के साथ 1 से 3 जून तक की इजाजत दी है। उमर खालिद ने 15 दिन की उबूरी जमानत चाही थी ताकि वो अपने मरहूम चचा के चहलुम की रसूम में शिरकत कर सकें और अपनी वालिदा के ऑपरेशन से पहले और बाद में उनकी निगहदाश्त कर सके। अदालत ने हिदायत दी कि खालिद को सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना होगा और तफ्तीशी अफसर के साथ लगातार रबते में रहना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सरबरा लालू प्रसाद यादव, उनके कुनबे के अफराद और दीगर के खिलाफ इल्जामात तय करने के बारे में अपना फैसला 9 जून तक मुलतवी कर दिया है। इस केस का ताल्लुक IRCTC होटल घोटाले में मुबैना तौर पर काले धन को जायज बनाने से है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्म लहर चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अलाक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ 2 तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को 2 गुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नज़र कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Madhu Jain allowed his release from June the 1st to June the 3rd on strict conditions. The High Court said it was taking an empathetic view of the matter and granted interim bail for 3 days to allow Khalid to spend time with his mother. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on the 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said, in keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on the 1st of July last year. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana and Andhra Pradesh during the next 2 days. IMD has forecast hot and humid weather over Gangetic, West Bengal and Odisha till tomorrow. The weather agency also forecast heavy rainfall in parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and south interior Karnataka till tomorrow. The weather in Himachal Pradesh has changed its course today and intermittent rainfall has been continuing at several places across the state since morning. This change in weather has brought some relief to people from the intense heat.
1: Light rainfall has been recorded in various districts including the state capital Shimla as well as Chamba, Kangra, Kullu, Hamirpur and Lahol Spiti, leading to a slight drop in temperatures across the state. According to the Meteorological Centre Shimla, this change in weather is due to the activation of a western disturbance. The centre has issued an orange alert for heavy rain accompanied by thunderstorms and strong winds at multiple locations in 7 districts, Kullu, Shimla, Chamba, Una, Hamirpur, Mandi and Bilaspur over the next 48 hours. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Line Kjærfelt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. With Chaliha's exit, India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent, 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
3: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
3: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
4: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक

0: चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।

0: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 270,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठे को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है।

0: शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
1: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ?
0: एडमिशन कराने,
1: खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वालों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अक्सर जब हम कोई पुरानी सुपरहिट फिल्म देखते हैं तो हमारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ हीरो पर टिकी रहती हैं, लेकिन आप ज़रा सोचो, क्या वो नायक, वो हीरो बिना किसी वफादार दोस्त के, बिना किसी मजबूत हम सफ़र के अपनी मंजिल तक पहुँच पाता है? यकीनन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक कोई साथी साथ ना हो तब तक वो हीरो भी हीरो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आज का जो हमारा ये सफ़रनामा है, वो जो हमारा कार्यक्रम है, बॉलीवुड के एक ऐसे ही सदाबहार सारथी के नाम, जिन्होंने पर्दे पर दोस्ती की नई परिभाषा लिखी, एक ऐसा कलाकार जिसने राजेश खन्ना साहब की जीप में बैठ कर मुस्कराते हुए माउथ ऑर्गन बजाया तो पूरा देश झूम उठा उनकी उस अदा पर। और जब अपनी मातृभाषा के सिनेमा में कदम रखा तो भोजपुरी सिनेमा का पहला महानायक बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी यारों के यार सुजीत कुमार की। तो दिल थाम कर बैठिए और शुरू करते हैं यादों का

0: से कह दो।
1: जी दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना, ये फिल्म लाल बंगला से था गीत, और ये थी सुजीत कुमार की पहली बॉलीवुड फिल्म। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। वैसे सुजीत कुमार जो कि ताल्लुक़ रखते थे उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के एक काफ़ी संपन्न, काफ़ी अच्छे परिवार से, और उनके पापा चाहते थे, उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े होकर एक वकील बने, और यही वजह थी कि उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उनका जो दिमाग था, जो दिल था उनका, वो थिएटर और नाटक की तरफ जाने लगा, और वो कॉलेज में पढ़ाई कम किया करते थे, नाटकों में हिस्सा ज़्यादा लिया करते थे। और 60 के दशक की शुरुआत में मुंबई में एक बहुत बड़ा जो नाटक था वो हुआ, जिसमें सुजीत कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और वो नाटक इतना शानदार रहा कि उस नाटक के बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला दोस्तों। लेकिन उस ज़माने में इस पुरस्कार जो उनको मिला था, वो उस इनाम के तौर पर उन्हें लंदन जाकर एक्टिंग सीखने की स्कॉलरशिप मिली थी, और उसके लिए उन्हें एक एयर टिकट भी मिला था। अब सुजीत कुमार जो कि नाटकों में एक्टिंग कर बहुत खुश थे, और अब उन्हें वो एक्टिंग सीखने का मौका मिला, वो भी लंदन से, तो वो बहुत खुश थे जाने के लिए, और जाने की उन्होंने पूरी तैयारी की। लेकिन लंदन रवाना होने से ठीक पहले उनकी मुलाकात उस दौर के मशहूर निर्देशक फणी मजूमदार साहब से हुई। वो उस नाटक को उन्होंने देखा था, और जब उन्होंने उस नाटक में सुजीत कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस को देखा, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई, लंदन जाकर तुम क्या करोगे, तुम तो सीधा फिल्मों में काम करो, क्योंकि तुम्हें सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर तो जो एक्टिंग है वो कूट कूट कर भरी हुई है। और बस यहीं से मौका मिला सुजीत कुमार को फिल्मों में काम करने का, उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई यहीं से। और बतौर एक लीड हीरो उन्होंने फणी मजूमदार की फ़िल्म आकाशदीप में काम किया, और उसके साथ ही साथ उन्हें एक और फिल्म मिली, वो थी लाल बंगला, जिसका गीत अभी आपने सुना था। और जब उनकी फ़िल्म आकाशदीप आई, तो शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो के रूप में काम किया था, और जो उनकी एक्टिंग थी उसको हर किसी ने सराहा, और उन्होंने जो फिल्म में एक्टिंग की हर किसी ने उसको सराहा था। लेकिन फिल्म में हीरो के तौर पर काम करते करते उन्हें ये ऐसा लगा कि भाई, लीड हीरो या लीड रोल के भरोसे तो बैठना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे मजबूत किरदार ढूंढने चाहिए जिसमें हीरो से भी ज़्यादा दम हो। जी हाँ दोस्तों, आगे का सफ़र, आगे की बातें हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं आकाशदीप फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, कोर्ट रूम को छोड़कर सीधे सिनेमा में सीधे कैमरा के सामने आने वाले सुजीत कुमार, जिनका सफ़र शुरू हुआ आकाशदीप, लाल बंगला, एक साल पहले जैसी सस्पेंस फिल्मों से, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत में वो चमक तब तक भी नहीं आई थी जब तक 1969 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना नहीं आई थी। जी हाँ दोस्तों, आराधना फिल्म आई और इसके बाद तो जैसे वो सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के ऑन स्क्रीन सबसे पक्के वाले यार बन गए। और सुजीत कुमार की जो पहचान थी वो बॉलीवुड में एक ऐसे सदाबहार को एक्टर की बन गई जिनके बिना 70 और 80 के दशक की कोई भी बड़ी फिल्म अधूरी थी। और अगर बात करें राजेश खन्ना साहब के साथ की, तो उनके बिना तो उनकी दोस्ती बेकार थी। और सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। और यही वजह थी कि दोनों रोज़ाना सुबह एक साथ जिम भी जाया करते थे।

जी दोस्तों, राजेश खन्ना साहब के साथ सुजीत कुमार की दोस्ती ऐसी चली, चाहे वो फिल्म हाथी मेरे साथी हो, उसका वफादार दोस्त हो, अमर प्रेम, रोटी, महबूबा या फिर अवतार और आखिर क्यों जैसी फिल्में जिसमें सुजीत कुमार ने हर किरदार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, राजेश खन्ना साहब के होते हुए। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के साथ स्क्रीन प्रेजेंस देना और उसमें अपनी पहचान को दिखाना, एहसास कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा रामन सागर की जासूसी फिल्म आंखें में उनका विलन वाला किरदार तो लोग आज भी नहीं भूले हैं। लेकिन ये थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात। लेकिन दोस्तों, सुजीत कुमार की कहानी सिर्फ हिंदी सिनेमा तक नहीं थी, और अगर हम उन्हें कहें कि वो भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन थे, जी हाँ दोस्तों, या कहें कि असली सुपरस्टार कहे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भोजपुरी सिनेमा जब अपने शुरुआती दौर में था, तब सुजीत कुमार ने वहाँ पर विदेशिया, लोहा सिंह, दंगल, पान खाएं सैया हमार जैसी खूबसूरत फिल्मों में मेन अहम किरदार निभाया, और सन 1977 में आई उनकी फिल्म दंगल ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस वक्त में, और अपनी मातृभाषा को जो सम्मान, जो पहचान उन्होंने दिलवाई, इसके लिए आज भी वहाँ के लोग उनको मानते हैं।

0: चुपके चुपके एक दूसरे से हम जो कहेंगे हंसते हंसाते तू भी सुन जा।
1: जी दोस्तों, 90 का दशक आते आते सुजीत कुमार जी ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण यानी कि प्रोडक्शन में भी कदम रखा और दरार, चैंपियन जैसी बड़ी और कामयाब फिल्मों का निर्माण किया। हम यही कहेंगे कि वो एक बेहतरीन अभिनेता तो थे ही, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक बेहद ही नेक दिल, मददगार और यारों के यार के रूप में जाना जाता है। और हमारे जो दोस्त हैं वो भी हम तक बहुत से संदेश पहुंचा चुके हैं, उनके संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से गगन थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका वाणी थांदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ जुड़े हैं। हीरामणि वर्मा, दतरंगी, भट्टापारा से हमारे साथ जुड़े हैं। वड़िंगखेड़ा, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम नागरकोरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहार, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान, उत्तम जामदाड़े हमारे साथ जुड़े हिंगोली महाराष्ट्र से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा ने। चिरमिरी कोरासिया, कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालिंद्री लहरे के साथ। और ये जो अगला संदेश है उसको पहुंचाया है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक जी ने पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फारूक अली खान जी और इन ये संदेश उन्होंने भेजा कस्बा गन्नौर यूपी से। इनके साथ हैं फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा के साथ। ज्योति मक्कर, मन्नत, भारत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल, सोपान, ताड़े, नारायण इंगले जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोवर्धन कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, दिल्ली से जुड़े हैं तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशोर धान खुराना के साथ। ऊपरकोट, मोहल्ला चौकुटी, बुलंदशहर से जुड़े हैं मोहम्मद सईद अब्बासी जी और उनके साथ हैं निगत, प्रवीण अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, पाडिंगिया हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। सुदर्शन मुखी, अनिता जी और सिमरन मुखी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। और ये अगला जो संदेश है इसको हम तक पहुंचाया है एक बार फिर से तुलसी मस्कीन जी ने। स्वर्ण सिंह गिल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं और उषा मोहन जी हमारे साथ जुड़ी हैं पीटीआई संसद मार्ग से। तो दोस्तों, ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए सभी हम तक जुड़े। हमारे इस कार्यक्रम को आपने सुना, सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने बात की सुजीत कुमार जी के बारे में। सुजीत कुमार जो कि 5 फरवरी 2010 को कैंसर जैसी लंबी बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी 150 से ज़्यादा हिंदी और दर्जनों से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम के ज़रिए वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप मेरे सपनों की रानी वाला गाना देखें या कोई भी उनकी फिल्म देखें और उस मुस्कुराते हुए चेहरे यानी सुजीत कुमार साहब को देखें तो सलाम ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम समाप्ति के, लेकिन जाने से पहले यही कहूँगी कि भाई आप यूं ही हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। और आपके लिए छोड़े जाती हूँ उन्हीं की एक खूबसूरत सी फिल्म से, खूबसूरत सा गीत लता जी और किशोर की आवाज़ में। तो अनुमति, नमस्कार।
2: अच्छा, तो हम चलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को दोगुना करना है। अमेरिका के वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों मारा गया है। भारत के चंद्रयान सोयम चांद मिशन को अमेरिका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से 2026 का गोदार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स एवार्ड दिया गया है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में मसनूई जहानत AI से तैयार करदा दुनिया की पहली फीचर फिल्म हेलग्रिन दिखाई गई। अब खबरें तफसील से। भारत और कुब्रुस ने आज नई दिल्ली में मुख्तलिफ मैदानों में एक दूसरे के साथ बहुत से मुआहदे किए हैं, जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक

0: से ज्यादा अहलकारों की मौत हो गई थी। हमजा बुरहान अल बदर दहशतगर्द ग्रुप का एक कमांडर था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में उसके मुलव्विस होने की बिना पर अप्रैल 2022 में भारत ने उसे दहशतगर्द करार दिया था। पुलवामा हमले के बाद से वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एक टीचर के भेष में रह रहा था। मकामी पुलिस के मुताबिक गोजरा मुजफ्फरबाद में एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को उस वक्त निशाना बनाया गया जब कल सुबह वो अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया और अलबदर दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। भारत के चंद्रयान 3 चांद मिशन को अमेरिका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सरफराज किया गया है। अमेरिका में भारतीय सफीर विनय क्वात्रा ने खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो की जानिब से ये अवार्ड कबूल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सफीर मौसूफ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खलाई मिशन 2047 का खाका पेश करते हुए खला के अंदर तक दरियाफ्त इंसान बरदार खलाई जहाज और कमर्शियल खलाई शोबे की तेज रफ्तार तरक्की के लिए भारत के नक्शे राह को उजागर किया। खला के महकमे के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि भारत के चंद्रयान 3 चांद मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की जानिब से 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से नवाजा गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन मुसलसल मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि चांद के जनूबी कुतुब के करीब तारीखी सॉफ्ट लैंडिंग और मुस्तकबिल की कमरी तहकीक में अहम किरदार अदा करने पर इस मिशन को खलाई साइंस के शोबे का आला तरीन एजाज हासिल हुआ है। कांस फिल्म फेस्टिवल में कल मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत एआई से तैयार करदा एक नई फिल्म का प्रीमियर पेश किया गया। यह फिल्म जिसका नाम हेलग्रिंड है, इसका दौरानिया 95 मिनट का है। 15 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने सिर्फ 14 दिन में इसे तैयार किया है और इस पर तकरीबन $5 लाख खर्च हुए हैं। सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप हेक्सफील्ड एआई ने अपनी साइंस फिक्शन फिल्म को दुनिया की पहली एआई फीचर फिल्म के तौर पर तैयार किया है और बुध के रोज इसका ट्रेलर भी जारी कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया था। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडलाइडस के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को दोगुना करना है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ले अफराद के हाथों मारा गया है। भारत के चंद्रयान स्वयं चांद मिशन को अमरीका के एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इदारे की तरफ से गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स का अवार्ड दिया गया है और कांस फिल्म फेस्टिवल में मसनूई जहानत एआई से तैयार करदा दुनिया की पहली फीचर फिल्म हेलग्रिन दिखाई गई। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद, तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश किशोर कुमार और साथियों को सुनिए। फिल्म है अपना देश, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार आर डी बर्मन।

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: ये उसका मुखड़ा है
1: जी। और हिंदी फिल्म आपकी जिसमें आपने पहली बार
0: पहली पिक्चर खबर,
1: गाना आपका
0: उसमें था लौट गई पापन अंधियारी
1: जी, गुनगुनाइए उसको।

0: लौट गई पापन दियारी, शीतल चंद्र का आई है।
1: वाह बहुत खूब। आपको वैसे किसने, किस म्यूजिक डायरेक्टर ने इंट्रोड्यूस किया था फिल्मों में?
0: मास्टर गुलाम हैदर जी ने।
1: अच्छा, उसके बाद भी आपने उनके साथ बहुत सी फिल्मों में,
0: चार पांच छह पिक्चर लाहौर में बनाई
1: जी,
0: फिर चार पांच पिक्चर उनके साथ में बॉम्बे में भी बनी उनके साथ
1: जी।
0: हाँ जी।
1: वैसे आपका ताल्लुक तो लाहौर से है?
0: हाँ जी, मैं लाहौर की।
1: उसके बाद फिर आप दिल्ली आ गई थी और दिल्ली रेडियो स्टेशन से भी आप नगमे
0: प्रोडक्शन? मैं इधर से सीधी बॉम्बे चली गई थी
1: जी।
0: हाँ जी, बॉम्बे में 43 से बॉम्बे में हूँ।
1: अच्छा, नहीं दिल्ली में भी तो आप रही हैं, आपका कयाम रहा है, और यहाँ आपने रेडियो स्टेशन से गाने ब्रॉडकास्ट किए?
0: पहले पहले किए ना, जब शुरू में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ था तो उस जमाने में 37 में मैंने किए थे।
1: अच्छा, आपने बहुत से गुलकारों के साथ गाया है, अब भी आप गा रही?

0: तो कुछ ऐसे गुलूकार बताइए कि जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो या जिनको आपने पसंद किया हो, पुराने और नए।
1: मुझे सभी आर्टिस्ट पसंद हैं
0: जी
1: जो गाते हैं, अच्छा गाते हैं, इसलिए मैं बुरा तो मुझे कोई भी नहीं लगता, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि कौन ज्यादा
0: जी
1: यानी बहुत ही अच्छा लगता है, ये बात है। वो जो है अपना नूरजहां है,
0: जी नूरजहां के साथ तो आपने कुछ गाने गाए भी हैं।
1: हाँ जी, उनके साथ पहले पिक्चरें मैंने बनाई हैं, खजान खानदान
0: जी
1: और एक पंजाबी पिक्चर थी चौधरी,
0: जी
1: उसमें उन्होंने और मैंने गाने गाए।
0: जी
1: मैं तो उनको हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह यानी समझती थी,
0: जी
1: और वो भी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं,
0: जी
1: और इसी नाते मैं उनको कभी भी नूरजहां नहीं बुलाती थी, हमेशा उनको नूरी नूरी
0: अच्छा, प्यार से नूरी
1: पुकारती
0: थी।
1: नूरी नूरी बुलाते थे।
0: सहगल साहब के साथ, केएल सहगल मरहूम,
1: बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे वो, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे साहब हमारे। उनके साथ जब हमने उनको देखा
0: जी,
1: तो वो बॉम्बे में आए हुए थे, तब तब वो हमें मिले, तो बहुत ही अच्छे लोग आर्टिस्ट थे, गाना भी, और जो जो आज मर्दाना आवाजें सुनी जाती हैं
0: जी,
1: उसी आदमी की वजह से, क्योंकि सबसे पहली वही मर्दानी आवाज है जिसको लोगों ने स्क्रीन पे सुनना और पसंद करना शुरू किया, नहीं तो पहले जितने मर्द गाते सब औरतों की तरह गाते, आवाज ती ब्रीक आवाज में गाते थे, तो अब उन्होंने बेस वाली आवाज को, पहली सहगल साहब की आवाज थी जिसको बेस में लोगों ने सुना कि बेस में मर्द कितना अच्छा गा सकते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट आए जो गाने लगे, लेकिन पहले वही थे
0: जी। आपने ये कहा कि सहगल के अलावा भी, केएल सहगल के बाद भी तो और आवाजें हमारे यहाँ आई हैं और उनके साथ आपको गाने का मौका मिला है।
1: हाँ जी, रफी भाई हैं, अपना मुकेश हैं, और क्या उनका नाम है,
0: मन्ना डे,
1: किशोर कुमार के साथ भी गाए मैं।
0: आपकी गुलकारा की हैसियत से आपकी जिंदगी तो जाहिर है कि, और ये आवाज का ये सफर तो बहुत तवील है, गालिबन 33-34 बरस आपको हो गए हैं, और इस अरसे में आपने बहुत से गीत गाए हैं, बहुत से नगमे आपने गाए हैं, कुछ ऐसे गीत आप और ऐसे नगमे बता सकेंगे जो आपको बहुत पसंद है? हालांकि बड़ा मुश्किल है
1: ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल है जी, मैं क्या बताऊँ कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से, अगर कई इतने गाने मैंने गाए हैं जो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो उस टाइम के ओवरहिट सॉन्ग थे
0: जी।
1: अगर मैं उस किसी दूसरे का नाम ले दूं तो उनके साथ कितनी नाइंसाफी होगी, जो उन्होंने कितने अच्छे दिए थे गाने।
0: सही है, नहीं मतलब मुझे तो आपके कुछ गाने याद आ रहे हैं, जैसे सैया दिल में आना रे, या चांदनी आई बन के प्यार, और किसी के दिल में रहना था तो मेरे दिल में क्यों आए, यह है सैया दिल में आ रहा रे, तो इसको कुछ गुनगुना के सुनाइए।

0: मोहे लेके जाना रे, हो मोहे लेके जाना रे, चम चमा चम चम।
1: आपकी आवाज के बारे में आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि बड़ी तरबिया आवाज है आपकी, बड़ी जिंदगी है आपकी आवाज में, और ऐसे ही गाने आप गा भी सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने तो सैड सॉन्ग्स भी गाए हैं और कैरेक्टर सॉन्ग्स भी आपने गाए हैं जो मुख्तलिफ किस्म के हैं। खुदा आपके इसके बारे में क्या राय है?
0: मैं तो जी हर एक किस्म का गाना गाया है, कॉमेडी, डांस सॉन्ग, रोने के गाने, हैप्पी सॉन्ग, सोबर सॉन्ग, हर एक किस्म के लव सॉन्ग। मेरे पूरी पूरी पिक्चर, अभी मेला था, सब सैड सॉन्ग थे, बाबुल सैड सॉन्ग, और क्या नाम, खजानची बनाई, सब सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, डांस सॉन्ग, हर एक चीज बीच में थी
1: जी।
0: अब ये फील्ड सॉन्ग जो है, इसमें वाकई सही है कि फोर्सफुल आवाज चाहिए, बड़ी पाटदार आवाज हो तो ही फील्ड में जाके खुलेगी तो अच्छा लगेगा।
1: जैसे वो है गाड़ी वाले,
0: गाड़ी वाले
1: जरा वो थोड़ा सा गुनगुनाए।

और एक और है, वो आग लगी तन मन में दिल को पड़ा थामना, आन का। जी हाँ, आन का। खुद मेरा ख्याल है कि आपको भी ये गीत बहुत पसंद होगा।

0: फिर आगे म्यूजिक चलता है उसका जी, अंतर आएगा फिर।
1: रिकॉर्ड है कि जब उसने केसु बिखराए बादल आया झूम के,
0: शाहजहां का।
1: जी हाँ, शाहजहां।
0: जब उसने गेसू बिखरा,

के उसके नैन गुलाबी, उसके नैन गुलाबी कर दे सब कुछ राबी, कर दे सब

0: जमाने से गा रही हैं और फिल्मों से वाबस्ता हैं, तो हमारी फिल्मी सनत ने तो बहुत तरक्की की है
1: जी।
0: तो 33 साल पहले जो रिकॉर्डिंग की हालत थी, गीत जिस तरह रिकॉर्ड किए जाते थे, मैं समझता हूँ आप तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप एक पुरानी आर्टिस्ट के तौर पर आप क्या महसूस करती हैं हमारे यहाँ गानों की रिकॉर्डिंग के बारे में और गुलकारों को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में?
1: वो उसका ये जी, आज से 33 साल पहले जब शुरू किया हमने, तो पहले ये थिएटर नहीं होते थे आर्टिस्टों के लिए, अभी तो एयर कंडीशन थिएटर है जिनमें आर्टिस्ट लोग जाग गाते हैं, चार चार छह छह माइक लगे होते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती। पहले जब हमने शुरू किया तो सब तो स्टूडियो में होता था, पहले शूटिंग होती थी, 6 बजे तक शूटिंग हुई, फिर वो पैकअप हुआ, फिर झाड़ू लगे, फिर वही उसी में खड़े हो गए गाने को, तो जो गाने लगे तो रात के 1 बजे तक गा रहे हैं, टेकिंग हो रही हैं, क्योंकि वो फीते भीते तो थे नहीं कि उसी को सुन लें। उनको भी ये होता था कि टेक्स करके दूसरे दिन डेवलप करते थे उसको, और उसके बाद सुनते थे कि रिजल्ट क्या आया, तो इसलिए उनको ये होता था कि 2-4 गाने की टेक्स ज्यादा ही ले लो, ताकि कल कहीं कोई एक खराब होगी तो दूसरी अच्छी हो जाएगी, दूसरी खराब होगी तो तीसरी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए उस बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बड़ी आर्टिस्ट को तकलीफ होती थी, क्योंकि एक माइक के ऊपर आर्टिस्ट प्लेबैक आर्टिस्ट भी होता था, कोरस के अगर हैं तो वो भी होंगे, और अगर जो म्यूजिशियन थे वो भी साथ होते थे
0: जी,
1: सब लोग इकट्ठे एक ही माइक्रोफोन में होता था, तो उसके लिए यकीनी बात है कि हमको तकलीफ होती थी
0: जी।
1: कोई एक भी उनमें से कमती हो गया, यानी दूर रह गया या आगे आ गया, तो फिर से शुरू करो। अभी तो ये नॉब जो है अंदर रिकॉर्डिस्ट के हाथ होती है, क्योंकि म्यूजिक कितना रखना है, गाने वाले को कितना रखना है, रिदम कितना आएगा, बड़ा टेक्निकली बहुत आगे हो गया अभी तो। हमारे टाइम पे तो बड़ी बहुत तकलीफ होती थी काम करने में।
0: आपका एक नगमा मुझे याद आ रहा है, बहुत पुराना नगमा है, एक बार फिर कहो जरा कि मेरी सारी कायनात तेरी एक निगाह पर निसार। अब तो
1: ये मेरा प्राइवेट सॉन्ग था
0: जी। हाँ, गैर फिल्मी है।
1: हाँ जी,
0: तो वो वैसे तो जाहिर है कि कभी कभी सुनने में आता है, लेकिन आज मौका मिला है कि आपसे इस नगमे को फिर सुना जाए।

वाह वाह वाह। और आपका एक पंजाबी रिकॉर्ड और मुझे याद आया, छिप्पी दिया चुनिया। वाह, बहुत पुराने रिकॉर्ड आपको, गाने आपको याद दिला रहा हूँ।

परदेस ते मैं चम चम ते मैं चम चम रोनिया संतरे खवा के पटिया हाय इसके देखो विच सटिया पट

0: पीछे अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
1: यमला चित में तो एक और भी गाना था आपका, आ सजना।
0: हाँ जी,

0: आपने तो गजलें भी गाई हैं और मैंने अभी तक आपसे गजल की फरमाइश नहीं की।
1: मैं आपको सुनाती हूँ अपनी ये गजल
0: जी,
1: जिसकी धुन मैंने खुद बनाई है।
0: अच्छा।
1: जिंदगी अब गुजर भी जा

अजीज अहमद खानवारसी और साथियों को सामिन में आप सुन रहे थे, फिल्म थी गर्म हवा। और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, महिंदर कपूर, अजीज नाजा और साथियों को, फिल्म है माँ के आंसू।

ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडलाइड्स के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को दोगुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट CBSE के खिलाफ एक अर्जदाश्त की समाअत करेगा, जिसमें 1 जुलाई से नवी जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के मुताले को लाजमी करार दिया गया है। अमरीका की वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है, अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नज़र कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और कुब्रुस ने आज नई दिल्ली में मुख्तलिफ मैदानों में एक दूसरे के साथ बहुत से मुआहदे किए हैं, जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप का क़याम, इख्तरा और टेक्नोलॉजी, आला तालीम व तहकीक और सकाफती ताउन शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के बारे में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडलाइट्स के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कसीर मुल्की फोरमों में ताउन समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के मामलात पर तबादले ख्याल किया। अपने मुश्तरका बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान दोस्ती न सिर्फ मजबूत है बल्कि मुस्तकबिल में ताबनाक भी है। उन्होंने कहा कि पिछली दहाई में कुब्रुस से भारत में सरमायाकारी

तकरीबन दो गुना हुई है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोप यूनियन आज़ाद तजारती माहदे के बाद बहुत से नए इम्कान पैदा हुए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को एक बार फिर दोगुना करना है। कुब्रुस के सदर जनाब निकोस ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन भारत ताल्लुकात में पिछले साल काफ़ी वसअत आई है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल इन ताल्लुकात में वज़ीर आज़म मोदी के कुब्रुस के दौरे से शराकतदारी की रफ्तार में काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ है। कुब्रुस के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और कुब्रुस के दरमियान करीबी और दैनिक शराकतदारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान अगले साल फरवरी में सिफारती ताल्लुकात के 65 साल पूरे होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत पूरी सरहद को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में ड्रोन, रडार, कैमरे और दीगर तकनीकी वसाइल शामिल किए जाएंगे। उन्होंने ये काम एक ऐसी सरहद के हिफाजती फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है जिसे पार करना मुमकिन ना हो, जिसके लिए स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत आने वाले साल में सरहदी हिफाजती फोर्स के सलामती निज़ाम में हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बैनुल अक्वामी सरहदों की सिक्योरिटी को चैलेंजों से निमटने के एक अलहदा काम के बजाय वसीतर इलाकाई जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जनाब शाह ने कहा कि कई तरह के चैलेंजों और दुश्वार हालात के बावजूद बीएसएफ ने लगातार मुल्क का नाम रोशन किया है। जनाब अमित शाह ने दरअंदाजी, मुनशियात की स्मगलिंग, जाली करेंसी के चलन और हथियारों और नशा आवर अद्वियात की स्मगलिंग समेत उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात को उजागर किया। वजीर दाखिला ने ज्यादा मरबूत और जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया और रियासती पुलिस, मरकजी मुसल्लह फोर्सेज, सुराग रसा एजेंसियों और मकामी इंतजामिया के माबेन और ज्यादा तालमेल की जरूरत को भी उजागर किया। इंतखाबी कमीशन ने आज 10 रियासतों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वजरा जॉर्ज क्यूरियन और रवनीत सिंह अरकान है जिनकी मुद्दत कार अगले महीने खत्म हो रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट खाली हो जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में 1 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 18 जून को पोलिंग होगी। उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। कमीशन ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा के जिमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया है। ये सीटें महाराष्ट्र की नायब वजीर आला सुनेत्रा अजीत पवार और एआईएडीएमके के रुकन पार्लियामेंट सीवी शनमुगम के हालिया रियासती इंतखाबात में मुंतखब होकर रियासती असेंबली में पहुंचने के बाद खाली हो गई हैं। इन सीटों के लिए भी 18 जून को ही चुनाव कराए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अर्जदाश्त पर आइंदा हफ्ते समाप्त करने पर रजामंदी जाहिर की है जिसमें सीबीएसई की नई पॉलिसी को चैलेंज किया गया है। इस पॉलिसी के तहत 1 जुलाई से नवी जमात के तलबा के लिए 3 जबानों की तालीम लाजमी करार दी गई है। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच के सामने इस मामले को पेश किया। बेंच में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह मफाद आम्मा की अर्जी तलबा, असातजा और वालिदैन की जानिब से दायर की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सीबीएसई की नई पॉलिसी के तहत नवी जमात में 2 इजाफी जबाने लाजमी करार दी जा रही हैं जिससे बदनज़मी पैदा होगी। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि इस मामले की समाअत पीर के रोज़ की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस मुकदमे की समाअत आइंदा हफ्ते मुतफर्रिक समाअतों के दौरान की जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने अबनाए हुरमुस के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही।
स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामानिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकत दार

0: करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वज़रा से मुलाकात का मौका मिलेगा। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी और सख्त लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्म लहर चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने शुमाल मशरकी भारत, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और दाखिली मगरबी कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी की है। कांस फिल्म फेस्टिवल में कल मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत AI से तैयार करदा एक नई फिल्म का प्रीमियर पेश किया गया। ये फिल्म जिसका नाम हेलग्रिंड है, इसका दौरानिया 95 मिनट का है। 15 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने सिर्फ 14 दिन में इसे तैयार किया है और इस पर तकरीबन $5,00,000 खर्च हुए हैं। सैन फ्रांसिस्को को स्टार्टअप हेक्सफील्ड AI ने अपनी साइंस फिक्शन फिल्म को दुनिया की पहली AI फीचर फिल्म के तौर पर तैयार किया है और बुध के रोज इसका ट्रेलर भी जारी कर दिया है। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडलाइट्स के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को दोगुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट CBSE के खिलाफ एक अर्जदाश्त की समाअत करेगा जिसमें 1 जुलाई से 9वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के मुताले को लाजमी करार दिया गया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1,071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन की ये पंजाबी सेवा है। शाम के 5 बजे ने हुण साड़ी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा का आगाज कर रहे हैं श्री जबान सराइकी के प्रोग्राम झोक माही दे नाल।

0: ए ऑल इंडिया रेडियो दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते आज दा प्रोग्राम घिन के हाजिर हां। के हाल चाल हिन तुहाडे? मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक होसो। ते वाला शुरू करें दे हां प्रोग्राम। सब तो पहला मैं तुहा को सुनवेंदी पई हां एक वार्ता, कलम दे धनी सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी दा जीवन दर्शन। वार्ताकार हिन किरण बाला।
1: मलिक मोहम्मद जायसी दा जीवन दर्शन हिंदी साहित्य दे भक्ति काल दी निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा दे सर्वश्रेष्ठ कवि हन। मलिक मोहम्मद जायसी बहु सरल उदार सूफी महात्मा अते अपने समय दे सिद्ध ते पहुंचे हुए फकीर मन्ने वेंदे हन। जायसी मलक वंश दे होवण करके इन्हां दा पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। मिस्र च सेनापति अते प्रधानमंत्री को मलिक आदे हन। इन्हां दे पुरखे निगलम प्रांत तो आए हन ते मलिक इन्हां दे पूर्वजां दी पदवी है। इन्हां दे वंशज अशरफी खानदान दे चेले मलिक सड़ींदे हन। जायसी शेख बुरहान अते सैयद अशरफ को अपना गुरु मनेंदे हन। इन्हां दा जन्म सन

0: तह काटा रे, मधु जहवा है माफी तहवा गुर जहवा तह चाटा रे। कहरनामा इच कहारा दे जीवन ते शादी दे माहौल दे माध्यम नाल कवि ने अपने अध्यात्मिक विचारां दा वर्णन किया है। पद्मावत, पद्मावत ग्रंथ महाकाव्य दी श्रेणी च आंदा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकालीन कवियां दी गिणती च जायसी मुहिक प्रमुख कवि दे रूप च झां दित्ती है। शिव कुमार मिश्र ने जायसी ग्रंथावली दा संपादन करेंदे होए जायसी दी पहली श्रेणी दे कवि तरह सराहना कीती है। शुक्ल जी दे अनुसार जायसी दी प्रेम वंदना बहु गूढ़ है। जायस नगर धर्म स्थानु तहवा ये कवि कीन है बसानु। जायसी ई नगर को धर्म स्थान समझते हन अते इथाई रहकर ही उन्होंने पद्मावत दी रचना कीती है। जायसी ने कल्पना दे नाल नाल इतिहास दी मदद घिन के पद्मावत दी कथा दा निर्माण कीता है। सन 1943 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा। सिंगल द्वीप पद्मनी रानी रतन सेन चितौर गढ़ आनी अलाउद्दीन देहली सुल्तानु राघव चेतन कीन बखानु सुना साही गढ़ छेकन आई हिंदू तुर्कन भई लड़ाई आदि अंत जस कथा अहे लिखी भाषा चौपाई कही। जायसी दा दावा है कि पद्मावती दी कथा रस पूर्ण अते बहु पुराणी है। पद्मावत चितौड़ दे राजा रतन सेन अते सिंगल द्वीप दी राजकुमारी पद्मावती दी प्रेम कथा दसी गई है। सिंगल द्वीप दे राजा गंधर्व सेन दी पुत्री पद्मावती दे कोल हीरा मन्ना दा एक बोलन आला तोता है। हिक ने अचानक बिल्ली दे हमले तो बच के हीरा मन उत्थू भज गया पर हिक शिकारी दे जाले च फस गया। ऊ शिकारी ने हीरा मन को एक ब्राह्मण दे हथ वेच दिता। चित्तौड़ आके ब्राह्मण ने ओ तोता राजा रतन सेन को वेच दिता। हिक ने रतन सेन दे शिकार ते वंजन दे बाद हीरा मन दे मुंह तो पद्मावती दे रूप दी तारीफ सुन के रतन सेन दी राणी नागमती अंदर ही अंदर पद्मावती को नफरत करन लग गई। उन्हें नौकरानी को तोते को मारन दा आदेश दे दिता पर नौकरानी ने राजा दे डर कोलों तोते को छुपा दिता। शिकार तो वापस आवन दे बाद तोते दे बिना राजा परेशान थी गया। आखिर नौकरानी तोते को राजा दे सामने घिन आई। रतन सेन ने हीरा मन कोलू जेड़े वेले राणी पद्मावती दी सुंदरता दा बखान सुनिया ता ओ पद्मावती को पावण वास्ते बेचैन थी गया। पद्मावती को पावण वास्ते राजा जोगी दा भेस बना के राजपाट छोड़ के निकल गया। कई तरह दियां मुश्किलां को पार करके सिंगल द्वीप पहुंच के हीरा मन दी मदद नाल पद्मावती दे पिता गंधर्व सेन रतन सेन ने पद्मावती दी शादी करवा लेंदे हन। राजा रतन सेन दी सभा च राघव नां दा इक तांत्रिक हाई जेंदे झूठ बोलन करके राजा रतन सेन ने राघव को अपने दरबार इच बाहर कर दिता है। ओ नाराज थी के अलाउद्दीन दी सेवा इच पहुंच गया। इत्था उन्ने पद्मावती दे अद्भुत रूप दी बहु प्रशंसा कीती। अलाउद्दीन पद्मावती को प्राप्त करन वास्ते बेचैन थी गया। अलाउद्दीन ने राजा रतन सेन को एक संधि संदेश भिजवाया जैको राजा रतन सेन ने मना कर दिता। अलाउद्दीन को विदा करन वास्ते अपने गढ़ तो बाहर कर दिता पर अलाउद्दीन ने राजा को बंदी बना गिदा ते उको दिल्ली घिनाया। चित्तौड़ च राणी पद्मावती बहु दुखी थी गई ते अपने पति को छुड़ावण वास्ते अपने सामंता गौरा ते बादल दे घर गई। 1600 डोलियां सजा के जैंदी च राजपूत सैनिक हन दिल्ली तुर पए। उत्था पहुंच के आख्या गया कि राणी पद्मावती अपनी चेरियां दे नाल सुल्तान दी सेवा च आई है और आखिरकार अपने पति रतन सेन को मिलना चाहती है। सुल्तान ने मिलन दी आग्या दे दित्ती। डोलियां इच बैठे राजपूता ने रतन सिंह को छुड़ा गिदा ते उत्थों भज गए। सुल्तानी सेना ने पीछा कीता पर रतन सेन सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए। जेड़े वेले राजा दिल्ली इच बंदी हाई तकुंभेल नेर दे राजा देवपाल ने पद्मावती कोल अपना दूत भेज के प्रेम प्रस्ताव कीता हाई। जेड़े वेले ए घटना पद्मावती ने रतन सेन को सुनाई ता ओ कुंभल नेर पहुंच गया देवपाल नाल द्वंद युद्ध कीतिया जेंदे विच राजा भी बुरी तरह घायल थी के चित्तौड़ पहुंचा ता इत्था आके घर आंदे ही उना दी मृत्यु थी गई। पद्मावती ते नागमती ने राजा दे शव नाल ही चित्तारोहण कर गिता। अलाउद्दीन पीछा करेंदा होया चित्तौड़ पहुंचा उत्था उको पद्मावती ना मिल के उंदी सिर्फ सुआ मतलब उंदी राख मिली। पद्मावत दे कुल 33 खंड हैं। इंदे इच 192 चौपाइयां अते दोहे हैं। पहले खंड इच ईश्वर दी स्तुति ते उंदी सारियां अवस्थावां ते रूप गुणा दा जिक्र कीता है। ई खंड विच ही उन्होंने अपना परिचय ते अपने गुरु दा वर्णन कीता है। कवि ने अपनी अपंगता दे बारे भी स्तुति खंड दे आखिर विच कीता है। हीरा मन राजस्थान दे लोक देवता हैं ते इन्हां दी पूजा पशु रक्षक देवता दे रूप विच कीती वेंदी है। जायसी लिखदे हन कि भावना ते कल्पना दे संयोग नाल ए रूपक विच पद्मावती परमात्मा दा रूपे साधक रतन सेन हिन ते शरीर चित्तौड़ हाई हीरा मन तोता गुरु है राघव चेतन शैतान अते अलाउद्दीन माया दा प्रतीक हिन। पद्मावत इच लोक पक्ष संसारिक ते आध्यात्मिक पक्ष काल्पनिक दा मिश्रण है। जायसी दा भाव पक्ष बहु सुदृढ़ है। कला पक्ष दे अंतर्गत भाषा अलंकार छंद दा बहु महत्व है। बोल चाल दी भाषा दे उत्कृष्ट भाव व्यंजन जायसी दे रचनावां इच देख सकते हैं। अलंकारां दा प्रयोग अपने स्वाभाविक रूप इच मिलदा है। चमत्कार पूर्ण कथा दी प्रवृत्ति जायसी इच बिल्कुल कहनी। दोहा अते चौपाई जायसी दे प्रधान छंद हैं। पद्मावत दी भाषा दे बारे वसुदेव शरण अग्रवाल जी ने आख्या है कि जायसी दी अवधि भाषा शास्त्रियां वास्ते स्वर्ग है। जायसी मुसलमान हन तां भी उन्होंने हिंदुआं दी कहानियां ते भाषा को पूरे दिल नाल अपनी रचनावां इच इस्तेमाल कीता है। पद्मावत दी भाषा ठेठ अवधि है। कुल मिला के आखूं तां पद्मावत प्रेम गाथा परंपरा दा अद्वितीय ते अनूठा काव्य है। इतिहासकारां दे अनुसार मलिक मुहम्मद जायसी दे आशीर्वाद नाल अमेठी दे राजा कोंडू पुत्रां दी प्राप्ति थई हाई। राजा जायसी दा बहु सम्मान करेंदे हन ते उन्हां ने जायसी को साधना करन वास्ते मंगरा देवां विच रावण दी व्यवस्था भी करवा दित्ती, पर एक शिकारी ने शेर दी आवाज दे धोखे विच जायसी को गोली मार दित्ती ते उत्थां ही उन्हां दा 1542 देहांत थी गया।
1: कलम दे धनी सूफी संत मलिक मुहम्मद जायसी दा जीवन दर्शन। हुणे तुसी किरण बाला दी ए वार्ता सुनदे पए हवे। वार्ता बहु जानकारी पूर्ण सी ना। उम्मीद है तुहाको पसंद आई हो सी। हुण पीरा फकीरा सूफी संतां दी गाल चलीए ते तुहाको सुनवेंदे हां सुफियाना कलाम। बीबी नूरा दी आवाज विच पेश है काफी कुल्ली राह विच पाई असां तेरे आउंदा जांदा तकदा रही। चस घिनो

0: Puya ge apna kar oye dipya oye kithe reh gaya tu oye dipya wo pata nahi kithe chala gaya o paliye loke tu kithe hai oye kyon mere naal lukkad mitti khel rahi hai dass kithe hai
1: hai tade samne ta khadi ha दारू कट डफनी सी नजर ता ठीक रेंदी
0: ओए कट किवे पिंदे भगवान ने अपने यार दीपे नु टीटू दे हैप्पी बर्थडे दी पार्टी जो देनी सी
1: होगी पार्टी
0: अरे किथे डार्लिंग
1: डार्लिंग शार्लिंग अपने कोल रखो ते चुप करके सो जाओ
0: ओए सो जाओ ओए किवे सो जाइए आज दा पार्टी अद्धी होई है डार्लिंग
1: अद्धी ओ किवें
0: ओए मैं ते मेरे दीपे यार ने दारू पीती है पर खादा कुछ भी नहीं
1: ते मैं की करा फिर
0: तू है कर के साडे लिए गरम गरम पराठे बना दे देसी घ्यो दे
1: देसी घ्यो दे पराठे बना दे जिवें तुहाडी मां ने घ्यो दे पीपे भर के भेजे ना
0: ओए खबरदार जे मेरी मां दा नाम लिया था चुप चाप अंदर जाते फटाफट पराठे बना
1: आलू वाले परौंठे बना आटा है नहीं कर
0: ओ फिर मूली वाले बना दे
1: आए हाय सड़ गई मेरी किस्मत मेनू एक गल दसो परौंठे बंदे कादे ना लिया
0: ओए मेनू नहीं पता तू सिर्फ परौंठे बनाने है आटा जिथों मर्जी ले गया मेरा यार दीपा जो आ रहा है
1: आए हाय तनु क्या ते हैगा भी आटा है नहीं परौंठे अपने सिर ना बनावा
0: ओ जिथों मर्जी लिया मैं मेनू की पता मेरे दीपे यार ने परौंठे खाने आ गया
1: ते मैं की करा चंडियां लावा ओदे के बाजे बजावा ते गाड़ी
0: देख भाई ए तेरा अपना इंतजाम है जिवें मर्जी कर पर मेनू आलू वाले परौंठे चाहिए अपने यार वास्ते पराठे बना गरम गरम
1: हाय मैं मर गई अ तुसी ते इस वेले ना कुछ ही समझन दे लायक नहीं हैगे जो जी आवे करो मेरे ते घर दे काम पए ने मैं चलनी हां

0: व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम, राम। और प्रियंका बहन,
1: देखिए शुक्रवार को हम खास तौर से बात करते हैं कि फल सब्जियों को और मोटे अनाज को अपने खान पान में शामिल करके कैसे हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। भाई फल सब्जी तो मौसम के अनुकूल खाने ही चाहिए, लेकिन अगर उन्हें प्राकृतिक रूप से उगाया गया हो तो सेहतमंद भी होते हैं और पौष्टिक भोजन हमें प्रदान करते हैं। और अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें लागत भी कम आती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। और निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो हमारे किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती की ओर रुख करें।
0: जी, तो इसमें कम दाम और ज़्यादा दाम मिलते हैं, यानी कम दाम लगेंगे और ज़्यादा दाम मिलेंगे, ऐसा भी इसमें कहा जाता है। उत्पादन भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसकी मांग भी बहुत सारी रहती है। तो आज बातचीत सुनवाते हैं आपको जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा और आपसे बात कर रहे हैं शिवनंदन लाल।
2: किसान भाई नमस्कार। आप अपने खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए विभिन्न तरीके के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ जब उसमें कीट और बीमारियां आ जाती हैं उससे बचाव के लिए भी आप प्रयास करते हैं कि उसमें बहुत से रासायनिक दवाओं को डालते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन तो कुछ स्तर तक बढ़ता है, लेकिन जो उससे दुष्प्रभाव होते हैं, मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है, उसके स्वास्थ्य पर भी इन रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाओं का प्रभाव पड़ता है। तो क्यों न हम थोड़ा सा इससे हट के अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, और जैविक खेती प्राकृतिक खेती क्या है, किस तरीके से इसे करें, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेते हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा जी से, जो कि निदेशक हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों में क्या विशेष अंतर है?
3: देखिए, जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो या अन्य कोई नाम हो, इसका बात हम कर रहे हैं केमिकल फ्री खेती, मतलब जिसमें हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसी जो खेती है उसको हम लोग प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कहते हैं। परंतु अब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में जो अंतर है वो समझना बहुत ही जरूरी है। दोनों ही खेती केमिकल फ्री फार्मिंग की ओर ले जाती हैं, बहुत अच्छी
2: रसायन मुक्त खेती।
3: रसायन मुक्त खेती, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। तो रसायन मुक्त खेती है और इसमें हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है। और अब हम उसको जैविक खेती कहें, प्राकृतिक खेती कहें, बाहर के देशों में रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर कहा जाता है, सस्टेनेबल फार्मिंग कहा जाता है, सतत

0: ये सब चीज़ें अगर हम समझना चाहें कि भाई रसायन मुक्त खेती जो नंदन जी ने कहा वो बहुत ही अच्छा कहा, रसायनों से हमें मुक्ति पानी है, उस तरह की खेती होती है जैविक एवं प्राकृतिक खेती। अब जैविक खेती जो है वो पहले से चली आ रही है, बाहर के देशों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दिया, जैविक खेती नाम दिया, और उसमें एक मानक होते हैं, मानक इस तरह से होते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जिनको हम कहते हैं, राष्ट्रीय जो मानक बनाए गए हैं, इन मानकों को ध्यान में रखते हुए जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और वो अपेडा के द्वारा चलाए गए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP प्रोग्राम में 2001 में, उसमें डेफिनेशन क्लियर कट दी गई है कि इस तरह की खेती को जैविक खेती कहा जाता है जिसमें हम रसायनों की बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उसमें GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं डाला जाता है, उसका भी इस्तेमाल वर्जित है। अब करना क्या होता है जैविक खेती में, जैविक खेती में हमें क्या डालना है, फिर उसमें
1: जी
0: हमें डालना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम कहते हैं जैसे फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रोम से जाने जाते हैं, सिटी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद जिसको हम कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: फार्मयार्ड मैन्योर, ठीक है, ये सारी जितनी भी जैविक के तरीके से हमने खादें बनाई होती हैं, केमिकल उसमें नहीं डाला होता है, उनको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। तो जब हम उसको बाहर से खरीद के लेके आते हैं या खेत में भी कुछ बनाते हैं किसान भाई, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, उसको हम लोग जैविक खेती कहते हैं। और अगर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का अटैक आता है तो हम बायो पेस्टिसाइड डालते हैं, वो भी हम बाहर से खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ हम बायो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं जो जैविक तरीके से, मतलब जो खाद होती है जिसको हम कहते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं, एजोटोबैक्टर की बात करते हैं, जिसके अंदर लाइव माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जिंदा जो जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, दलहनी फसलों में एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, ऐसे अंग्रेजी में नाम रखे गए हैं,
1: जी
0: फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटैश मेबोलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो जो बैक्टीरिया हैं जो जिंदा है उनको एक पैकेट में डाल के जब कंपनियां बनाती हैं उसको जब खरीदते हैं किसान भाई, उसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर का नाम देते हैं। तो बेसिकली जैविक खेती वह खेती है जिसमें हम बाहर से भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं किसान भाई, और उसको खेत में वो डालते हैं, और साथ ही साथ ग्रीन मैन्योरिंग, मल्चिंग और भी जो अच्छी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो किसान भाई करते हैं, ताकि आपकी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो और पानी का भी बचाव हो। पानी की जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है जब हम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालते हैं, पानी खराब भी हो जाता है, कंटेमिनेट भी हो जाता है रसायनों के कणों से जब वो बह जाते हैं। तो इस तरह की खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। अब प्राकृतिक खेती के ऊपर अगर हम आते हैं, क्योंकि
1: जी
0: अभी से इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी तो सभी देशवासियों से हमेशा कहते रहते हैं कि प्राकृतिक खेती को अपने एक एकड़ में, आधा एकड़ से किसान भाई शुरू करें और प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिसमें गाय का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय से गाय का गोबर मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा। मतलब यहां पर किसान भाइयों को यह समझना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती भी रसायन मुक्त खेती है, परंतु वहां पर इतना ही डिफरेंस है कि आपको ऑर्गेनिक खाद, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड जो मैंने आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में गिनाए,
1: जी
0: ये आपको बाहर से खरीद के निर्भर नहीं रहना है। इवन सीड भी आप कोशिश ये करें कि आपके खेत में ही, जो आप बचाते हैं पुरानी पद्धति से, ट्रेडिशनल फार्मिंग हम करते थे, सीड जो है लोकली एक दूसरे से लिया करते थे, जो बचा के रखते थे हम लोग, ट्रेडिशनल सीड मिलेट्स में आज भी यूज किया जाता है। आपको इतना सा मैं शॉर्ट में कहूंगा कि जब आप गाय को पाल रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं हम लोग, गाय का और हमारे जो ट्रीज हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सबका कॉम्बिनेशन, यहां हमें ध्यान देना होता है मल्टीपल क्रॉपिंग के ऊपर
1: जी
0: प्राकृतिक खेती में, और इसमें मल्चिंग सबसे महत्वपूर्ण है, और ग्रीन मैन्योरिंग भी की जाती है इसमें, परंतु मल्चिंग और जो ऑन फार्म हम लोग गाय के गोबर से, गौमूत्र से, जो अपने खेत में ही, अपने रिसोर्सेज से, जो हमारे संसाधन आसपास पड़े हैं, चाहे वो खरपतवार हैं, हमारे सड़े गले पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, इन सब से जब हम अपने गौमूत्र को मिला के कुछ बनाते हैं घोल, जो कि हमारी मृदा के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखता है और कीट और बीमारियों से भी हमें बचाता है, इस तरह की खेती को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं।
1: जिस तरीके से आपने सर गोबर गोमूत्र का जिक्र किया, तो जैविक और प्राकृतिक खेती में इनकी क्या भूमिका है, जीवामृत है तो उसको कैसे बनाया जाता है?
0: बिल्कुल, जैसे जीवामृत है तो जीवामृत को गाय का गोबर हमें चाहिए, और 200 लीटर का ड्रम किसान भाइयों को लेना होता है, और पूरी के पूरी बुकलेट और पैम्फलेट हमारी वेबसाइट में भी आप देखें, जिसमें अधिक जानकारी हमने दी हुई है कि कैसे इसको बनाना है। आपको 200 लीटर का ड्रम लिया, उसमें 20 किलो गाय का गोबर लिया, उसके अंदर हमने गौमूत्र भी लिया, और उसके साथ में गुड़ भी हमने 2-3 किलो जो है उसके अंदर डालना है, ताकि ये जो जितने भी इसके अंदर जो नेचुरल जीवाणु हैं गाय के गोबर

0: के अंदर, तो वो जो है मल्टीप्लाई हो मिलियंस में।
1: जी
0: तो ये इसके पीछे का जो राज है वो ये है कि जब हम गाय का गोबर मिलाते हैं, फ्रेश काउ डंग है, गाय का गोबर, गौमूत्र, इनसे क्या होता है कि इस तरह का उसके अंदर तत्व आते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो चलो बहुत कम मात्रा में होते हैं, परंतु जो जीवाणु हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत बेनिफिशियल हैं हमारी मृदा के लिए। तो सबसे पहले जब हम इस जीवामृत का इस्तेमाल हम अपनी मृदा में करते हैं, अच्छे से जब घोल के इसको ड्रम के अंदर 2-3 दिन रखा जाता है और इसको स्टरिंग भी की जाती है, इसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है ताकि अच्छी ऑक्सीजन भी इसके अंदर प्रवाह हो और जितने भी जो जीवाणु हैं अच्छे वो खूब पनपें, और 10-15 दिन के अंदर ही हम इसको यूज कर लें। ये नहीं कि हम 15 दिन के बाद भी इसको रखें, ऐसा ना हो कि इसके अंदर पैथोजन और कंटेमिनेशन आ जाए, तो ये सावधानी भी बरतनी होती है। तो फटाफट इसको बनाया और उसी वक्त इसको पानी की मेंड में, जहां भी पानी आपने छोड़ा हुआ है उसके अंदर डाल के खेतों में जाने दिया, या आप इसको डाइल्यूट करके पानी के अंदर मिला के अच्छे से स्प्रे भी कर सकते हैं, मृदा के ऊपर डाल दीजिए, या आपने ग्रीन मैन्योरिंग की जो फसल ली हुई है उसको काटा है 10-15-20 दिन के अंदर बीज बोने से पहले, जो हम कहते हैं ना अपने खेत की तैयारी करते हैं,
1: जी
0: उस वक्त भी आप इसको मिला सकते हो, जुताई भी करते हैं उसकी, जब ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप हम यूज करते हैं उसके साथ भी इसको मिक्स किया जा सकता है, तो जल्दी डिकम्पोजिशन होगी और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, जो हमारे तत्व हैं, मिनरल्स हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी होगी हमारे मृदा में बढ़ जाएगी, मृदा की जो उत्पादकता की क्षमता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की जो उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है, और ऑर्गेनिक कार्बन सबसे बड़ी चीज है जो बड़ी स्पीड से बढ़ता है घन जीवामृत के इस्तेमाल करने से। तो घन जीवामृत अगर आप पूछेंगे तो वो कुछ नहीं है, उसमें यही जीवामृत का जो अगर हम थोड़ा सा निकाल के एक मग या 200 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर या 1 लीटर एक छोटी सी ढेरी गोबर की बना लें, तो आपने देखा होगा गोल गोल करके हम लोग इसको सुखा के और अच्छे से थोड़ा सा इसको महीन पीस के जीवामृत का इस्तेमाल भी किया है, एक दही की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे दही का ना
1: जी
0: जुगैन रखा होता है हमने, उस तरह से ही कल्चर अगर हम जीवामृत से लें फ्रेश, जो 10-12 दिन का बना हुआ है, 6-7 महीने के लिए भी घन जीवामृत के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो घन जीवामृत ड्राई मटेरियल हो गया जिसको किसान भाई अपने स्टोर में स्टोर कर सकते हैं, और जब मृदा को जरूरत है ऑर्गेनिक कार्बन की और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, तब इसको जब फसल कुछ स्टेज बड़ी हो जाती है, 30-35 दिन बड़ी या 45 दिन बड़ी, उस वक्त भी हम किसी स्टेज पे इसको मृदा में डाल सकते हैं और इसकी भी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है और जड़ें जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ले भी लेते हैं। और मेन एम हमारा क्या है, चाहे वो जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत भी होता है
1: जी
0: जिसमें हम बीजों का शोधन करते हैं, क्योंकि बीज सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो बीज का शोधन या तो बहुत से लोग ट्रेडिशनली गौमूत्र से भी करते थे डायल्यूट करके, जो बीजामृत है उसका भी ऐसे ही रहता है, जैसे गाय का जो गौमूत्र है उसका इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा गुड़ होता है और गाय का गोबर है, और साथ ही साथ अगर हमें जो गुलर है, पीपल है, इसके पेड़ के आसपास की मिट्टी मिल जाए, तो जिसमें ऑलरेडी जीवाणु बहुत ज्यादा होते हैं और उसको कल्टीवेशन में हमने नहीं लाया हुआ है, इस तरह की मिट्टी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे वो जीवामृत हो, बीजामृत हो, यही गाय के गोबर, गौमूत्र और गुड़, ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब तो किसान भाई इसको बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, हमारे से भी अच्छा उनको ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करके डाल रहे हैं, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, आंध्रा हो, आंध्रा में देखिए 15-16 लाख किसान जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ गौमूत्र से वो बायोपेस्टिसाइड भी बना रहे हैं। बायोपेस्टिसाइड का मतलब है कि वैसे तो जब आप जैविक खेती या प्राकृतिक खेती एक बार अपनाता है किसान भाई या बहन, विज्ञान भी यही कहता है कि जब हम जैविक खेती प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो कीटों का, बीमारियों का जो प्रकोप है वो 50 से 75% तक घट जाता है, तो हमें बाहर से कोई भी बायोपेस्टिसाइड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी थोड़ा बहुत हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं उसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि जितने भी कड़वे पत्ते, जिसको हम 10 परनी कहते हैं, 10 पत्तों का जो अर्क बनाना है गौमूत्र के साथ मिला के, कुछ किसान भाई उसको बॉईल करके पत्तों को डाल के रखते हैं, फिर उनको छान लेते हैं, फिर ठंडा करके उसमें काऊ यूरिन में मिला लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल डाइल्यूट करके किया जाता है, फसलों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ताकि रूट में भी अच्छा रहे, हमारी मृदा का भी इम्यूनिटी बनी रहे। तो ये सब हम जब अपनाते हैं तो किसान भाइयों का, हमारा जो, चाहे जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में तो हमारा जो मेन एम है भारत सरकार का, जो देखा गया कि किसान भाइयों ने जब प्राकृतिक खेती अपनाई, तो प्राकृतिक खेती अपनाने से किसान भाइयों का मृदा का स्वास्थ्य

0: से तो अच्छा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ किसान भाई जो स्प्रे करते हैं खेतों में उनकी लागत में भी कमी आई। जैसे आप ये देखें कि अगर 1 एकड़ खेत में मान लीजिए किसी किसान भाई को 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है केमिकल्स का या पेस्टिसाइड्स का, यूरिया DAP MOP का, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जो लागत है किसान भाई की वो कम हो जाती है जब हम प्राकृतिक खेती अपनाते हैं। क्योंकि किसान भाई की जो प्राकृतिक खेती अगर हम प्रति एकड़ बात करें तो इसमें 500 से 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता है किसान भाइयों का। थोड़ा सा उनका अपना लेबर का है कि उनको अपना मेहनत करनी होती है इसको बनाने में और बार बार डालना है, तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है। और इसकी तकनीक है उसको समझना बहुत जरूरी रहता है किसान भाइयों को, तो कहाँ 10 से 15 हज़ार प्रति एकड़ और कहाँ 1,000 से 2,000 रुपये प्रति एकड़ तक, इतना फायदा जो है किसान भाइयों को लागत कम करने में मिल जाता है। तो जो भी उनका आगे उत्पाद आता है, क्योंकि पहली साल में अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं केमिकल खेती से प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की ओर बढ़े हैं,
1: जी
0: तो वहां पर ऑर्गेनिक कार्बन कम है क्योंकि हमने ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं डाला है, ऑर्गेनिक खाद नहीं डाली है, वहां पर जीवाणु नहीं है, नेचुरल जो बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं जो हमारी प्रकृति की बनाए हुए नियमों के आधार पर जो अपने आप जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी हमारी मृदा की वो इतनी अच्छी नहीं रह जाती है जब हम केमिकल्स का बार बार इस्तेमाल करते हैं, यूरिया DAP MOP का, और अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं तब ज्यादा परेशानी है। अगर हम बैलेंस्ड करें और साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक खाद भी डालते रहें 20-25%, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी इतनी देखने को नहीं मिलती है। परंतु प्राकृतिक खेती में जब हम अपनाते हैं तो कुछ किसान कहते हैं कि हमारी पैदावार कम हुई।
1: जी
0: पैदावार कम होती है जब आप मोनोक्रॉपिंग की तरफ जाएं, सेम क्रॉप आप बार बार ले रहे हैं, जैसे राइस कर रहे हैं तो जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश हमारा कहीं है या हमारे पंजाब है, तो वहां पर बड़े बड़े खेतों में हमने राइस लगाया हुआ है, गेहूं लगा रखा है और मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में जब ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ही कम हो गया है और मृदा का स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है, जब हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो हमें 2 साल तक कुछ इंतजार करना पड़ता है जब तक कि हमारी मृदा में न्यूट्रिएंट्स नेचुरल आ ना जाएं, जीवाणु अच्छे से आ ना जाएं, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छे से बिल्डअप ना हो जाए, 1% तक पहुंच ना जाए, तब तक फिर वो प्रोडक्शन में थोड़ी कमी महसूस की जाती है। परंतु अगर किसान भाई सजग हैं और प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं और फटाफट वो ऑर्गेनिक कार्बन को ग्रीन मैन्योरिंग करके जो आपको सुझाए जाते हैं स्टेप वो बताए जाते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, अधिक जानकारी के लिए आप उनसे जुड़ सकते हैं क्योंकि वहां पर भी नेचुरल फार्मिंग के मॉडल लगाए गए हैं किसान भाइयों के लिए। 725 के करीब लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी कंट्री में मिशन नेचुरल फार्मिंग में, तो किसान भाई अपने नजदीकी KVK में देख सकते हैं कि किस तरह से वो KVK मॉडल तैयार किए हैं प्राकृतिक खेती का, वहां सीख सकते हैं जीवामृत बीजामृत कैसे बनाया जा रहा है। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए हैं, BRCs बनाए गए हैं किसान भाइयों के फायदे के लिए मिशन नेचुरल फार्मिंग में। तो मिशन नेचुरल फार्मिंग में ये जो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स हैं, कुछ किसान भाइयों का कहना है कि उनको बहुत चैलेंज लगता है। चैलेंज इस तरह से होता है कि उनके पास साउथ में या ईस्टर्न साइड में गाय नहीं है, तो गाय का पालन उनके लिए बड़ा मुश्किल भी है। कुछ जगहों में गाय नहीं पाल पाते हैं, रख नहीं सकते हैं किसी कारणवश, तो अगर गाय नहीं है तो गाय का गोबर नहीं है, गौमूत्र नहीं है, तो कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स का गठन करवाया है सभी राज्य सरकारों से, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, और यहां से जो किसानों के क्लस्टर हैं समूह में जो काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के मिशन में, तो वो इन BRC से, क्योंकि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ऐसा सेंटर होता है जहां पर बीज से लेके, चाहे वो ट्रेडिशनल बीज है, हाइब्रिड सीड है और केमिकल रहित, मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं दी गई है, इस तरह का सीड का उपलब्धता करवाने की जिम्मेवारी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के पास है। जीवामृत बीजामृत घन जीवामृत अगर किसान भाई घोल के नहीं बना पाते हैं
1: जी
0: तो मुश्किल लगता है। कई कई कहते हैं कि हमें स्मेल भी आती है, कुछ किसान भाइयों का ये भी कहना होता है, तो ठीक है, अगर उनसे नहीं होता है तब भी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलके ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का प्रावधान रखा है। तो जो एंटरप्रेन्योर है BRC का, उनको 1 लाख रुपए का कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं BRC तैयार करने के लिए, ड्रम वगैरह रखने के लिए, और गाय का गोबर वो नजदीकी गौशाला से या कहीं से सोर्स कर सकते हैं दूर से ट्रैक्टर वगैरह में लाके, और वहां पर वो जीवामृत बीजामृत बना के लोकल लेवल पर किसानों को सप्लाई भी कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करके अपना उत्पादन ही नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने मृदा के स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं और स्वयं भी उसके उत्पाद को प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। और बहुत सी सरकार की योजनाएं भी ऐसी हैं कि जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर गगनेश शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी हाँ साथियों, कहते भी हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो जो जैविक खेती के उत्पाद खाएंगे, प्राकृतिक खेती के उत्पाद खाएंगे, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और निरोगी बनेगा। अभी आप सुन रहे थे बातचीत जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के फायदे, विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर गगनेश शर्मा और आपसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में ये किसान गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरदाना को, और आपको जानकारी दे दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि कल भी आज की तरह लू चलती रहेगी, तो आप अपना ध्यान रखें, मवेशियों का ध्यान रखें और आसपास का ध्यान रखें।

0: इसके साथ साथ आपको याद दिला दें कि कल है शनिवार और शनिवार को आपका पसंदीदार फ़ोन इन कार्यक्रम हेलोग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसमें आपकी फरमाइश के गीतों को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो जिन भी भाइयों ने रिकॉर्डिंग कराई है या जो अपनी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं और कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो 6:30 पर हेलोग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम। और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।

कृषि जगत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं गजल और कव्वालियों का कार्यक्रम।

0: शॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने
1: करेंगे आप भी पैरों इसी तरह।
0: सोलर पैनल है ना, मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूचियों का घर घर जाकर सत्यापन 30 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क किफायती बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत बूथ स्तर के अधिकारी मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए 30 जून से घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। ये सर्वेक्षण 29 जुलाई तक चलेगा।
4: एसआईआर के संबंध में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ बैठक की। सभी दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। सभी दलों ने प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। मतदाताओं की मदद के लिए जागरूकता वीडियो भी जारी किया गया है। मतदाता सूची 5 अगस्त को जारी होगी, वहीं दावे और आपत्तियां 4 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
3: दिल्ली सरकार ने पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क को अधिक किफायती बनाकर नागरिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछली व्यवस्था के अंतर्गत जल और सीवेज सेवाएं अव्यवस्थित थी, बिलिंग प्रणाली में खामियां थी और लोगों को अक्सर अनुमानित और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए बिलों का सामना करना पड़ता था। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई नीति के अंतर्गत बुनियादी ढांचा शुल्क अब प्रॉपर्टी के कुल क्षेत्रफल के बजाय पानी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये शुल्क केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होंगे। वहीं पुनर्निर्माण होने वाले मकानों में यदि पानी की आवश्यकता नहीं बढ़ती है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस नीति के अंतर्गत बिना ढके या खुले क्षेत्रों की पानी की आवश्यकता की गणना नहीं की जाएगी। साथ

0: विभिन्न श्रेणियों की कॉलोनियों के लिए विशेष छूट भी दी जाएगी।
1: दिल्ली में जो ई एंड एफ श्रेणी की कॉलोनियां है उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है आईएफसी चार्जेस में, और जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट आईएनएफसी चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पर लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है।
0: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पहले जहां कुछ संपत्तियों पर 13 लाख रुपए से अधिक का शुल्क लगता था, अब वह घटकर 5,40,000 रुपए रह जाएगा। इसके अलावा श्रेणी के अनुसार शुल्क में और कमी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, प्रक्रिया सरल होगी और लोग बिना किसी परेशानी के अपने शुल्क जमा कर सकेंगे। ईशानी के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई निविदा प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और सरल बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दिल्ली सरकार के ई खरीद पोर्टल पर एकीकृत ई पेमेंट समाधान को लागू करना है। दिल्ली के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस समझौते से मैनुअल प्रक्रियाएं खत्म होंगी और लेन देन की तत्काल पुष्टि संभव होगी। उन्होंने कहा कि ये पहल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और कारोबार को आसान बनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण अनुकूल विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में एक ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लगभग 3 एकड़ में बनने वाला ये पार्क केवल हरित क्षेत्र नहीं होगा बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सामाजिक सहभागिता का आधुनिक केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि पार्क के निर्माण के लिए वन विभाग ने 1 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं तथा अतिरिक्त 1 करोड़ रूपये उनकी विधायक निधि से प्रदान किए जाएंगे।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस ऑक्सीजन पार्क में वॉकिंग ट्रैक, सुंदर तालाब, बैठने के लिए छायादार जगह और विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही पर्याप्त हरित क्षेत्र और खुले स्थान विकसित किए जाएंगे जिससे नागरिकों को स्वच्छ और शांत वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह पार्क सैर, व्यायाम, योग तथा सामुदायिक गतिविधियों का आदर्श केंद्र बनेगा। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि इस परियोजना से मुखमेलपुर के अलावा जिंदपुर, बख्तावरपुर, हिरंकी और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में राजधानी में ऐसे और भी ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन और अन्य विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गांवों और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर काम जारी है। उन्होंने बुराड़ी अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बंद पड़े वाहन फिटनेस केंद्र को आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर में विकसित किए जाने की जानकारी भी दी। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी के साथ अक्षित वैद्यान।
2: मुख्यमंत्री ने आज साझा परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उबर की राइड शेयरिंग सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे से शुरू हुई इस सेवा से बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ मिलेगा।
4: दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी राइड को शेयर करें। ये व्यवस्था काफी समय से कोविड के दौरान बंद कर दी गई। अभी हमारी कई मीटिंगों के बाद उबर और बाकी सभी राइडर्स ने ये श्योर किया है कि वो इसको लागू करेंगे। ऐसे में जहां पैसे की बचत होगी वहीं पोल्यूशन नहीं होगा, और तीसरा साथ में अब फ्यूल की बचत भी होगी जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है हमारी फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए।
2: केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और बढ़ी हुई बैठने की क्षमता मिलेगी।
5: जोधपुर से दिल्ली की जो वंदे भारत ट्रेन है बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन है। जब से चालू हुई तब से 150% से अधिक इसका रहता था ऑक्यूपेंसी, तो अब इसको 8 कोच से बढ़ाकर यह सीधा 20 कोच में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जैसलमेर से अहमदाबाद की सर्विस भी शुरू होगी और जोधपुर में नई गाड़ियां शुरू हो सके इसके लिए एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था भी जोधपुर से होगी। और हरिद्वार की एक जो बहुत बड़ी डिमांड है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, आने वाले समय में वो डिमांड भी पूरी होगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
6: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली में खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक सहायक आयुक्त को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार आरोपी ने 475 राशन कार्डों के आवंटन और वितरण के लिए प्रति कार्ड 100 रूपये की मांग की थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया है। ये गिरोह उत्तर प्रदेश और मणिपुर सहित राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उमर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जेल में बंद है। न्यायालय ने 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी है। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों के कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान दिल्ली विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को पशु कल्याण से संबंधित सभी प्रावधानों और कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
7: श्री मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री पूरी तरह से अवैध है। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के अवैध परिवहन, अवैध बूचड़खाने के संचालन या कानून के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पशु कल्याण कानूनों और नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। दीपेंद्र और सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
2: इस बीच सरकार ने कहा है कि बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने सरायकाले खां नमो भारत स्टेशन पर व्यावसायिक स्थानों की लाइसेंसिंग के लिए निविदा आमंत्रित की है। ये कदम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टेशन परिसरों को विकसित करने की दिशा में उठाया गया है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने दिन में आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।
8: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं, जिससे उन पर इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए, और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
2: इस बीच दिल्ली में आज भी भीषण गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल भी दिल्ली में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूचियों का घर घर जाकर सत्यापन 30 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क किफायती बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। और दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका, और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म विजयपथ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

एआर रहमान की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म दिल ले छे का ये गीत। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म तक्षक से ये गीत।

इस गीत के साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज़।

डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे वक्त रहेगा इवनिंग न्यूज का और उसके बाद उर्दू खबरें। अब से थोड़ी देर में प्रसारित होगा समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज

0: और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास

गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमी की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पर इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के

चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज़ होता है। तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा सुनिए। अब से कुछ ही देर में ही 9:20 पर सुनिएगा हज पर एक तकरीर। मुकर्रर हैं मौलाना मंजरुल हसन बरकाती। 9:45 पर खबरें नशर की जाएंगी। 9:55 पर सेहत के हवाले से कुछ बातें होंगी प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत।

11:45 पर जाफ़र हुसैन निज़ामी कव्वाल और साथियों से कव्वाली सुनिएगा। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी। 12:10 पर इलियास खां का सितार पर बजाया राग अदाना सुनिएगा।

0: प्रोग्राम्स की जानकारी जो आज आप उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस में सुनेंगे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए हज पर एक तकरीर। मुकर्रर हैं मौलाना मंजरुल हसन बरकाती।
1: मक्का मौजमा या मक्का मुबारका, जिसको बलद अमीन और उम्मुल क़ुरा भी कहा जाता है, ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वादी इब्राहिम में आबाद है और हिजाज अरब का वो मुकद्दस व मुतबर्रक शहर है जिसको एक बूढ़े और बरगुजीदा पैगंबर हज़रत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की बिना एक नौजवान ज़बीह पैगंबर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हजरत गाह क़ुरबान गाह और एक यतीम पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिद होने का शर्फ़ हासिल है। ये वो मुबारक सरज़मीन है जहाँ अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की इबादत करने के लिए बैतुल्लाह की हदबंदी की थी, तवाफ़ की जगह और क़ुरबानी पेश करने का मुकाम मुकर्रर किया था और इसी मुकाम पर खालिक़ कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से कुल बनी नोए आदम की अरवाह को पैदा करके उससे अहद लिया था और दरियाफ्त किया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और उन्होंने जवाब में इकरार किया था कि भला हाँ तू हमारा रब है। इसी को रोज़े अजल और इसी को योम अलस्त कहा जाता है और ये अहद पैमाने अव्वलीन कहलाता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से 2500 बरस कबल ये मुकाम कारवान तिजारत की मंजिलगाह था और तकरीबन 2000 कबल मसीह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमान खुदाबंदी की तालीम में अपने फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहाँ आबाद किया था। उस वक्त ये मुकाम बे आबो गया लकोदक सहरा था। क़ुरान शरीफ में मक्के की इस वादी को वादी गैर ज़ी ज़रा कहा गया है, यानी ऐसी वादी जो बंजर है और उसमें खेती बाड़ी नहीं होती है। खुदावंद करीम ने इस बे आबो गया वादी में चश्मे ज़मज़म जारी किया। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राह हक़ में अपना सब कुछ क़ुरबान कर देने का इम्तिहान दे चुके, यहाँ तक कि अपने चहीते और होनहार जमासाल फर्जंद की क़ुरबानी पेश करने के लिए आमादा हो गए और इन आजमाइशों में कामयाब हो गए तो एक मकान की तामीर की बुनियाद डाली और दोनों बाप बेटों ने उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। इस तामीर से मकसूद ख़ानदान की आसाइश और रिहाइश न थी बल्कि जज्बे बंदगी ने ज़ुहूर किया था कि बंदगी का मरकज़ कायम करें जिसमें खुदावंद ला शरीक की परस्तिश हो। इस मकान और इस इमारत का नाम बैतुल्ला काबा करार पाया। ये इबादतगाह ये खाना खुदावंद उन्हीं आसार और निशानात पर तामीर किया गया था जिनकी हदबंदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। चुनाचे क़ुरान पाक में इरशाद रब्बानी है कि बिलाशुबा पहला घर जो इंसान के लिए खुदा परस्ती का माबद व मरकज़ बना वो यही है जो बक्का है, बरकत वाला और तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इस खाना काबा के पास खैमा खड़ा करके रहने लगे, वही इस पाक घर के मुतवल्ली और निगहबान हुए और एक मुद्दत तक औलाद इस्माईल यहाँ दूसरे कबाइल पर बारादस्त रही। इसके बाद कहतानी कबाइल आए और उन्होंने गलबा पाया। आखिर में औलाद इस्माईल में से उसैय इब्ने किलाब ने यहाँ की रियासत हासिल की और इख्तियारात तौलियत वापस ले लिए जो कबीला कुरैश के जद्द आला थे। उसैय इब्ने किलाब बड़ा दूरंदेश मुंतज़िम और बाहिम्मत सरदार था। मक्का मौज़मा पर इख्तदार हासिल करने के बाद उसने अपने इख्तदार को सारे हिजाज में फैला दिया। उस वक्त तक मक्के की हैसियत एक ऐसे गांव की थी जो खेमों और झोपड़ियों पर मुश्तमिल था, किसी ने काबे के आसपास मकान नहीं तामीर किए थे। जब कुसई काबे के निगहबान हुए तो उन्होंने काबे की इमारत को ठीक किया और अपनी रहाइश के लिए एक महल तामीर कराया, साथ ही इसके एक मकान इस मकसद से भी तामीर कराया कि कौम के सरदार इसमें मशवरे के लिए जमा हो जाया करें। यह मकान दारुल नदवा कहलाता था। कुसई ने कुरैश को काबे के इर्द गिर्द पत्थर के मकानों में आबाद कराया और खाना काबा की ज़्यारत करने वालों के लिए खुराक और पानी का इंतज़ाम किया और इंतज़ामी कामों को मुख्त

आदाब, ये आकाशवाणी है। ज़मीर रज़वी से ख़बरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरक फ़ोर्स तश्किल देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से कई माहदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दे कि जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। और क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस माह की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई करने के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक अहम बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी इस मीटिंग में मौजूद थे। एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे भारत बहरुल कहल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक़ वस्ती यूरोप इक्तसादी राहदारी। दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर इन्हें कलीदी शराकत दारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज़ किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाज़रानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है। बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तिराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में तआवुन को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोज़गार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज़्यादा नौ तकररशुदा नौजवानों को तकररनामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना देगी जिन्हें तोड़कर दाखिल होना नामुमकिन हो। जनाब शाह नई दिल्ली में आज सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के इन्वेस्टिचर तकरीब और रुस्तमजी मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वजीर दाखला ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत तमाम नौइयत की टेक्नोलॉजियों को मरबूत करके अगले बरस तक सरहदों की सिक्योरिटी का ऐसा ग्रिड तामीर करने की जानिब काम जारी है जिस पर हमला करके कामयाबी हासिल कर पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि वजारत जल्द ही स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराएगी जो ड्रोन्स, रेडार्स, जदीद तरीन कैमरों और दीगर नई टेक्नोलॉजियों से लैस होगा। वजीर दाखला ने बताया कि जैसे ही इस स्कीम का आगाज़ होगा सरहदी हिफाजती फोर्स का काम खातिर खा हद तक आसान और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साइबर खतरात, हाइब्रिड नौयत के जंगी साजो सामान और ड्रोन से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के लिए नई हिकमत अमली को अपनाना लाजमी है। वजीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़्यादत में हुकूमत का ये अज़्म है कि वह न सिर्फ दरानंदाजी को रोके बल्कि दरानंदाजी करने वाले हर फर्द की शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि ये आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश भारत की कलीदी दिफाई तैयारी में एक और संगे मील की अलामत है और मुल्क की कम अज़ कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत को पुरएतमाद तरीके से मजबूती से तकवीत देती है। अग्नि एक मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल

यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, लीजिए आप सुनिए सेहत के हवाले से कुछ खास बातें प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में। कदर सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जी हाँ दोस्तों, हम बार बार यही बात दोहराते हैं, क्योंकि सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब आपको नवाजे अपनी नेमतों से, तो अपनी खुराक अच्छी करें, लिबास अच्छा करें और सवारी अच्छी करें। जब हमारे जिस्म को अच्छा खाना, माकूल प्रोटीन, विटामिन, कैलोरीज नहीं मिलती, तो हमारा इम्यून सिस्टम को बते मदाफत कमज़ोर पड़ने लगता है और इससे इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी में एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो अच्छी खुराक देकर साल 2023 में दुनिया भर में टीबी के 23 लाख मामलों यानी एक चौथाई टीबी को रोका जा सकता था। हमारे मुल्क में टीबी के 40% मामले अच्छी खुराक न मिलने की वजह से सामने आते हैं। अगर मुतवाजन ग़िज़ा ली जाए तो टीबी के ख़तरे को 49% तक कम किया जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि सही ग़िज़ाइयत न सिर्फ हमारे जिस्म को सेहतमंद रखती है, बल्कि दूसरी बहुत सी बीमारियों से बचाती है। तपेदिक कमज़ोर इम्यून सिस्टम के चलते होती है। टीबी में सबसे बड़ी सपोर्टिव थेरेपी न्यूट्रिशन ही है, यानी अच्छी और मुतवाजन ग़िज़ा। इससे रिकवरी में भी काफ़ी मदद मिलती है। इस बीमारी में सबसे पहले इम्यूनिटी यानी कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, वज़न कम होने लगता है, पट्ठों में दर्द होता है। ऐसे में बिगड़ती हालत को संभालने के लिए सही ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, साथ साथ इलाज भी कराना बहुत ज़रूरी है। आपकी ग़िज़ा कैसी हो, इसको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।

जी हाँ सामाइन, आज हम हेल्थ टिप्स में बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक के बारे में। अगर खुदा नखास्ता कोई शख्स इस बीमारी में मुब्तला है तो कैसा हो उसका खान पान। टीबी के मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी है उन्हें खाने के ग़िज़ा के ज़रिए ज़रूरी विटामिन प्रोटीन्स मुहैया कराए जाएँ। रोज़ की ग़िज़ाएँ दालें, दूध, दही, अंडा, नॉन वेज वग़ैरह ख़ास मकदार में दी जाएँ। वज़न में गिरावट को रोकने के लिए ज़्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ाएँ फ़राहम की जाएँ, और इस कमी को पूरा कर सकती हैं अनाज, खिचड़ी, केले, सूखे मेवे और नट्स वगैरह। इम्यूनिटी बढ़ाने में मौसमी फल और सब्ज़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन सी, आयरन की भरपूर मकदार वाले फल, सब्ज़ियाँ जैसे आंवला, संतरा वगैरह खाने से कुव्वत मदाफ़त बढ़ती है। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी भी भरपूर लेना है ताकि साइड इफ़ेक्ट का ख़तरा ना रहे, यानी हाइड्रेशन का ख्याल भी रखना है। इस बीमारी में ली जाने वाली दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को रोकने की कोशिश भी करें। इसका भी एक यही तरीका है कि अच्छा और मुतवाजन खाना खाएं। इससे जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी साइड इफ़ेक्ट के ख़तरे से महफूज किया जा सकता है। मरीज़ को ख़ुद अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। याद रखें, टीबी किसी मरीज़ से हाथ मिलाने, गले लगाने और उसके बर्तन इस्तेमाल करने या साथ साथ खाने पीने से नहीं फैलती। ये बीमारी हवा के ज़रिए फैलती है। जब कोई इन्फेक्टेड शख्स खांसता है या छींकता है तो जरासीम हवा में फैल जाते हैं जो दूसरे शख्स तक हवा के ज़रिए पहुंच जाते हैं। आप अपना खुद ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही।

0: सामिन, अभी आप सुन रहे थे हेल्थ टिप्स। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। लीजिए आप सुनिए मुशायरा। सामिन की खिदमत में नगमा नईम का पुरखलूस आदाब। सामिन, आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे एक मुशायरा। हम अक्सर व बेशतर आपको महफिल मुशायरा से लुत्फ़अंदोज़ करवाते रहते हैं। मुशायरा हमारी तहजीब की विरासत है, इसके ज़रिए उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल हुआ है। मुशायरा उर्दू ज़बान के रिश्ते को आम लोगों से जोड़ देता है। सलातीन और मुग़लों के अहद में मुशायरे शुरू हुए थे। फ़ारसी शोरा का एक दूसरे को अपना कलाम सुनाने का रिवाज शुरू से ही मौजूद था, लेकिन उस वक्त मुशायरे मखसूस लोगों के दरमियान हुआ करते थे। अवामुन्नास का इन मुशायरों से कोई ताल्लुक नहीं था। 1857 के बाद मुशायरे ने अवामी स्टेज हासिल किया। इस तरह मुशायरा फलने फूलने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मौजूआत और आदाबी मुशायरे में तब्दीली आती गई, और आज महफिल मुशायरों ने जो मकबूलियत हासिल की है उससे हम और आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो चलिए सामाइन सुनते हैं एक बेहद दिल अफरोज मुशायरा। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब मोइन शादा।
1: आज के इस बहुत खूबसूरत मुशायरे में जो शोरा शामिल हो रहे हैं उनके असमाए गिरामी हैं मोहतरम डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब, जनाब जावेद मुशीरी, प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब और नाचीज मोइन शादा। मैं चाहता हूं कि इससे कबल किसी अपने शायर को यहां पर ज़हमत सुखन दूं, अपने कुछ अशार इस मुशायरे के आगाज में पढ़ना चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं।
2: इंशाअल्लाह।
1: अर्ज करता हूं कि वजह तश्कील भी था, बाईस तामीर भी था। वजह तश्कील भी था, बाईस तामीर भी था, मेरी तहरीर भी वो शौकिये तहरीर भी था।
2: क्या कहने,
1: वजह तश्कील भी था, बाईस तामीर भी था, मेरी तहरीर भी वो शौकिये तहरीर भी था। बहुत शुक्रिया। कोई ताबीर बताओ कि मेरे ख्वाब में कल।
2: वाह,
1: कोई ताबीर बताओ कि मेरे ख्वाब में कल, वो जो आया था वही ख्वाब की ताबीर भी था।
2: अच्छा है, क्या कहने हैं।
1: कोई ताबीर बताओ कि मेरे ख्वाब में कल,
2: क्या
1: वो जो आया था वही ख्वाब की ताबीर भी था। शेर मुलाहिजा करें, टुकड़े टुकड़े हुआ सीने से निकल कर तो खुला।
2: अच्छा,
3: टुकड़े टुकड़े हुआ सीने से निकल,
1: टुकड़े टुकड़े हुआ सीने से निकल कर तो खुला, ये मेरा दिल तो किसी और की जागीर भी था। टुकड़े टुकड़े हुआ सीने से निकल कर तो खुला, टुकड़े टुकड़े हुआ सीने से निकल कर तो खुला, ये मेरा दिल तो किसी और की जागीर भी था।
2: वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया। मीर से रब तो शामिल ही था नरमी में मेरी,
2: मीर से रब तो शामिल ही था
1: नरमी में मेरी, मेरे एहसास के नम्मे गमे शब्बीर भी था। मेरे एहसास के नम्मे गमे शब्बीर भी था, काजिये वक्त था दस्तूर था मीजान भी थी। काजिये वक्त था दस्तूर था मीजान भी थी, अदल में उसके मगर हुस्न जहांगीर भी था।
2: अच्छा।
1: काजी वक्त था दस्तूर था मिजान भी थी, अदल में उसके मगर हुस्न जहांगीर भी था। एक गजल के चंद शेर और मुलाहजा फरमा लें, मतला पेश करता हूँ। गुंचे से खिल रहे थे जो खाशाक हो गए, गुंचे से खिल रहे थे जो खाशाक हो गए, कितने हयात बख्श बदन खाक हो गए।
2: अच्छा,
1: गुंचे से खिल रहे थे जो खाशाक हो गए, कितने हयात बख्श बदन खाक हो गए। साहिल तेरे फरेब का एहसान कम नहीं, साहिल तेरे फरेब का एहसान कम नहीं, ऐसा डुबोया तूने के तैराक हो गए।
2: क्या कहने,
1: ऐसा डुबोया तूने के तैराक हो गए, गिरिया कुनान के होठों पे ये किसका जिक्र था।
2: अच्छा,
1: गिरिया कुनान के होठों पे ये किसका जिक्र था, पत्थर मिजाज लोग भी नमनाक हो गए, पत्थर मिजाज लोग भी नमनाक हो गए।
2: क्या
1: कुछ इस कदर की उसने जुनू की मुखालिफत,
3: کچھ اس قدر کی اس نے جنوں کی
1: کچھ اس قدر کی اس نے جنوں کی مخالفت ایک روز ہم بھی دامن سچاک ہو گئے کچھ اس قدر کی اس نے جنوں کی مخالفت

0: हो जाना, तुम्हारे कुर्ब से उकता गया था
1: भाई। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई,
0: तुम्हारे हिज्र का आदमी हो जाना, तुम्हारे कुर्ब से उकता गया था।
1: वाह वाह वाह,
0: किसी ने चांदनी शीशे में भर ली,
1: बहुत खूब,
0: किसी ने चांदनी शीशे में भर ली,
1: क्या बात,
0: शीशा बदन पथरा गया था,
1: क्या कहने हैं,
0: किसी ने चांदनी शीशे में भर ली, कोई शीशा बदन पथरा गया था मुझे, और ये शेर बतौर खास, मुझे हर शय भली लगने लगी थी,
1: क्या
0: मुझे हर शय भली
1: लगने लगी थी,
0: जरा सा जाविया बदला गया था।
2: अच्छा भाई, अच्छा,
1: वाह वाह वाह,
0: मुझे हर शय भली लगने लगी थी,
1: क्या कहने हैं, क्या कहने,
0: जरा सा जाविया बदला गया था, तुझे छूने की गुस्ताखी पे नादिम,
1: क्या कहने हैं,
0: तुझे छूने की गुस्ताखी पे नादिम,
1: क्या
0: मैं अपनी उंगलियां तक खा गया था,
1: क्या कहने हैं,
0: तुझे छूने की गुस्ताखी पे नादिम, मैं अपनी उंगलियां तक खा गया था।
1: बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद शेर और, कुछ इस अदा से तोड़ के टहनी गिराई थी,
1: कुछ इस अदा से तोड़ के
0: टहनी गिराई थी, अदा से तोड़ के टहनी गिराई थी, जालिम ने अब के फूल से तितली गिराई थी। हमने जिसे सहेज के रखा था आंख में, हमने जिसे सहेज के रखा था आंख में, उसने हमारी आंख में मिट्टी गिराई थी। उसने हमारी आंख में मिट्टी गिराई थी,
1: क्या कहने,
0: किसने हमारे जिस्म को जख्मों से भर दिया।
1: बहुत खूब, बहुत,
0: किसने हमारे जिस्म को जख्मों से भर दिया, बिस्तर पे किसने ख्वाब की किरचें गिराई थी,
1: क्या कहने हैं,
0: के बिस्तर पे किसने ख्वाब की किरची गिराई थी, और फिर टूट कर गिलास गिरा ठीक उस जगह।
1: बहुत खूब,
2: टूट कर,
0: फिर टूट कर गिलास गिरा ठीक उस जगह, उसने जहाँ पे फूल की पत्ती गिराई थी, उसने जहाँ पे फूल की पत्ती गिराई थी, दिल था के एतबार से लबरेज हर घड़ी, दिल था के एतबार से लबरेज हर घड़ी, लेकिन खिरद ने शौक पे बिजली गिराई थी,
1: क्या कहने, क्या कहने,
0: लेकिन खिरद ने शौक पे बिजली गिराई थी,
1: क्या कहने,
0: शुक्रन दुआ को हाथ उठाए पलाश ने,
1: अच्छा,
0: शुक्रन दुआ को हाथ उठाए पलाश ने,
1: क्या कहने,
0: खुश हो के आसमान ने सुर्खी गिराई
1: थी,
0: खुश हो के आसमान ने सुर्खी गिराई थी,
1: क्या कहने।
0: और आखिरी शेर के, शहजादियों का रंग है पीला पड़ा हुआ,
1: शहजादियों का रंग है पीला पड़ा हुआ,
0: शहजादियों का रंग है पीला पड़ा हुआ, छत पर किसी ने रात में हल्दी गिराई थी,
1: क्या कहने,
0: कुछ इस अदा से तोड़ के टहनी गिराई थी,
1: क्या
0: जालिम ने अब के फूल से तितली गिराई थी,
1: क्या कहने, क्या कहने।
0: बहुत शुक्रिया।
1: अजब एक मसला पेश आ गया था, मैं अपने आप से टकरा गया था। आप थे प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब, जो अपनी शायरी से नवाज रहे थे, और आपने महसूस किया होगा कि मोहतरम रहमान मुसव्विर साहब ने चाहत गैर चाहत, हिजर विसाल, और तन्हाई और अंजुमन आराई को नए मानी और मफाहीम अपने इस कलाम में अता किए। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं एक और ऐसे मोहतरम शायर से कि जिसकी शायरी में, जिसकी शख्सियत में हमको एतबार और एतमाद की फजाएं देखने को मिलती हैं। मैं बहुत अदब से उस्ताद शायर जनाब जावेद मुशीरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपनी शायरी पेश करें।
3: बहुत शुक्रिया मोइन भाई, गजल का मतलब समाप्त फरमाएं।
4: आबाद तितलियों से रहेगी सराय गुल।
1: वाह, क्या कहने,
0: क्या
2: आबाद तितलियों से रहेगी।

0: बहुत हो
1: एक गुल खरीद लाएंगे हम भी
0: हाँ
1: बनाए
0: वही वाह बहुत खूब
1: गुल। शेर समाज वर्मा
0: जी शाह
1: औकात क्या है शाख से टूटे गुलाब की
0: बहुत खूब
2: औकात क्या है शाख से।
1: औकात

0: वाह क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह वाह।
1: गजल का शेर देखें,
0: इरशाद।
1: छूते ही गाल आपके गुलनार हो गए।
0: अच्छा, छूते ही गाल आपके गुलनार हो गए।
1: छूते ही गाल आप

0: क्या बात है भाई, बहुत उम्दा।
1: कह तो गए थे आपके आएंगे ख्वाब में।
0: अच्छा। बहुत खूब, वाह वाह वाह।

0: वाह
1: इस शौक इंतजार ने शब भर बिछाए गुल।
0: बहुत उम्दा
1: गजल का आखिरी शेर
0: क्या कहने क्या
1: हैरान क्यों हो दर्द को शादाब देख कर।
0: अच्छा वाह
2: वाह।

0: वाह, क्या कहने।
1: एक गुल खरीद लाएंगे हम भी बराए गुल।
0: वाह वाह वाह,
2: बहुत अच्छा। और एक और गजल का मतलब समाप्त
0: जी इरशाद।
1: मिलते हैं आईने से जरा बच बचा के हम।
0: अच्छा, मिलते हैं आईने से जरा बच बचा के हम।

0: के हम
1: वाह
0: बर्फ का
1: भाई,
0: चेहरा, वाह वाह वाह,
1: क्या कहने हैं,
0: निकले
1: क्या कहने हैं,
0: हैं घर से बर्फ का चेहरा लगा के हम,
2: क्या बात है।
0: फिर यूं हुआ के दस्त से फुर्सत नहीं
2: फिर यूं हुआ कि दर्श से
0: मिली,
2: फुर्सत नहीं मिली,
0: फिर यूं हुआ के दस्त से फुर्सत

0: से पाके हम
1: क्या कहने
2: वाह वाह
1: क्या कहने
0: हुए मुरीद तेरे नक्शे पाके हम
1: बहुत उम्दा
0: और गजल का आखिरी शेर
1: क्या कहने
0: जिस दिन किताब इश्क की तकमील हो गई
1: जिस दिन किताब इश्क की तकमील हो गई
0: जिस

0: मैं
1: वाह,
0: ये उड़ाने कहीं न ले डूबे,
1: क्या
2: ये उड़ाने कहीं न डूबे,
0: ये उड़ाने कहीं न ले डूबे, अपने ही पर कतर रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: ये उड़ाने कहीं न ले डूबे,
1: क्या
0: अपने ही पर कतर रहा हूँ मैं।
1: बहुत खूब।
0: इंतहाओं से है शगफ मुझको,
1: इंतहाओं से है शगफ मुझको,
0: इंतहाओं से है शगफ मुझको, खुद से यूं ही न डर रहा हूँ।
1: क्या बात है,
0: इंतहाओं से है शगफ मुझको,
1: खुद से यूं ही न डर रहा हूँ,
0: खुद से यूं ही न डर रहा हूँ मैं। ये शेर के जान, तेरी नजर की नजर ये जान।
2: अच्छा,
0: जान
2: तेरी
0: नजर की
1: नजर
0: ये जान, आखिरी ताक भर रहा हूँ, आखिरी ताक भर रहा हूँ मैं। जान तेरी नजर की नजर ये जान, आखिरी ताक भर रहा हूँ मैं, सरदाहें जो भर रहा हूँ मैं।
1: क्या कहनी, वाह वाह।
0: छोड़कर काम धाम दुनिया के, छोड़कर काम धाम दुनिया के, आजकल इश्क कर रहा हूँ। छोड़कर काम दुनिया के, छोड़कर काम धाम दुनिया के,
2: आजकल
0: इश्क कर रहा हूँ मैं। ये शेर देखें कि जिस जगह सब तमाम होता है,
1: जिस जगह सब तमाम होता है,
0: जिस जगह सब तमाम होता है, जिस जगह सब तमाम होता है, उन हदों से
1: गुजर रहा हूँ मैं।
0: जिस जगह सब तमाम होता है,
1: उन हदों से गुजर रहा हूँ,
0: उन हदों से गुजर रहा हूँ मैं। आतिशी खुद को कर रहा हूँ मैं, एक लम्हे की जिंदगी पाकर।
1: वाह,
2: एक लम्हे की जिंदगी पाकर,
0: एक लम्हे की जिंदगी पाकर, रोज बेमौत मर रहा हूँ मैं।
1: क्या कहनी, क्या कहनी।
0: एक लम्हे की जिंदगी पाकर
1: रोज
0: बेमौत मर रहा हूँ मैं। और आखिरी शेर के पुरसा देते हैं मुझको शहर बदर।
1: अच्छा, पुरसा
2: देते हैं मुझको शहर
0: बदर, पुरसा देते हैं मुझको शहर बदर।
1: क्या बात है,
0: मुद्दतों दिल बदर रहा हूँ। पुरसा देते हैं मुझको शहर बदर, पुरसा देते हैं मुझको शहर बदर, मुद्दतों दिल बदर रहा हूँ मैं, मुद्दतों दिल बदर रहा हूँ मैं। मक्ता के फिर समुंदर उबाल में है नजीर,
2: फिर समुंदर उबाल में है नजीर,
0: फिर समुंदर उबाल में है नजीर, डूब कर फिर उभर रहा हूँ मैं। फिर समुंदर उबाल में है नजीर, डूब कर फिर उभर रहा हूँ मैं। जान तेरी नजर की नजर ये जान, आखिरी ताक भर रहा हूँ मैं।
1: वाह वाह,
0: आखिरी ताक
1: बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब डॉक्टर वाहिद नज़ीर के इस कलाम के साथ ही ये मुशायरा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। डॉक्टर वाहिद नज़ीर के अलावा आज के इस महफिल मुशायरा में जनाब जावेद मुशीरी साहब, प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब और नाचीज़ मुईन शादाब शामिल थे।
3: समीन, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब मुईन शादाब। इसी के साथ मुझे नगमा नईम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम तामील इरशाद। तामील इरशाद प्रोग्राम में आज आपकी मेज़बान हूँ मैं नगमा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब। सभी सामाइन का खैर मकदम है।

और समाइन अगला नगमा आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आयशा भोसले की आवाज़ों में। मौसिकार हैं ओपी नैयर, फिल्म का नाम है बहारें फिर भी आएंगी। सुनने की फरमाइश की है आप सब ने। आप हैं आतिश रेडियो लिसनर्स क्लब, बिशनपुर गिडी झारखंड से इम्तियाज़ इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानंद येले, नवदीप येले और कंचन येले, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पाटिल, मुजाहिद पटेल, माफ़ कीजिएगा, मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टीके, यशोधरा राम टीके और श्रव्या राम टीके, और ये फरमाइश आई है सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, मन जैनिश गुजराती और लड्डू कुमारी की, महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सिटकोग संभाजी नगर से अनिल सामक, अंजलि और सुनील, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता देवांगन, उत्तप नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरालानी और भानु खोरवाल, नागचुन रोड संडे कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब और अब्दुल हक डावर, ज़ियाउल हक डावर भी इनके साथ हैं और इनके बहुत सारे साथी, पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और प्रखर शाह, और गाँव टोरोवाल ज़िला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी और डॉक्टर प्रियंका थांदी और इनके बहुत सारे साथी। और अगली फरमाइश आई है पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसु तासु की, और पश्चिम थोक गंजुनवारा से मुनव्वर लल्ला, पीरजादा नसरीन मिर्ज़ा और अरबाज शाहबाज। और अगली फरमाइश हम तक पहुंची है शराफ रोड राजकोट गुजरात से नूर मोहम्मद लखानी, ज़ुबैदा लखानी और विहान लखानी की, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ममता मोदी की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये अगला नगमा।

आकाशवाणी दिल्ली की उर्दू सर्विस, प्रोग्राम तामिल इरशाद, और मैं हूँ आपके साथ नगमा। अगला नगमा फिल्म आशीर्वाद का, आवाज़ लता मंगेशकर की है। नगमा निगार हैं गुलजार और मौसीकार हैं वसंत देसाई। सुनने की फरमाइश आप सबकी। आप हैं गिडी से हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम। इसी नगमे को सुनने की फरमाइश की है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा नानी और भानु खोरवाल ने। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वक़ार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। और इसी नगमे को सुनने की फरमाइश आई है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। और शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर की। और ये फरमाइश आई है विदर्भ आकोट से के संजीव डाबे राव, सुनीता डाबे राव और डॉक्टर कौस्तुम्बू डाबे राव की। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है, ये आई है धनौरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बीबी आलिया और इनके बहुत सारे साथी। चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली। अनुपम कुमारी की फरमाइश आई है अगली, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। और इसी तरह ये फरमाइश हम तक पहुंची है, ये आई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता की। माल टेकली अमरावती से प्रशांत ठेकरे और वर्षा ठेकरे और श्रद्धा ठेकरे।

और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओब्रॉय की। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। फिल्म का नाम है आशीर्वाद, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

और सामाईन अगला नगमा आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है टावर हाउस। आवाज़ है मुकेश की और मौसीकार हैं रवि। सुनने की फरमाइश आप सबकी। आप हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने और हीरामन शिंदे। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है साई नगर और विमारा से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और मोहम्मद अयूब खत्री। और ये अगली फरमाइश आई है चंबल संबल से छोटे अंसारी की और शबनम अक्रम और फरजाना की फरमाइश आई है ठिरकी मध्य प्रदेश से, मूंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा और शबिस्ता पलक की फरमाइश आई है, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। और इसी तरह ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इरफान खान की, हनुमानगढ़ राजस्थान।

잠깐만 씨. और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ये हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद, गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, विद मिद्दाल का मिद्दा, हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू और प्रतिशा संधू, और अंजु श्रीवास्तव भारत भूषण की फरमाइश आई है बेंगलुरु से, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चैतन्या मस्कीन की। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा। आवाज़ मुकेश की है, फिल्म का नाम है टावर हाउस।

ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दे कि जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके और इस माह की 26 तारीख को नई दिल्ली में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग होगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरआई के अपने अज़्म का इयादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मुफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती एकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मुफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोप इक्तसादी राजदारी। दिफा और सलामती के शोबे में ताउन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सरहदों की सलामती और इंसदादे दहशतगर्दी में शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया। भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर इन्हीं कलीदी शराकत दारी के सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया और एक मुश्तरका टास्क फोर्स का आगाज किया ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा के मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जिसमें तजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरात, आमदोरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में ताउन को फरोग देने पर तवज्जो दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेला में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौ तकर्रुरशुदा नौजवानों को तकर्रुर के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिससे वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना देगी जिन्हें तोड़कर दाखिल होना नामुमकिन हो। जनाब शाह नई दिल्ली में आज सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के इन्वेस्टीचर तकरीब और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर तस्वुर के तहत तमाम नौयत की टेक्नोलॉजी को मरबूत करके अगले बरस तक सरहदों की सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रिड तामीर करने की जानिब काम जारी है जिस पर हमला करके कामयाबी हासिल करना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि वजारत जल्द ही स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराएगी जो ड्रोन्स, रडार्स, जदीद तरीन कैमरों और दीगर नई टेक्नोलॉजी से लैस होगा। वजीर दाखला ने बताया कि जैसे ही इस स्कीम का आगाज होगा सरहदी हिफाजती फोर्स का काम खातिर ख्वाह हद तक आसान और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साइबर खतरात, हाइब्रिड नौयत के जंगी सामान और ड्रोन से मुतालिक चैलेंजों से निपटने के लिए नई हिकमत अमली को अपनाना लाजमी है। वज़ीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत का यह अज़्म है कि वो न सिर्फ दरअंदाजी को रोके बल्कि दरअंदाजी करने वाले फ़र्द वाहिद की भी शिनाख्त करे और इसे निकाल बाहर कर दे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली को किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि यह आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। यह आजमाइश

0: बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को बीसीजी, टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इसकी मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज़्म का इरादा किया है। भारत की कौमी शाहराहों से मुतालिक अथार्टी एनएचआई ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेयन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट एनजीआई के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने अपने बयान में बताया कि यह इश्तराक भारत की कौमी शाहराहों की आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तहत एनएचएआई के अहद की अक्कासी करता है, जहां जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की एनजीआई की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरुए कार लाया जाएगा। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने बताया कि वज़राए खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुलकाई के क्वाड विजन पर गौरखौज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यरमेक बायफ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदाम और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और मुकामी अमूर व मौजूआत पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन, पायदारी और आलमी पेशरफ्त में शराकतदारी के ब्रिक्स के मौजूआत पर अपने ख्याल का तबादला किया। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इसका नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सर्राफ प्रशाला में काम कर रही है। सीबीआई ने बताया कि ये नीट यूजी 2026 इम्तहान के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। तहकीकती एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। सीबीआई ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट यूजी 2026 इम्तहान के फिजिक्स के मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे, जिसे इस माह की 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहान के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। हुकूमत ने कहा है कि गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपने बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 गीगावाट रही। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरक फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी ताउन को फरोग देने की गरज से कई माहदों पर दस्तखत किए। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दे कि जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए समय, अब सुनिए तामिल इरशाद प्रोग्राम के बकिया नगमे।

गुप्ता और रानी कुमारी, सहारनपुर चंद्र नगर से सुरेश नारंग, आशा नारंग और सोनाली नारंग। और ये फरमाइश हम तक पहुंची है अगली साईनगर अरवी महाराज से नरेंद्र प्रियदर्शनी और डॉक्टर प्रियंका कल पांडे, प्रोफेसर कालोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी, गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई से मोहम्मद आसिफ डागर और मोहम्मद नौमान शेख, मोहम्मद सुलेमान शेख, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी खट्टक, विमला देवी कुमारी, पूजा खट्टक, ग्वालियर एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना और लव्वे खुराना और इनके बहुत सारे साथी, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सल्ला मनवर और बेबी प्रियांशी, और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ये हैं मीर हसन, अजीज़ भाई, मतीन भाई और शेख चंद फारूक पूल वाले निज़ामाबाद तेलंगाना से। इनकी फरमाइश आई है, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा आसरा फिल्म का।

एक राज आवाज़ लता मंगेशकर की, मौसीकार हैं चित्रगुप्त। सुनने की फरमाइश की है आप सबने। मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद मेहरा, मिथुन सांगा और राधिका जाटव। ये फरमाइश आई है हरियाणा से, केतल हरियाणा से जसवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा की। इसी नगमे को सुनने की फरमाइश की है महाराष्ट्र से रुपेश संगाई, महेश संगाई और इनके बहुत सारे साथी। ताजमंद मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और शेवगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल और मोहम्मद रिजवान मोहाल। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जिजोरिया, गगनदीप जिजोरिया और आरजू जिजोरिया। चिरमिरी कुरासिया कारली से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह। और ये फरमाइश आई है नेहरू चौक पैठन से प्रसाद यादव, सोनल यादव और अनीता सुरेश यादव की। अगला जो मेल हम तक पहुंचा है वो आया है छत्तीसगढ़ से, आशा जटोलिया, देवशंकर जटोलिया और इनके बहुत सारे साथी। दादाजी धुनी वाले मार्ग खंडवा मध्य प्रदेश से हस्सू बाबा, मोहम्मद हसनैन और साफिया अरहान खोकर।

0: समय नबी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तामिल इरशाद, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए सुनिए प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज की चर्चा का विषय है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सचदेवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: शुक्रिया
2: प्रोफेसर सचदेवा। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोड्यूलिडेस

0: भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। ऐसे समय में जब भारत और यूरोपीय संघ 2027 तक की शुरुआत तक अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं, साइप्रस इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से तब जबकि वर्तमान में वह यूरोपियन संघ परिषद का अध्यक्ष है।
1: ये उनकी जो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो ईयू प्रेसिडेंसी की यूरोपियन काउंसिल की, वो 6 मंथ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है। उसमें हर 6-6 महीने के बाद वहां पे जो है नया कंट्री जो है उसका प्रेसिडेंसी कंट्री बनता है। तो अभी इस साल के पहले 6 महीने की प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास है। तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी मीटिंग्स वहां पे यूरोपीय संघ की जो होती है वहां पे काउंसिल पे, उनकी जो अध्यक्षता है उन मीटिंग्स की, सब वो प्रेसिडेंसी कंट्री करता है। और उसका हर प्रेसिडेंसी कंट्री अपना एक एजेंडा लेके आता है कि मैं इस 6 महीने के अंदर ये चीजें जो है वो कोशिश करेंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक। तो वैसे तो ये रूटीन मैटर है, हर 6-6 महीने में कंट्री जैसे बदलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे संबंध हैं वो यूरोपीय संघ के साथ बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं पिछले कई सालों में। और अभी हमने देखा था जब जनवरी में भारत में यूरोपीय संघ और भारत की जो समिट मीटिंग हुई थी, उसके बाद से नया रोड मैप हमारा 2030 का उनके साथ उसको अपनाया गया है। और जैसे आपने कहा कि मुक्त व्यापार जो बात है ट्रेड एग्रीमेंट की, उसके नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गए हैं, फॉर्मेलिटीज वहां पे चल रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी है उसको क्रियान्वित किया जाए, और उसमें जो भी प्रेसिडेंसी कंट्री है निश्चित तौर से उनका एक रोल रहता है, उसको थोड़ा आगे पुश जल्दी कर सकते हैं। तो उसमें साइप्रस भी अपनी भूमिका उसमें अदा कर सकता है। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री का भी दौरा भी था यूरोप का, जिसमें 4 यूरोपीय देशों में गए थे, उसमें भी अपने संबंध है, द्विपक्षीय संबंध है उन देशों के साथ आगे बढ़ाए हैं। और उसी कड़ी में मुझे लगता है ये जो अभी साइप्रस के राष्ट्रपति डोलिडिस का यहाँ पे जो दौरा है, उसी की श्रृंखला में मुझे लगता है कि एक एक देश के साथ हम बिल्कुल अपने संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री भी साइप्रस का दौरा करके 2025 में वहां पे आए थे, तो संबंध काफी करीब हुए हैं पिछले कुछ सालों में।
0: प्रोफेसर सचदेवा, इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछूं, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत साइप्रस की मित्रता और भारत ईयू एफटीए में साइप्रस की भूमिका के बारे में क्या कहा।
2: भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। आज जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है।
0: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस संयुक्त प्रेस वक्तव्य में एक और घोषणा की कि भारत और साइप्रस अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया है, और अगले 5 वर्षों में साइप्रस में भारत में होने वाले निवेश को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: फ्रेंड, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं, और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
0: तो प्रोफेसर सचदेवा, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना और हम भी बात कर रहे थे कि दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है उसको दुगना करने का एक निर्णय लिया है, और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर एलिवेट करने का जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, इन दोनों ही फैसलों पर आप क्या सोचते हैं।
1: इनफैक्ट ये एक काफी सोची समझी नीति मुझे लगता है भारत की है यूरोप के प्रति, जो काफी अभी बिल्कुल उभर कर आ रही है। आप जानते हैं कि हमारा यूरोपीय संघ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 से है, और पहले हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कुछ बड़े देशों के साथ होती थी, जैसे फ्रांस के साथ थी, जर्मनी के साथ थी, और यूके जब उनका हिस्सा होता तो उनके साथ थी। वो साझेदारी अभी भी है। पिछले कुछ सालों में हमने कई और देशों के साथ पार्टनरशिप किया स्ट्रेटेजिक, जैसे इटली के साथ किया, ग्रीस के साथ किया, पोलैंड

0: साथ किया। और अभी जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो दो और पार्टनरशिप्स को, नीदरलैंड्स को, स्वीडन को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। उसी कड़ी में अभी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइप्रस के साथ
1: जी
0: है उसको भी एलिवेट किया गया है, और उसके साथ डिफेंस का एक नया रोड मैप भी इनके
1: जी
0: साथ तैयार किया
1: जी
0: गया है। क्योंकि यूरोपीय संघ के अंदर ये है कि कॉम्पिटेंसी कुछ चीजों की जो है यूरोपीय संघ के पास है, बाकी चीजों की, क्योंकि सब अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्रीज हैं, तो उन सब चीजों की बात आप उस देश के साथ कर सकते हैं। तो हम यूरोपीय संघ के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारी साझेदारी है, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट देश हमको लगता है उनके साथ हम अपने रिलेशंस को एलिवेट कर रहे हैं। और जैसे इंडिया नॉर्डिक समिट में था तो हमने एक समूह के साथ भी वहां पे उनके साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं। तो क्योंकि साइप्रस जो है हालांकि एक छोटा सा टापू है, छोटा सा देश है, लेकिन भारत की दृष्टि में मुझे लगता है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री पिछले साल भी गए थे वहां पे और अभी वहां के राष्ट्रपति यहाँ पे हैं और इस रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया है, इसका मतलब यह है कि हम सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जगह पे स्थित हैं और मेडिटेरेनियन के अंदर इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है। और जिस तरीके से निवेश की बात है, क्योंकि वहां के जो नियम कायदे कानून है मॉरिशस की तरह काफी खुले हैं, उसकी वजह से वहां से निवेश चाहे वो साइप्रस का हो चाहे दूसरे देशों के व्यापारी हो, वो भी साइप्रस के थ्रू काफी निवेश दूसरे देशों में करते हैं। तो उसी का कारण है कि काफी निवेश वहां से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हमारे टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से साइप्रस है, और अगर उनके साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं और एक पूरा अच्छा प्लान बनता है तो निश्चित तौर से वहां से निवेश और भारत की तरफ अधिक आ सकता है। और साइप्रस जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक गलियारा की हम बात करते हैं
1: जी
0: कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए भी जो साइप्रस है काफी भूमिका अदा कर सकता है भारत और यूरोप को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे है जहां पे मेडिटेरेनियन के अंदर है और अफ्रीका के देश भी वहां से बहुत दूर नहीं है और पश्चिम एशिया के देश भी वहां से पास हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सोची समझी नीति के मुताबिक भारत ने इनके साथ अपनी रिलेशंस को अपग्रेड किया है।
1: इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के बारे में क्या कहा।
2: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: तो प्रोफेसर सचदेव, जैसे भी हमने सुना प्रधानमंत्री को कि रक्षा और सुरक्षा दोनों की जो उन्होंने बात कही, डिफेंस कोऑपरेशन की दोनों देशों के बीच में बात कही, तो आज दोनों देशों के बीच में एक काउंटर टेररिज्म पर भी एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप के लिए भी एक एमओयू साइन हुआ है। साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया है 2026 से 2031 तक के बीच में। तो भारत साइप्रस संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में रक्षा और समुद्री सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
0: एक तो ये है क्योंकि पूरी दुनिया का, जैसा आप जानते हैं, वातावरण काफी तनावपूर्ण है और क्योंकि साइप्रस का अपना एक तनावपूर्ण हिस्ट्री रही है, और तीसरी बात यह है क्योंकि जैसे यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है और उसके चलते यूरोप के जितने भी देश हैं और साइप्रस भी उसका हिस्सा है, तो उसमें पूरे का पूरा आप देखते हैं कि जो सुरक्षा का जो प्रबंधन है पूरे यूरोप के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ और काफी जो नेटो के देश हैं यूरोप के अंदर उनकी भी, उसमें भी एक तरीके का तनाव, एक तरीके की थोड़ी दिक्कतें उसमें आ रही हैं। तो उसमें पूरे यूरोप के अंदर एक तो ये है कि अपनी सुरक्षा को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी ऑटोनोमी को, उसको बढ़ाने के लिए सुरक्षा को और खासतौर से डिफेंस जो इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी कुछ महीने पहले वहां पे एक वो जो व्हाइट पेपर पूरा यूरोपीय संघ ने जो निकाला था अपने डिफेंस के लिए, उसमें ये कहा गया था कि आने वाले सालों में 2030 तक यूरोप के पूरे देश मिलके 800-900 बिलियन यूरो और ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे प्रधानमंत्री पहले भी गए थे वहां पे चार देशों में जैसे मैंने कहा, और जर्मनी और फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे सुरक्षा संबंध बड़े हैं पहले डिफेंस के, तो उसमें जो पूरी नई पूरा डिफेंस इंडस्ट्री वहां पे जो पूरा बढ़ रहा है, काफी उसके अंदर निवेश हो रहा है और भारत की हमारी जो है अपनी एम्बिशन है कि एक मेक इन इंडिया के अंदर हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री को हम मजबूत कर रहे हैं और काफी अभी पिछले कुछ सालों में निर्यात भी

0: डिफेंस से हुआ है। तो ये पूरा एक प्लान है जिसके अंदर हम उसको साइप्रस को अलग करके भी देख सकते हैं और पूरे यूरोप के साथ जो है हमारा जो संबंध, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, उसी पूरे संबंध के अंदर व्यापार की बात, निवेश की बात, तकनीक की बात और ग्रीन ट्रांजिशन की बात तो कर दें, लेकिन साथ में अभी सुरक्षा और डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला जो मामला है ये भी एक बहुत अहम मुद्दा उभरता हुआ आ रहा है। और ये जब हम देखते हैं कि जब साइप्रस के राष्ट्रपति भी यहाँ पे है तो एक हमने पूरा रोड मैप, पूरा डिफेंस कोऑपरेशन का वो साइप्रस और भारत के बीच में 5 साल के लिए वो भी एक पूरा तैयार किया है। और आतंकवाद के प्रति तो दोनों देशों की पहले से ही एक जैसी सोच रही है और क्योंकि वो भी उससे जूझते रहे हैं पहले, तो इसलिए जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है उसका भी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भी और भारत के जो संबंध है यूरोपीय संघ के उसके अंदर भी इन दोनों के आने से काफी मजबूती मिलेगी।
1: जी
0: तो ओवरऑल संबंध है वो पूरा यूरोप के साथ हमारा संबंध है। जब वो 2004 में जब यूरोपीय संघ को साइप्रस ने ज्वाइन किया
1: जी
0: था तो वो एज ए डिवाइडेड साइप्रस वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर वो जो है यूरो जोन का भी हिस्सा बन गए हैं। तो जो यूरोपीय संघ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी काफी अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं क्योंकि अब भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उनकी चिंताएं भारत समझता है कि हमारी चिंताएं हैं, और क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका फायदा भारत भी लेना
1: जी
0: चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और कनेक्टिविटी और ये सब बातें को
1: जी
0: आगे बढ़ाने के लिए इसको पूरी रणनीतिक साझेदारी हमारी उनके साथ बन रही है।
1: एक आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर सचदेव है, भारतीय बिजनेसेस हैं जो यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं कि साइप्रस एक लॉन्च पैड के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा, बट इसके अलावा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक वाइडर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों के लिए एक आधार के रूप में और लॉजिस्टिक हब के रूप में साइप्रस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है भारतीय बिजनेसेस के लिए?
0: नहीं, भारत के बिजनेस देखिए ऑलरेडी वहां पे काफी हमारा जैसे निवेश वहां से आ रहा है, काफी भारतीय वहां पे बसे भी हुए हैं, और अभी जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि हम जो मोबिलिटी और माइग्रेशन के
1: जी
0: एग्रीमेंट है और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बारे में भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है, तो उसके बारे में भी कुछ समझौते जल्दी होने की उम्मीद है। उसका मतलब ये है कि दोनों सरकारें ये कोशिश करेंगी कि जो भारतीय वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं, उनके लिए भी काफी सुविधा हो जाए कि वो आराम से वहां पे जा पाएं और अपने व्यापार को वहां पे स्थापित कर पाएं और दोनों देशों के बीच में संबंध वो बढ़ाएं। और इसीलिए क्योंकि पूरे जो जैसे आपने कहा कि जो उनकी भौगोलिक जो स्थिति है वो, हालांकि हर देश जैसे यूरोप में भी होता है अपने आप को कहता है कि हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, तो आप उसको एज ए गेटवे आप यूरोप के मान सकते हैं। चाहे आप इटली में गए थे तो इटली के प्रधानमंत्री वो कहती थी कि आप यहाँ से इंडियन ओशियन एंड मेडिटेरेनियन जो सी है दोनों का मिलाप
1: जी
0: होता है तो इंडो मेडिटेरेनियन जो बनता है। इसी तरीके से दूसरे देश भी कहते हैं, फ्रांस की
1: जी
0: भी, सब देशों की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन इसकी एक क्योंकि खास भूमिका है यूरोप के अंदर, और जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त इस पूरे इलाके में है उसके अंदर मुझे लगता है भारत के लिए उसकी जो स्थिति है उसके साथ अच्छे संबंध बनाना, अच्छे संबंध हमारे हैं उनके साथ, लेकिन उन संबंधों को और आगे इंस्टीट्यूशनलाइज करना और उनको प्रगाढ़ बना के उसको आगे बढ़े, तो उसमें दोनों देशों के लोगों का फायदा होगा, हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से
1: जी
0: भी, और वैसे भी यूरोपीय संघ के अंदर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए अच्छा मुझे लगता है मौका मिलेगा।
1: प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए अब सुनिए जाफर हुसैन निजामी कव्वाल और हमनवाओं से कव्वाली।

0: पर भी तबादले ख्याल किया। भारत की कौमी शाहराहों से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराहों के आलमी पैमानों के मुताबिक रखरखाव और फरोग के तहत NHAI के अहद की अक्कासी करता है, जहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGI की बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मुफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदामात में एक दूसरे का तआवुन करेंगे। भारत के दो को पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते हुए अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सियाहत के महकमे के हुक्काम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी को सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोनों को पैमाओं ने जुमेरात के रोज़ एवरेस्ट को सर किया और नीचे उतरते वक्त वो बीमार पड़ गए। इस सीज़न में अमवात का ये चौथा वाक़या है। इससे कबल 3 नेपाली पहाड़ी कारकुन और गाइड 2026 के कोह पैमाई के सीजन में अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को BCG, टेटनिस और डिप्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इसकी मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज़्म का अदा किया। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा टोशी मित्सु मोतेंगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि वज़राए खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादले ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहिल को क्वाड विजन में गौर व खौस करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरक फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दे कि जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में इलियास खान का सितार पर बजाया राग अदाना।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बेकसूर। नगमे के बोल लिखे थे एहसान रिजवी ने और मौसीकी तरतीब दी थी अनिल बिस्वास ने। और अगला नगमा आप सुनेंगे निराला फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, मौसीकार हैं सी रामचंद्रन।

0: इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण ने पणजी गोवा में उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 का आयोजन किया। इसमें समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for strengthening and multilateral efforts to combat terrorism and in the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit to the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorist financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism through the United Nations and the Financial Action Task Force. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism and any justification for such acts under any circumstances. The two leaders agreed to deepen defense and security cooperation, including through collaboration between their respective defense industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies. welcoming the India-Cyprus bilateral defense cooperation program signed in February this

नमस्कार दोस्तों, आप हैं News 24x7 पर और आज इस घंटे जिस सफर पर आपको अपने साथ ले जाने के लिए हम आए हैं उसका नाम है गीत सुनहरे। ऐसे गाने जो सीधे दिल में उतर जाने की ताकत रखते हैं, ऐसे नगमात जो यादों की खिड़कियां खोल देते हैं। पहला गीत एक मासूम सी मोहब्बत और मीठी सी तड़प का एहसास। फिल्म है जहां आरा और आवाज है तलत महबूब साहब की।

0: कितनी खूबसूरत हो जाती है ना ऐसी आवाज़ों के साथ हर वक्त, ये शाम ये रात कोई भी पल। दोस्तों, पुराने दौर के गीतों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनमें शब्द भी मुस्कुराते थे और धुनें भी सांस लेती थी। 1960 और 70 के दशक में कई गीत ऐसे बने जो कम सुने गए मगर दिल के बहुत करीब रहे। तो पेश खिदमत है एक ऐसा ही बेहद प्यारा और सॉफ्ट रोमांटिक नगमा। फिल्म है प्रेम पर्वत
1: और आवाज़ है लता मंगेशकर जी की।

दोस्तों, कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता, वो किसी अधूरी कहानी की तरह लगता है। एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों के जरिए पूरा कर पाना मुश्किल हो।

रात गहराती जाए और साथ में पुराने गीत हों तो माहौल खुद ब खुद अपना सा हो जाता है। महसूस होता है उस गीत ने अपनी नर्म माहें फैला दी हों आपको सुकून देने के लिए। सुनिए और आप भी महसूस कीजिए।

दोस्तों उस दौर में गीत लिखने का अंदाज ही कुछ और था और हर शब्द मानो ठहर ठहर कर दिलों पर दस्तक देता था और हर गीत मानो कोई कहानी कह रहा हो।

दोस्तों, हर गाने की तरह इस गाने में भी रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया। और आगे आते हैं तो दोस्तों, पुराने गानों की बारिश से मोहब्बत की ऐसी सौंधी खुशबू उठती है कि ऐसे में उनमें सराबोर होकर कोई इंसान इतना चैन पाता है, इतना सुकून पाता है कि मालूम होता है कि बस अब जिंदगी में, इस जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। भीगी हुई सड़कें, रात की रानी के पत्तों पर पड़ी हुई कुछ बूंदें, किसी अपने की याद और रेडियो पर बजता हुआ ये गाना।

आधी रात को जब लगभग सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तब ऐसे में दिल कभी कभी कितनी जोर जोर से बोलने लगता है ना।

दोस्तों, मोहब्बत में जब पूरी सच्चाई हो, दोनों तरफ से पूरा एतबार हो, हर हाल में साथ निभाने का जज्बा हो, तो ऐसे में लाजमी है शब्दों को आवाज़ देने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। और कुछ ऐसी ही खुशबू लिए है हमारे सफ़र का अगला गीत।

दोस्तों, गीत सिर्फ दिल नहीं बहलाते। अगर उनमें कोई खो जाए तो गीत ज़िंदगी का नज़रिया बदलने की क़ुव्वत रखते हैं। वैसे तो हर किसी के पास इसका कोई ना कोई होता ही है, लेकिन अगर

दोस्तों, कभी हुआ है ऐसा आपके साथ कि जिसे आप पहले कभी ना मिले हो, कभी बात ना की हो, फिर भी दिल ऐसे धड़का हो किसी से मिलने के बाद, जैसे बरसों बाद किसी अपने से

मिलने के बाद धड़कता है। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो अभी कहीं लिख कर रख लीजिए कि आप बहुत बहुत खुशकिस्मत हो। तो दोस्तों आज की महफिल अपनी मंजिल तक पहुंचने की ओर है। उम्मीद है इन अनमोल गीतों के साथ आप वक्त की रफ़्तार को महसूस भी नहीं कर पाए होंगे। पुराने गीतों की यही खासियत है कि ख़त्म होने के बाद भी ये दिलों में सुनाई देते रहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हमें गीत सुनहरे से इजाज़त दीजिए और आप बने रहिए न्यूज़ 24x7 के साथ।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे और अब AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल में वक्त है समाचारों का, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के

0: राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for a strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit of the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorism financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks, and combating the financing of terrorism through the United Nations and the Financial Action Task Force. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism and any justification for such acts under any circumstances. The two leaders agreed to deepen defense and security cooperation, including through collaboration between the respective defense industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies. Welcoming the India-Cyprus Bilateral Defense Cooperation Program, signed in February this year, the two leaders underscored the potential for significant cooperation in the defense sector. The leaders welcomed the conclusion of the roadmap for bilateral defense cooperation between the ministries of defense of the two countries for the period 2026-2031. As India and Cyprus are maritime nations with deep-rooted naval traditions, both leaders encouraged expanding cooperation in the maritime domain. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations in the 19th Rose Garden.

यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का, जिसमें हम लाते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप गीतों की माला। समय हो रहा है रात के 2:10।

0: दोस्तों गीत बहार का सफर बस यहीं तक, रात्रि के 3 बजने वाले हैं। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी

0: प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के वेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulos called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit of the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorism financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism through the United Nations and the Financial Action Task Force. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism and any justification for such acts under any circumstances. The two leaders agreed to deepen defense and security cooperation, including through collaboration between their respective defense industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies. Welcoming the India-Cyprus bilateral defense cooperation program signed in February this year, the two leaders underscored the potential for significant cooperation in the defense sector. The leaders welcomed the conclusion of the roadmap for bilateral defense cooperation between the ministries of defense of the two countries for the period 2026-2031. As India and Cyprus are maritime nations with deep-rooted naval traditions, both leaders encouraged expanding cooperation in the maritime domain. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and converting this vision into reality. Central Bureau of Investigation has arrested another woman from Pune in connection with the NEET examination paper leak case. The accused has been identified as Manisha Havaldar, who had been appointed as an expert by the National Testing Agency, NTA. So far, 11 accused have been arrested from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune.

0: Platforms such as Telegram and WhatsApp to manipulate trading volumes and stock prices from misleading market recommendations. It called the practice a serious threat to market integrity. The India Meteorological Department, IMD, has issued red color warning for heat wave to severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued an orange color warning for heat wave conditions over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha today. Similar conditions will prevail over coastal Andhra Pradesh, Telangana, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh for the day. For today, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 degrees Celsius, while the minimum temperature is likely to be over or near 27 degrees Celsius. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad, batting first. After winning the toss, Sunrisers Hyderabad posted a massive 255 for 4 in 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। पेश है प्रोग्राम गजल गीत, और इस प्रोग्राम को लेकर मैं हूं आपके साथ तरन्नुम, जहां होगी प्यार भरी बातें। और इस रात के हम सफर में हम सब तन्हा तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हैं। कहते हैं ना कि दिल में जो भी जज्बात हैं वो हम बयां तो कर ही नहीं पाते, जब भी मौका होता है, जब भी ज़रूरत होती है, जब भी हम कुछ कहना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जज्बात अंदर ही अंदर आपके दिल में ऐसे ज़ख्म पैदा कर देते हैं कि जो ज़िंदगी भर रहते हैं, और कभी कभी ऐसा खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं कि ये प्यार उमड़ उमड़ कर आप अपनी मोहब्बत पर न्योछावर कर देते हैं। कहते हैं कि इस खूबसूरत तन्हाई का जो आलम होता है उसमें आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है। सच है ना, दिल की धड़कन इसलिए तेज़ होती है कि ये जो आपके दिलो दिमाग में यादों का एक कारवां सा चलता आ रहा है वो लगातार बस आप सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी कश्मकश होती है, कहीं ना कहीं ऐसी दिल में जज्बात गुफ्तगू करने का दिल, और मौसम, तन्हाई, ये आलम, ये रातें, सभी को एक ही आवाज़ देने को दिल चाहता है। और इसी सुनहरी यादों को कहते हैं कि जैसे रेशम जैसे मखमली एहसास होते हैं, कुछ यादें होती हैं, और इस सफ़र में जब आप निकलते हैं तो अब वक्त का यूँ पता भी नहीं चलता, और जो दिल की बात होती है वो कहीं ना कहीं लफ्ज़ बनकर आप किसी के सामने भी बयां कर देते हैं। और ये जो मैंने बोला कि किसी के सामने भी बयां कर देते हैं, वो कोई ख़ास होता है, और इसी ख़ास बात पर, इसी ख़ास लोगों के लिए ये गज़ल गीत का प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए ग़ुलाम अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं।

अपनी तन्हाई की पलकों को भिगो लूं पहले, फिर गजल तुझ पे लिखूं, बैठ के रो लूं पहले। ख्वाब के साथ कहीं खो न गई हूं आंखें, जब उठूं सो के तो चेहरों को टटोलूं पहले। मेरे ख्वाबों को है मौसम पे भरोसा कितना, बाद में फूल खिले हैं हार पिरो लूं पहले। देखना है वो खफा रहता है मुझसे कब तक, मैंने सोचा है कि इस बार न बोलूं तुझसे। बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल है, और ये जो गज़ल आप ने अभी सुनी ये एक मशहूर शायर की गज़ल है, और उम्मीद करते हैं कि इस शायर का नाम भी आप जानते होंगे। शायर हैं फैसरुल जाफरी। फैसरुल जाफरी साहब ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत गज़लें लिखी हैं, जो हमारी फिल्मी दुनिया में भी कई ऐसे मशहूर गीत भी इन्होंने लिखे हैं, और जिन्होंने इन गीतों को बहुत लोगों ने अपनी आवाज़ दी और बहुत ही दिल से ये गीत सुने जाते हैं। कहते हैं ना कि जब भी जज्बात हमारे हम किसी को बता नहीं पाते, बयां नहीं कर पाते, और हमेशा ज़िंदगी में कभी कभी एक ऐसा दौर भी आता है कि जब बहुत भीड़ हो, अपने आसपास लोग हों, बहुत सारे लोग हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, घर पे कहीं पे भी आप रहें, लेकिन एक तन्हाई का आलम एक मुसलसल बना रहता है दिल में, दिमाग में, और जब दिल में बहुत सारी बातें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये गुबार बनकर आँखों से बहने लगता है, और अक्सर तन्हाई में कुछ आँखों में नमी रहती है, कुछ आंसू बनकर छलक जाते हैं, कुछ लोग जो हैं ये दिल का दर्द बयां कर पाते हैं, लेकिन कुछ जो है आंसू के रूप में बस अपने दिल से ये गुबार निकाल लेते हैं। पर अपने आसपास उन लोगों को पहचानने की कोशिश करिए, और आप महसूस करेंगे कि कोई भी एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में होगा ज़रूर, जो आपकी बातों को समझेगा ज़रूर। और बहुत से लोग ऐसे मायूसी के आलम में जब उन्हें अपने दर्द को बयां करने का जज्बा नहीं होता और सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो फिर दीवारों का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो अगला गीत सुन रहे हैं आप, पंकज उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल है, और मैंने एक शायर का नाम इससे पहले आप सबके सामने लिया था, कैसरुल जाफरी। ये जो अगली गज़ल है वो भी इन्हीं की लिखी हुई है, और इस गज़ल को खूबसूरत मखमली आवाज़ से संवारा है, नवाजा है पंकज उदास ने। आइए सुनते हैं ये गज़ल।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे रूह में उतर जाती हैं, और उन खूबसूरत आवाज़ में इस गज़ल गायकी की अदायगी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं आपके दिल में तो उतरती है, लेकिन आपके दिमाग में भी वो एक गहरा असर छोड़ के जाती है, और आप उस आवाज़ को सुनकर यूं ही कभी बैठे खामोश में अपने जज्बात को जब आपको बयां करने की ज़रूरत होती है तो इसी आवाज़ की यादें जो हैं वो आपके दिल और दिमाग पर चलती रहती हैं, और आपको ये महसूस होता है कि कहीं इसी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए मैं अपने दिल की बात अपने महबूब तक पहुंचा सकूं। है ना सही बात? चलिए इस गज़ल की फहरिस्त में एक और खूबसूरत गज़ल सुनते हैं, भूपेंद्र सिंह और मिताली की आवाज़ में।

दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ न कोई शिकायत होती है, न कोई गिला होता है, न कोई दर्द छुपा होता है, और न कभी ऐसे एहसास होता है कि हम अपनी बात अपने महबूब तक पहुँचाएँ। बस एक खामोशी होती है, और इसी खामोशी को जो है इन खूबसूरत लफ्ज़ों में पिरोया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे हैं, और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में किसी भी बात के लिए अगर आप मायूस हैं तो इस मायूसी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए पहल कीजिए, सोचिए। अगर कोई बात दिल में दर्द दे रही है और उस दर्द को आप जो है महसूस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस दर्द को बयां करिए। कहते हैं कि जो भी बातें हैं, जो भी जज्बातें हैं, वो लफ्ज़ बनकर सामने वाले को ज़रूर पहुंचाना चाहिए। कहते हैं ना कि वक्त बहुत कम होता है और ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, और बातें बहुत लंबी होती हैं, और ख़ास बातों को कहने का वक्त बहुत कम होता है हमारे पास। आइए सुनते हैं ऐसा ही ये खूबसूरत गीत फिल्म आंधी से, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

यहाँ आप सुन रहे थे प्रोग्राम गज़ल गीत, और इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक लम्हा और बाकी है कुछ और दिल की बात बयां करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब आप बयां नहीं कर पाते तो इन गज़लों का सहारा आप ज़रूर लेते हैं, और मैं भी वही कर रही हूँ। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल, आवाज़ जगजीत सिंह की। कहते हैं ना कि जब दिल के राज बहुत देर तक आप छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो राज हैं वो बहुत देर तक छुपे नहीं रहते। आइए सुनते हैं ये आखिरी गज़ल।

0: और इसी के साथ गज़ल गीत का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

त्रिशिव पुरे से सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं SR जानकी रमन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार थी SR जानकी रमन। नाद ब्रह्म

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के चैत्र मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 23 मार्च 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी लेंगे योग उच्चैः प्राणायाम और वृक्षासन की। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे इसके बाद। 5:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। सुबह 6:10 पर समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम चिंतन। विषय है महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार। रामचरितमानस का समय रहेगा 6:45 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बाल कांड। कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 पर। और आज कलाकार है मोमिता कुंडो नजरुल। इनके गाए कुछ गीत सुनेंगे। गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 8:45। धरती आकाश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। मिट्टी दी महक इस कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा 11:10। सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे महिला कार्यक्रम घर आंगन। इसके बाद आप सुनेंगे 1:10 पर प्रोग्राम एक ही फिल्म से। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म खानदान के कुछ चुनिंदा गीत। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आरती मुखर्जी। ब्रज माधुरी ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 2:00-3:00। तीन बजकर 30 मिनट पर आपके लिए कार्यक्रम होगा नाटक जीवन की चार सीढ़ियां। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 हैं अब समाचार होंगे।
1: आई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। प्रथम